0: खाई तोती टिका दे जपमाली तान मजे शाखाई अंतर पूजा पढ़े बार संज मौका पाई छोटी लै पाखंडा नाम ले है। जाहे त्रंदा महला पहला
1: मानस खाने करने वाद श्री भगवान तिंगल ताक दिनकर ब्राह्मण पूरे नाथ उना पे आवे ओई साध कूड़ी रास पूरा वापार कूड़ बोल करे आहार सरम तरम का डेरा दूर नानक रहे आपारपुर मथा टिका तिर तुति का खाई हाथ श्री जगत का सा नील बस्तर पैरों प्रामले चाले पूजे प्राण अपाखिया का पुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखा चौका कड़ी पाल ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटा वे मत पिटा है अन्य।

0: गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अनके जिया बाज ना कोए पहला पानी जियो है जिथे आ सकोए सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवर सोए नानक सूतक बनावे ज्ञान उतारे तुए महला पहला
1: मन का सुत लोभ है जेवा सुत कूड़ अखी सुतक वेखना पात्र परतन रूप कन्ने सुत कन पहला तुबारी खाए नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाए महला पहला
0: सबो सुतक पर मह दूजे लगे जाए

0: सको आके अपना जिसना भी सोचन कड़ी है कि तो आपको अपना आप ही लेखा संडी है जारी रहना ना ही ऐप जाकर कायद गाल बहंडी है मंदा किसे ना आपकी अपने अपने एवं बुझी है तू क्या ना लगी है
1: गुरसिखा।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। अञा अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप ऐं डिफरेंट डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, डिटेल्स कुझु नथा आहिनि। थोरी देर में तव्हां हमेशा भगत कलाम साहब खे ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो पेश कंदा, पोइ अॼु अवां भगत जिस्म में भगत जिस्म ॿुधंदा कान मोतिहार ऐं हरिकान जे आवाज़ में। यादि असांजे प्रोग्राम जी डिटेल्स ऐं ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कयूं वेंदियूं। प्रोग्राम जी डिटेल्स तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया। हींअर अचो त भगत कलाम साहब जन जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधूं।

मोहम्मद फराम साहब जन जी मिश्रे आवास में कलाम दिलाई आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आए हियर पेश आए तबसरो भारतीय सदर द्रौपदी मुर्मू पेंजे टिन मुल्क जे सेकंड फेज दौरान 21 जुलाई 2026 ते उत्तर मैसेडोनिया की यात्रा कई। भारतीय सदर पारा उत्तर मैसेडोनिया की यह पहली यात्रा है। सदर द्रौपदी मुर्मू जी उते पुरजोश आज्ञा कई हुई। संदस आज्ञा का मुल्क की इतिहासिक यात्रा दौरान संदस सूबाई मशगूल शुरू थी वही। उत्तर मैसेडोनिया की पैंजी यात्रा दौरान सदर द्रौपदी मुर्मू मुल्क की वध में मशहूर कौमी हीरो गोस्से डेलकेव पैंजी चर्च ऑफ सेंट स्पास स्कोपिया में श्रद्धांजलि डी। स्कोपिया में सदर गोरदाना से गालू करण मीडिया के खिताब कन्दे भारतीय सदर द्रौपदी मुर्मू बिन धुरन बाहमी सहकार के मुकम्मल स्पेक्ट्रम जो जायजो वरतो है ए घणनि इलाकई ए आलमी मुद्दन ते वीचार की मट सट कई है। सदर मुर्मू भारत ए उत्तर मैसेडोनिया पैंजे दोस्तान लागापन जो वचनबद्धता के बीहर का दोहराया है जिनो बुनियाद है वंडल रईती कदर ए बाहमी इज्जत ते। सदर भारत ए उत्तर मैसेडोनिया कबूलो है व्यापार ए शिल्प के बधा दिनों वेंद होना आईटी ए आईटी से वासीदार सेवाओं जरायत खाधे के सुधरण दवाओं कपड़ो बायोटेक

टेक्नोलॉजी, सैर सफ़र, हॉस्पिटलिटी ऐं फिल्मनि खे तयारु करण में इन्हनि खेत्रनि में सहकार खे अञा वधीक फैलायो वेंदो। सदर मुर्मू इहो पिणु ऐलान कयो त भारत ITEC ट्रेनिंग स्लॉट्स से उत्तर मैसेडोनिया खे तंहिंखे बीणो कंदो, तंहिं में अची थो वञे कोर्सिस हथरद हुसैन मंदी में। हुन उत्तर मैसेडोनिया पारां भारत पारां शुरू कयल आलमी शुरूआतुनि में हिसो वठण जी कार्रवाई खे साराहियो आहे, हुनजी आजियां कई आहे। तंहिं में अची थो वञे आलमी शमसी भाईवारी कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रिसाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐं आलमी बायोफील अलायंस। सकाफ़ती ॻंढापन खे रोशनी में आणींदे सदर चयो त ॿई मुल्क सिहत सेवा में सहकार ते सूझबूझ जी चिठी जो वरी खां जाइज़ो वठंदा, तंहिंमें ख़ासि ध्यानु रवायती दवाउनि ते ॾिनो वेंदो। सदर मुर्मू अक़ीदो ज़ाहिर कयो त संदसि अहम यात्रा ॿिन्ही मुल्कनि मंझि ॿिनि तरफ़ी भाईवारी खे अञा वधीक पुख़्तो कंदी, ऊनो बणाईंदी। इन खां अलावा ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि खे नयनि ऊचाइनि ताईं वठी वेंदी। सदर द्रौपदी मुर्मू उत्तर मैसेडोनिया जी असेंबली खे जेका स्कोपजे में आहे तंहिंखे पर पंहिंजी इतिहासिक यात्रा दौरान ख़िताब कयो। हवाना खे ख़िताब कंदे सदर 1.4 बिलियन भारतवासियुनि जी नेक नियत खे पेश कयो ऐं उत्तर मैसेडोनिया खे हिकु दायम बहुतरफ़ी ऐं खुशहाल आलमी मुसबल करे कोठियो। आलमी सहकार जो वॾो सॾु ॾींदे सदर मुर्मू भारतीय फिलोसॉफी वसुदेव कुटुंबम खे यादि करायो, जंहिंजी माना आहे कि पूरो आलम हिकु परिवार जीअं आहे ऐं मुल्कनि खे सॾु ॾिनो त पाण में दोस्ती कनि न कि वेछा वधाइनि। हुन उमेद ज़ाहिर कई त भारत ऐं उत्तर मैसेडोनिया गॾिजी करे पंहिंजी इतिहासिक दोस्ती खे हिकु मज़बूत भाईवारी में तब्दील कंदा, जेका अमन खुशहाली ऐं वंडियल तरक़ी ॾियां वठी वेंदी। स्कोपजे में भारत उत्तर मैसेडोनिया वापारी फोरम खे ख़िताब कंदे सदर मुर्मू चयो त संदसि यात्रा दौरान पहिरियों भेरो भारतीय सदर उत्तर मैसेडोनिया जी यात्रा कई आहे, तंहिं मां पतो थो पवे कि भारत मुल्क सां पंहिंजे लाॻापनि खे पुख़्तो करण लाइ कॉलबद्ध आहे। सदर तावन जे लाइ घणनि खेत्रनि खे ॻोल्हे वरितो, तंहिंमें अची थी वञे डिजिटल इनोवेशन ऐं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दवाऊं ऐं सिहत सेवा, ज़राई खाधे खे सुधरण ऐं ग्रीन तवानाई। हुन उत्तर मैसेडोनिया खे भारत सां डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहकार करण लाइ नीड ॾिनी आहे, तंहिंमें भारत जे UPI प्लेटफॉर्म जे सोभ खे रोशनी में आंदो। सदर मुर्मू चयो त भारत जी दवाउनि वारो हुनर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पिण उत्तर मैसेडोनिया में सीड़प कंदी, तंहिंमें गॾियल कंपनियुनि ज़रिए दवाउनि ऐं सिहत सां वाबस्ता उज़ारनि में सीड़प कई वेंदी। भारतीय सदर जी यात्रा भारत जी वचनबद्धता खे पधरो थी करे त भारत बाल्कन इलाइक़े में मुल्कनि सां पंहिंजे तावन खे वधाइण लाइ कॉलबद्ध आहे।

0: हीअ आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेशा भगत जसन भगत पेश कंदा आहिनि कानू तिहार ऐं हरिकान।

0: त चओ हरे राम
1: साईं तव्हां जो भलो कंदो बेली सभई चओ हरे राम
0: भरत ओ भरत साहब
1: चओ मुंहिंजा साईं
0: संगत अॼु कुझु सरसेरी थी नज़र अचे
1: साईं सिंधी सूफ़ी माण्हू राग जा बुक्सा जिते बि चौकी या भगत ॾिठऊं खप खोले वही रहा
0: छो न सिंधी दरवेशन फकीरन कलाम बि त लाहौती लिखियो आहे
1: भला भगत हाणे छिर भला को दिल खे कोण वारो कलाम
0: अबा बिस्मिल्लाह त सूफ़ीन जे सरताज शाह साहब जे कलाम सां ई कबी न
1: बेशक साईं बेशक शाह साहब सुरन जो समुंदर आहे
0: त पोइ शुरू करियूं
1: बेशक साईं वाह
0: त कयो अथई हाणे अॻिते वधाए भला
1: वाह वाह।

0: आहे कहिड़ी भला।
1: पर भगत ख़बर अथई इन राग जो नालो राणो कीअं पियो?
2: वाह साईं वाह, साईं सिंध में मूमल राणे जो किसो त आलम आश्कार आहे। उन खे छा साईं राणे जो नालो ॾिनो?
1: हा उन किसे जी भला हिकु झलक त संगत खे बि ॾियार न।
2: वाह मुंहिंजा साईं, छो न छो न, वाह वाह।
1: त भला ॿुध, राजा नंद नाले हिकु हाकिम हो,
2: खेसि नव नियाणियूं हुयूं।
1: हिकड़ी मूमल
2: नव नियाणियूं भगत
1: जंहिंमां हिकड़ी मूमल
2: साईं बि सूमल।
1: मूमल हुई ॾाढी सुहिणी,
2: सूमल सभिनी खां सियाणी।
1: कंहिं समय राजा नंद खे हिकु सूअर जो धंधो हथ लॻो,
2: जंहिंमें इहा करामत हुई ॾंद खणी दरिया में घिरे त अॻियां सॼो पाणी सुकंदो वञे।
1: राजा जा घणेई दुश्मन वक़्त ना वक़्त सोचे तिलस्मी ॾंद ज़रिए सॼो खज़ानो दरिया जे पेट में खणी पुॼाई।
2: भगत मुंहिंजा साईं, इन ॻाल्हि जी ख़बर कंहिंखे कोन रही।
1: पर भगत हिकु जादूगर खे इहो पतो पइजी वियो,
2: कार में हो राजा ऐं सूमल हेॾा होॾा अचनि त मूमल खाई होॾनि हथ करिया।
1: भला मूमल हुई वेचारी अबोज, धणीअ संदसि सॾु हुनायो। राजा ऐं सूमल व्यास शिकार ते,
2: भगत जादूगर दोखे सां मूमल खां ॾंद हथ कयो
1: ऐं सॼो ई खज़ानो खणी वियो।
2: असुल भगत राजा बर्बाद थी वियो,
1: पर सूमल सियाणी वियो। उन सोचो इहो खज़ानो त वरी हथ कबो न, उहो तरीक़ो सोचे कढियई। कहिड़ो? हिकु काक महल ठाराई।
2: वाह वाह।
1: ऐं ऐलान कयई।
2: वाह वाह।
1: कहिड़ो ऐलान कयईं?
2: भगत जेको काक खे पार कंदो सो ई मूमल माणींदो।
1: हा घणा ई राजकुमार आया के मुआ के पाण लुटाए वापसि विया।
2: भगत पर राणे नाले हिकड़े राजकुमार जी जीत थी ऐं मूमल माणियई।
1: वाह वाह, मूमल माणियई। पर शादीअ खां पोइ कुझु ॾींहनि खां पोइ राणो मोकल वठी पंहिंजे मुल्क मोटी वियो।
2: वाह वाह, भला भगत कुझु ॾींहं लाइ राणो मोकल वठी मुल्क छो वियो?
1: घर बि त वञे न, उते ॿुधायो त मां शादी कई आहे।
2: हा ज़रूर ज़रूर साईं।
1: पोइ पुठियां मूमल कहिड़ो हाल थियो?
2: साईं मूमल ॾाढी मांदी थी वई, जुदाई जाड़े न सघी।
1: खयुसि खुटी सूमल खे राणे जो वेस पहिराए
2: साण सुमारियई।
1: वाह छो न, राणो बि त हुन राति मोटे।
2: वाह वाह,
1: मूमल जी बेवफ़ाई ॾिसी वापसि हलियो वियो।
2: साईं हाणे मूमल लुछे कासत पई पठई,
1: पर राणो राज़ी न थियो।
2: भला मूमल आस लॻाए वेठी,
1: रोज़ पई बाकारे।
2: छा पई चए?
1: बाकारे
2: बाकारे साईं,
1: विरलाप करे, विरलाप करे।
2: भगत जंहिंखे लॻे तंहिंखे ख़बर पए, तोखे कहिड़ी ख़बर पवंदी भगत राणे।

तवकार होते हैं हरी कांजे आवास में भगत जसमुद्री आकाशवाणी जी सिंधी सरस है हिंसर पेश हैं खास खास खबरों परम अमन जो वजीर डॉक्टर एस जयशंकर कैनेडा न्यूजीलैंड के पैं सानिन से मनीला में क्वैट पाड़े वजर के गर्जियाण के साइडलाइन से मुलाकात कई बेतरफन ए इंडो पैसिफिक सहकार जो जायजो वरतो उत्तर मैसेडोनिया के सदर भारतीय सदर द्रौपदी मुर्मू की साराह कई यह तमाम फख्र की गाल जो भारत जड़े आलम की वी में वी लोकशाही की सदर एक औरत है भारत कीना के एबोला तैयारी लाए खेस चार डई पंज टन सेहत इमदाद डनी है अमेरिका ईरान मथा सऊदी अरब खिलाफ नेवल ब्लॉकेट लाइ तैयार दई है जो यमन जी होथी ग्रुप रेड सी में ब्लॉकेट हयो है अज ग्लास्को में टेवी कॉमनवेल्थ रांद शुरू थी रही हैं भारत की 125 मेंबर की टोली मजबूत परफॉर्मेंस पेश कंदी मर्दन के क्रिकेट में पहली टी20 इंटरनेशनल टन मैचन वारी सीरीज भारत ए जिम्बाब्वे मंझ अज हरारे में खेली वेंदी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इनसे न केवल सरकार के कामकाज में सुधार होना चाहिए बल्कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भी प्रगति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। सरकार संसद में नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये गंभीर समस्या है जिस पर ईमानदारी से बातचीत होना जरूरी है।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: श्री नड्डा ने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसर डैन, सीनेट अध्यक्ष मिर्सोआ अब्रुडेन और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सोरेन ग्रिंडियानू से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा और उत्तरी मैसेडोनिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दोना सिल्जानोवस्का दाफोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कोपिये में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में सुश्री दाफोवा ने कहा कि पहले वे भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद भारत के प्रति उनका सम्मान और बढ़ गया है। अमरीका की सेना ने लगातार 12वीं रात ईरान पर हवाई हमले किए। दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज होने के साथ नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना है जिससे वह समुद्री मार्गों से गुजरने वाले नागरिक और व्यावसायिक जहाजों के लिए खतरा पैदा कर रहा है। ये हमले ऐसे समय में किए गए हैं जब अमरीका होर्मुज जलडब्रू मध्य पर फिर से नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। रेडियो ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. President of North Macedonia, Gordana Silvanoska Davkova, has said that it is a matter of pride that a woman is the president of world's largest democracy, India. Talking to Akashvani correspondent in Skopje, North Macedonia, Ms. Davkova said earlier she was impressed by India's long history and also spirituality. She said after meeting President Murmu, she was very much impressed. She said after meeting President Draupadi Murmu, she strongly felt that only women can change the world.
3: What is the most important? You have to be proud indeed of your nation. You have to be proud of your history. But also India has a woman as the president that is really something special, knowledgeable, with deep feelings, emotional intelligence.
2: Prime Minister Narendra Modi has said that welfare of citizens must remain at the heart of all reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. He said reforms should not only improve the functioning of the government but also accelerate India's journey towards becoming a developed nation. Prime Minister made these remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors in advancing the vision of Vikasit Bharat. The meeting held at the Prime Minister's residence at 7 Lok Kalyan Marg focused on strengthening governance, improving interministerial coordination and accelerating the implementation of reforms aimed at enhancing citizens' welfare. Senior BJP leader and Union Minister J.P. Nadda has said that the NEET paper leak issue raised by the students should not be politicized and it is not appropriate to take political advantage from this matter. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said it is a matter of investigation and requires in-depth discussion. He said this is a serious problem which deserves a thorough and sincere discussion.
1: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं. What are the factors which are leading to paper leak? Who are the people involved? And how the central government has responded? जब हमारे ध्यान में कोई paper leak आया है, तो हमने किस तरीके से इसको address किया है?
2: The Union Minister said that NDA government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, has taken up this matter very seriously. He reiterated the government's stand that it is ready for a discussion on NEET issue in Parliament and opposition should decide the duration of the debate. The centre has approved two electronics manufacturing clusters, EMCs, in Tamil Nadu with a combined investment of over 1,012 crore rupees. The move is aimed to strengthen the state's electronics manufacturing ecosystem and further India's push towards self-reliance in the sector. The announcement was made by Union Minister for Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnaw, in a written reply in the Lok Sabha yesterday. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Canadian counterpart, Anita Anand, on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines yesterday. In a social media post, Dr. Jaishankar said that India-Canada cooperation has been steadily growing. He said that the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the Prime Ministers of both the nations. The 23rd Commonwealth Games, CWG, will begin today in Glasgow, Scotland. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalists Neeraj Chopra, Mirabai Chanu and Lavlina Borgohain are set to represent India at the CWG 2026. It will feature just 10 sports, 9 fewer than at Birmingham 2022, with competitions spread across 4 venues within an 8-mile corridor. Athletics, swimming, 3x3 basketball, track cycling, weightlifting, bowls, artistic gymnastics, netball, boxing and judo make up the schedule for the game. In men's cricket, first T20 international of 3-match series between India and Zimbabwe will be played today in Harare. The match will begin at 4:30 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
4: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे करिश्मा शर्मा के गाए हुए भजन। साथी कलाकार हैं तबले पर ऋतु मिश्रा, सितार पर रईस अहमद और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी निधि वर्मा। इस समय घड़ी में समय हुआ है 7:30 और 18 सेकेंड। तो आप लोग एक बात बताइए, आपकी चाय बनी या नाश्ता हुआ या नहीं? हुआ तो कोई बात नहीं, और नहीं हुआ तो भी अभी कोई बात नहीं, पहले अपने दिल का नाश्ता कर लेते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि खुद पर विश्वास कैसे करें। उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

ये गाना सुनने के बाद उम्मीद करते हैं कि सबकी नींद अच्छी तरीके से खुल गई होगी और काफी एनर्जी भी आ गई होगी, और हाँ ये भी लगा होगा कि सच में आप लोग हर मैदान फतेह कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर कि आप अपने पर विश्वास हमेशा रखें, क्योंकि दुनिया जो है ना, दुनिया ऐसी होती है कि आपको 100 बार बोलेगी तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, पर एक बार आपने अगर खुद से ये कह दिया कि मैं कर लूंगी या कर लूंगा, तो गेम वहीं पलट जाता है। तो आज के 30 मिनट सिर्फ आपके नाम, रेडियो ऑन रखो, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो, और हाँ साथ में स्माइल भी।

देखो, बिलीव करने का मतलब आंख बंद करके विश्वास कर लेना या कुछ भी मान लेना नहीं होता है। बिलीव करने का मतलब होता है गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत रखना। मुझे आज भी याद है कि कॉलेज में या और भी जगह स्टेज पर मुझे बोलते बोलते मैं डर लगता था। मैं माइक लेकर कभी बोल नहीं पाती थी और डर जाती थी। पर कभी कभी मुझे ये लगता है था कि मैं कर लूंगी कर लूंगी। यही सोचते सोचते देखिए ना कि एक बार और ट्राई करके आज देखो यहां बैठी हूं ना, आपसे बात कर रही हूं। तो सवाल ये नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, सवाल ये है कि आप खुद के लिए क्या सोचते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, या कभी आप माइक में बोले हो, या कभी स्टेज पर बोले हो, या कभी भी आपको ऐसा लगा हो कि आपसे नहीं होगा, तो हमें जरूर बताइएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है ipradiodelhi@gmail.com। तो अब आप लोगों को ये गाना उन सब के लिए जो आज डर के बैठ गए, और उठो अपना दिन खुद बनाओ।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ निधि वर्मा। और आज हम बात कर रहे हैं कि खुद पर विश्वास कैसे रखें। इसी के साथ आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक लड़की थी रिया नाम की। उसे घर वाले हमेशा कहते थे, नौकरी मत करो, शादी करो। रिया ने 2 साल तक चुपचाप ट्यूशन पढ़ाया, पैसे जोड़े और एक दिन अपना छोटा सा बेकरी खोला। आज उसकी बेकरी के आगे लाइन लगती है। जब किसी ने उससे पूछा, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, तो वो बोली कि जब तक मैं खुद पर विश्वास नहीं करती, दुनिया कैसे करेगी। बस यही बात है दोस्तों, पहले हाँ आपको खुद को बोलना पड़ेगा। अब 10 सेकंड के लिए आंख बंद करो और खुद से बोलो, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ।

दोस्तों बातें तो बहुत सारी होगी, अब एक छोटा सा चैलेंज लेकर आई हूँ। आज दिन भर में सिर्फ एक काम आप ऐसा करना जिससे आपको डर लगता है। छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी से हेल्प मांगना, नया आइडिया निकालना, जिम ज्वाइन करना या बस खुद के लिए 15 मिनट निकालना और शाम को शीशे के सामने खुद को एक हाईफाई देना। याद रखो, कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता, वो हर छोटे शब्द में आता है कि मैं कर लूंगी, इससे बनता है। सो अपने पर विश्वास रखिए और आज दिन भर में कुछ ना कुछ एक ऐसा काम करिए जिससे आपको हमेशा डर लगता हो।

दोस्तों 30 मिनट कैसे निकल गए ये तो पता ही नहीं चला। बस इतना याद रखना कि दुनिया तब तक आप पर विश्वास नहीं करती जब तक कि आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे। तो आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये कार्यक्रम जरूर अच्छा लगा होगा। तो आपसे बहुत जल्दी ही मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तो अपना ख्याल रखिए और अपने पर विश्वास रखिए। आपका दिन शुभ हो, और इस कार्यक्रम से अपनी दोस्त निधि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: भैया मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं, बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
3: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए, जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज़।
2: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
4: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
2: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2030

0: 2030 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मनलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गॉर्डोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
1: What is the most important?
2: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
1: With deep feelings, emotional intelligence.
0: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
3: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
4: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोउ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
5: मैं जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने को हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
6: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, दो एसीपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल, दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister JP Nadda says government ready to discuss neat paper leak issue in parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today, and 23rd Commonwealth Games to begin in Glasgow, Scotland today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that welfare of citizens must remain at the heart of all reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. He said reforms should not only improve the functioning of the government but also accelerate India's journey towards becoming a developed nation. We have a report.
8: Prime Minister Modi made these remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors in advancing the vision of Viksit Bharat. The meeting held at the Prime Minister's residence focused on strengthening governance, improving inter-ministerial coordination and accelerating the implementation of reforms aimed at enhancing citizens' welfare. Highlighting the rapidly evolving governance landscape, Mr. Modi stressed the need to modernize governance processes in line with changing times. times. Calling for greater convergence among ministries, he said the vision of Viksit Bharat should become a Jan Andolan, with the country's youth forming the foundation of this national mission. Addressing the issue of drug abuse among young people, Prime Minister stressed the need for an institutional mechanism that promotes coordination across departments and integrates youth-centric initiatives to tackle the challenge more effectively. On sports, Mr. Modi advocated an integrated development strategy to position India as a global sporting destination. Prime Minister also highlighted the transformative potential of the PM Kusum scheme in strengthening the agriculture sector through wider adoption by farmers. He further emphasized the need for a global mapping of skill requirements to align India's workforce with emerging international opportunities and future employment demands. With Bhanu and Suparna, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
7: Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that government is ready to discuss the NEET paper leak issue in Parliament and formulate an effective policy to ensure a permanent solution to the issue. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said, instead of indulging in blame games and constantly shifting the goalposts, the opposition should participate in a meaningful parliamentary discussion on the serious issue of paper leaks. He said paper leaks are a national concern and not an issue confined to any one government or political party, yet the opposition continues to politicize the matter. He said this is a serious problem which deserves a thorough and sincere discussion. Mr. Nadda said Parliament is the most appropriate forum where in-depth discussion on the matter can take place.
9: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं. What are the factors which are leading to paper leak? Who are the people involved? And how the central government has responded? जब हमारे ध्यान में कोई paper leak आया है, तो हमने किस तरीके से इसको address किया है?
7: Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that 16 metro stations will be closed from 7:30 a.m. till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Teerth, Janpath, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprasth, Khan Market, Jorbagh and Shivaji Stadium. However, DMRC noted that the interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. Minister of State in the Department of Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, has said that government is aiming to bring at least 5 indigenous small modular nuclear reactors into operation by 2033. We have a report.
10: In a written reply in Lok Sabha, the minister said Parliament has enacted the Shanti Act 2025, which opens the nuclear energy sector to private participation. Dr. Singh said Bhabha Atomic Research Center is developing a 220 megawatt Bharat Small Modular Reactor, a 55 megawatt reactor and a high-temperature gas-cooled reactor designed to produce hydrogen. Government has drawn up a roadmap for reaching the 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047, as announced in the Nuclear Energy Mission. The minister stated that as per the roadmap, the present nuclear power capacity of 8.78 gigawatts is expected to reach about 22 gigawatts by 2031-32 on progressive completion of projects presently at various stages of implementation. Komadi Parekh, Akashwani News, Delhi.
7: The centre has approved 2 electronics manufacturing clusters, EMCs, in Tamil Nadu with a combined investment of over 1,012 crore rupees. The move is aimed to strengthen the state's electronics manufacturing ecosystem and further India's push towards self-reliance in the sector. We have details from our correspondent.
3: The announcement was made by Union Minister for Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav, in a written reply in the Lok Sabha yesterday. The government said India's electronic manufacturing sector has witnessed significant growth over the past decade, supported by reforms such as production-linked incentive schemes, liberalized FDI norms, tax reforms and labor reforms. Electronics production has increased from nearly 1.9 lakh crore rupees in 2014-15 to around 13.11 lakh crore rupees in
10: 2025-26, while exports have risen from about 38,000 crore rupees to 4.24 lakh crore rupees during the same period. Mobile phone production has also grown more than 30-fold to 6.27 lakh crore rupees, with exports touching 2.59 lakh crore rupees. India now manufactures nearly 99.2% of the mobile phones sold domestically, and the sector provides employment to nearly 25 lakh people according to industry estimates. Payal Sharma, Akashwani News, Delhi.
7: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the morning news. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Romania beginning today. During her visit, President Murmu will meet Romanian President Nicu Dan, Interim Prime Minister Elie Bolvin, President of the Senate Mircea Abudin, and President of the Chamber of Deputies Sorin Grindeanu. She is also scheduled to meet the members of the Romanian-India Parliamentary Friendship Group. President Murmu is currently on an historic state visit to North Macedonia, one destination that stands out not only for its breathtaking beauty, but also for its rich history and global significance, Lake Ohrid. Let's hear more about this unique destination from our correspondent Subhashree Mahapatra, covering the president's visit.
11: Lake Ohrid is one of the Europe's oldest and deepest lakes. It lies on the border between North Macedonia and Albania and is famous for its exceptionally clean water, rich biodiversity and cultural heritage. More than 200 plant and animal species are found only in this lake, making it a globally important ecological site. The lake is also a UNESCO World Heritage Site. Lake Ohrid is often considered one of the Balkans' most beautiful destinations because it combines spectacular scenery, ancient history, and unique wildlife in one place.
7: Earlier, President of North Macedonia, Gordana Silvanuska Davkova, said that it is a matter of pride that a woman is the president of world's largest democracy, India. Talking to Akashwani News in Skopje, Ms. Devkova said she was earlier impressed by India's long history and also spirituality.
1: What is the most important? You have to be proud in it of your nation. You have to be proud of your history. But also India has a woman as the president that is really something special, knowledgeable, with deep feelings, emotional intelligence.
7: National Broadcasting Day is being observed today. On this day in 1927, the first ever radio broadcast in the country went on air from the Bombay station under the Indian Broadcasting Company. On the 8th of June 1936, the Indian State Broadcasting Service became All India Radio. The day commemorates nearly a century of broadcasting's contribution to informing, educating, entertaining and uniting the nation. Details on this from our correspondent.
3: This day highlights the pivotal role broadcasting has played in India's development, educational outreach and cultural preservation. From the freedom movement to nation building, radio has played a vital role in disseminating information, promoting literacy, creating health awareness and sharing agricultural knowledge, particularly in rural India. In 1956, the name Akashwani was adopted for the national broadcaster. The Vivid Bharati service was launched in 1957 with popular film music as its main component. For generations, Akashwani has been serving to inform, educate and entertain the masses, truly living up to its motto, Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai. National Broadcasting Day celebrates not just technological progress but also radio's enduring power to inform, educate, entertain and unite a diverse nation. With Priya Mondal, this is Dilnashi Yarzu, Akashwani News, Delhi.
7: a voluntary shutdown and wheel jam strike continue in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. The Joint Awami Action Committee, JAAC, has urged people of the POJK to participate in the protests today with full strength to demand implementation of their demands and pray for those who were killed by Pakistani authorities during the movement. In a social media post, JAAC has termed today as a day of utmost importance. The JAAC leaders slammed the Pakistani authorities, describing the rulers as killers of the innocent people who have been murdered in retaliation for demanding their rights. On to sports. The 23rd Commonwealth Games, CWG, will begin.

0: Sidhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered singles pre-quarterfinals in Shangzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's singles second round after defeating fellow Indian player Unnati Hooda by 21-14, 9-21, 21-10 in a round of 32 clash. In the men's singles, Ayush Shetty defeated number 11 Alvi Farhan of Indonesia to reach the round of 16. In another round of 32 match, Lakshya Sen defeated Japanese player Yushi Tanaka 22-20, 15-21, 21-14. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra Ramachandran.
1: Thank you, Sarabjit. On the margins of ASEAN engagements, Jaishankar conveys to Lavrov India's concern over safety of Indian seafarers, notes the statesman. The Financial Express informs, cross-holding cap set to ease, airline doors may open for Adani GMR. 100% tariff on generic drug imports into US from 2028. Trump prescribes new pill, India side effects unlikely, states the Economic Times. And finally, the Financial Express, on its editorial page under the caption, Oil on the Boil Again, writes, Brent spot prices have gone well past $90 a barrel with the war clouds over West Asia. The prospect for costlier oil is bad news for countries like India that imports 88% of its energy requirements, which would widen its trade deficit and push up inflation. And with that, it's back to you, Sarabjit.
0: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister JP Nadda says government ready to discuss NEET paper leak issue in Parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद तमाम इस्लाहात का बुनियादी मकसद होना चाहिए और अवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के इकदामात तरतीब दिए जाने चाहिए। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हुकूमत नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है और इस मसले का मुस्तकिल हल यकीनी बनाने के लिए मौसर पॉलिसी तैयार करेगी। भारत साल 2033 तक 5 छोटे एटमी बिजली घरों को फाल बनाने का मंसूबा रखता है। मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए मालियत के 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया के 2 रोजा दौरे पर रहेंगी और मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 बैन अलाक्वामी टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम हरारे में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद हर इस्लाह का बुनियादी मकसद होना चाहिए और हुकूमत के इकदामात अवाम की जरूरियात को मद्देनजर रख कर तैयार किए जाने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्लाहात को न सिर्फ हुकूमत के कामकाज को बेहतर बनाना चाहिए बल्कि भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के सफर को भी तेज करना चाहिए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यह बात सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए कही जिसमें देही तरक्की ज़राअत समाजी बहबूद और दिगर मुतल्लिका शोबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ये मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म की रिहायशगाह पर मुनाकिद हुई जिसमें हुक्मरानी को मजीद मुअस्सर और मजबूत बनाने मुख्तलिफ वजारतों के दरमियान तालमेल को बेहतर बनाने अवामी फलाह के लिए इस्लाहात पर तेजी से अमल दरामद करने पर जोर दिया गया। तेजी से बदलते हुए हुक्मरानी के मंजरनामे को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने बदलते हुए वक्त के मुताबिक हुकूमत के निजाम को जदीद बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत का विजन एक जन आंदोलन बनना चाहिए जिसमें मुल्क के नौजवान इस कौमी मिशन की बुनियाद हों। उन्होंने नौजवानों में मुनशियात के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर ताउन और नौ

0: का वक्त दिया है। मामले की अगली समाअत 11 सितंबर को होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने इत्तला दी है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अगले हुक्मनामे तक सुबह 7:30 बजे से 16 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। DMRC ने कहा है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। एटमी तवानाई के महकमे के ममलकती वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हुकूमत साल 2033 तक स्वदेशी बनावट के कम से कम 5 छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियाई रिएक्टर्स को फाल करने का इरादा रखती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: लोकसभा में अपने तहरीरी जवाब में डॉ सिंह ने बताया कि पार्लियामेंट ने शांति कानून 2025 को नाफिज करते हुए प्राइवेट शराकतदारों के लिए न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे के दरवाजे खोल दिए हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 220 मेगावाट का एक भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, 55 मेगावाट का एक रिएक्टर और एक हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर डेवलप कर रहा है जो हाइड्रोजन पैदा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने न्यूक्लियाई तवानाई मिशन के तहत ऐलान करदा साल 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियाई बिजली सलाहियत हासिल करने के मकसद से रोड मैप वजह किया है। वजीर मौसूफ ने बताया कि रोड मैप के मुताबिक 8.78 गीगावाट की मौजूदा न्यूक्लियाई बिजली की सलाहियत के साल 2031-32 तक 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। ये हौसलियाबी उन प्रोजेक्टों के जरिए हासिल की जा सकती है जो फिलहाल नफाज के मुख्तलिफ मरहलों में है। नई दिल्ली से कमोदी पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: मरकज ने तमिलनाडु में मजमुई तौर पर 1012 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से 2 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मिक्स्ड EMC को मंजूरी दी है। इस कदम का मकसद रियासत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग माहौलियाती निजाम को मुस्तहकम करना और इस सेक्टर में भारत को खुद इन्हेसारी की सिम्त में आगे बढ़ाना है। ये ऐलान कल लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने दी। दोनों मिक्स को मनालुर और पिलापक्कम में फरोख दिया जाएगा। मनालुर EMC 474.3 एकड़ रकबे पर फैला होगा और इस प्रोजेक्ट पर 587.47 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि पिलापक्कम EMC की तामीर 379.3 एकड़ में 424.55 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से 2 रोजा रोमानिया दौरे पर रहेंगी। इस दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू रोमानिया के सदर निकोसरदान, उबूरी वजीर आजम इली बोलोयान, सेनेट के सदर मिर्सिया अब्दुलरिडियान और चेंबर ऑफ डिप्यूटीज के सदर सोरेन ग्रिंडेनू से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा सदर जमहूरिया का रोमानिया भारत पार्लियामानी फ्रेंडशिप ग्रुप के अराकीन से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। सदर जमहूरिया फिलवक्त शुमाली मकदूनिया के तारीखी दौरे पर हैं। यह मकाम न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती बल्कि गोनागों तारीख और आलमी अहमियत की हामिल लेक ऑर्हिड के लिए जाना जाता है। इससे पहले शुमाली मकदूनिया की सदर गोर्डाना दावकोवा ने कहा कि यह फख्र की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत की सदर एक खातून है। स्कोपिये में आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मोहतरमा दावकोवा ने कहा कि वो भारत की तवील तारीख और रूहानियत से काफी मुतासिर हैं। आज नशरियात का कौमी दिन मनाया जा रहा है। साल 1927 में आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से रेडियो नशरियात का आगाज हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम तब्दील करके इसे ऑल इंडिया रेडियो AIR रख दिया गया। ये दिन भारत की तरक्की, तालीम के फरोग और सकाफती विरसे के तहफ्फुज में नशरियात के अहम किरदार को उजागर करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ये दिन भारत की तरक्की, तालीमी आगाही और सकाफती विरसे के तहफ्फुज में नशरियात के अहम रोल को उजागर करता है। आजादी की तहरीक से लेकर मुल्क की तामीर तक रेडियो ने मालूमात की तरसील, खानदगी के फरोग, सेहत से मुतालिक आगाही पैदा करने और खासतौर पर देही इलाकों में जरी मालूमात पहुंचाने में नहायत अहम किरदार अदा किया। कई नस्लों से आकाशवाणी अपने नस्कुलैन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ऐन मुताबिक आवाम को मालूमात, तालीम और तफरीह फराहम करता रहा है। नई दिल्ली से दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: मर्दों के क्रिकेट کرکٹ میں بھارت اور زمبابوے کے درمیان تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کا پہلا میچ آج ہرارے میں کھیلا جائے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے شروع ہوگا. یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد.
1: شکریہ ضمیر. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اخبار پرتاب نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ سرحدی علاقوں میں امن و استحکام بھارت اور چین کے درمیان معمول کے تعلقات کی پہلی شرط. اخبار انقلاب کی سرخی ہے خاتون ارکان پارلیمنٹ پر قابل اعتراض تبصرے کی پاداش میں رکن پارلیمنٹ کلیان بنرجی اجلاس کی بقیہ مدت کے لیے معطل. ملک میں تیار آبدوز شکن جنگی جہاز آئی این ایس مالون بحریہ کے بیڑے میں شامل, اس خبر کو بھی اخبارات نے صفحے اول پر جگہ دی ہے. اخبار کی ایک اور سرخی ہے اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے لوک سبھا میں مسلسل تیسرے دن وقت پر سوال نہیں ہو سکا. اخبار انقلاب لکھتا ہے جموں کشمیر کے اننت ناگ میں دہشت گردانہ حملے میں ہیڈ کانسٹیبل کی موت. اخبارات کی بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بیان, ایران کے جوہری تنصیبات کے قریب امریکہ کا حملہ.
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ شہریوں کی فلاح و بہبود تمام اصلاحات کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے اور عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کے اقدامات ترتیب دیے جانے چاہیے. مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ حکومت نیٹ پیپر لیک معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث کے لیے تیار ہے اور اس مسئلے کا مستقل حل یقینی بنانے کے لیے مؤثر پالیسی تیار کرے گی. بھارت سال 2033 تک 5 چھوٹے ایٹمی بجلی گھروں کو فعال بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے. مرکزی حکومت نے تمل ناڈو میں 1012 کروڑ روپے مالیت کے 2 الیکٹرانک مینوفیکچرنگ کلسٹرز کی منظوری دی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے رومانیا کے 2 روزہ دورے پر رہیں گی. اور مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور زمبابوے کے درمیان 3 بین الاقوامی ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج شام ہرارے میں کھیلا جائے گا. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبرنامہ ختم ہوا.

आकाशवाणी दिल्ली का यह इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ 8:45 और ठीक 15 सेकेंड। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नीता माथुर का गायन, राग है बसंत मुखरी। तबले पर संगत कर रहे हैं शांति भूषण झा, हारमोनियम पर दलित सिसोदिया।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सर्व गंगा में आप सुन रहे थे नीता माथुर का गायन। राग था बसंत मुखरी। तबले पर संगत कर रहे थे शांति भूषण झा। हारमोनियम पर ललित सिसोदिया। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।

0: उद्योग पत्रिका।
1: नमस्कार, उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है। स्टार्टअप और उद्यमशीलता भारत में रोजगार सृजन का प्रमुख इंजन बन गए हैं, जिन्होंने अक्टूबर 2024 तक 16.6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। लेकिन एक क्षेत्र में असफल होने पर व्यवसाय का परिवर्तन भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए अपने मापदंड होते हैं। सबसे बड़ी बाधा आती है वित्तीय चुनौतियों की। व्यवसाय परिवर्तन और उत्कृष्टता के लिए वित्तीय रणनीति, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सेलेंस। अधिक जानकारी के लिए सुनिए श्री अभिषेक शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएफओ, विनिर्माण वित्त विशेषज्ञ से कमल किशोर की ये बातचीत।
2: दोस्तों, आज के कॉम्पिटेटिव दौर में केवल अच्छा उत्पाद या अच्छी सेवा ही किसी व्यवसाय की सफलता की गारंटी नहीं है। बदलते बाजार, डिजिटल तकनीक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं की बदलती अपेक्षाओं के बीच किसी भी संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत वित्तीय रणनीति अत्यंत आवश्यक हो गई है। वित्तीय रणनीति किसी भी व्यवसाय की वो योजना होती है जिसके माध्यम से आय, व्यय, निवेश, बचत और जोखिम प्रबंधन को संतुलित किया जाता है। यह रणनीति व्यवसाय को यह तय करने में मदद करती है कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, कहां किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लाभ और स्थायी विकास सुनिश्चित हो सके। इन सबके लिए एक अच्छे वित्तीय प्रबंधक, जानकार या सलाहकार की आवश्यकता होती है। हम आपका अभिषेक जी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं।
3: नमस्कार कमल जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका।
2: अभिषेक जी, आजकल देखा जाता है कि जो व्यवसाय में रोज रोज कभी कभी परिवर्तन होते हैं और उसके साथ में हमें चलना पड़ता है बिजनेस एक्सेलेंस के लिए, इसमें कई प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है, कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है, रणनीति बनानी पड़ती है। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात होती है वो है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, वित्तीय रणनीति हम कैसे बनाएं इसके लिए, तो आप इसे किस प्रकार से परिभाषित करेंगे?
3: कमल जी, आपने एकदम सही कहा कि अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें अलग अलग तरह से हमको करना चाहिए और इसमें कुछ बातें बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली होती हैं कि पहली बात तो हम जो भी कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा आने वाले समय में, हमारे 3 साल 5 साल में, उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आने वाला है। सो आरओआई जिसको कहते हैं, आरओआई इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए हमको एक प्लान बना के चलना पड़ता है। अगर एक होता है इमोशनल डिसीजन और एक होता है फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन को इमोशनल डिसीजन से पहली बात तो अलग रखना चाहिए। जस्ट बिकॉज हमारे पूर्वज एक तरह से या हमारे पिता एक तरह से कर रहे थे तो आज के संसार में क्या वो सही है? आज मैं देखता हूं कई सारी एमएनसीज हैं और कई एमएसएमई कंपनी है, यानी कि छोटी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जिसको कहते हैं, वो कई बार फैमिली रन एंटरप्राइज की तरह पुराने ढंग से भी करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स और पूरी तरह प्लानिंग नहीं करते और वहीं पे उनकी कई बार गलती हो जाती है।
2: यानी कि वो जो इन्वेस्टमेंट होती है या फिर जो सेविंग्स होती है या फिर जो प्लानिंग होती है वो ट्रेडिशनल तरीके की होती है, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, नई सोच नई तकनीक को अपना नहीं पाते हैं।
3: आज के दिन में जैसे आपने टेक्निक की बात करी, एआई एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसको हमको यूज करना चाहिए। एआई से बचना नहीं चाहिए क्योंकि एआई हमारे साथ हमारे जीवन में है। इसको हम अच्छे तरह से प्रयोग कैसे कर सकते हैं एंड अगर हम सही तरह से बजट करें, जैसे आपने बजट की बात करी, हम कंट्री का भी बजट, देश का भी बजट बनाते हैं, उसी तरह हमको हर कंपनी का बजट बनाना चाहिए
2: जी।
3: और 3 साल का एक समय लेके चले कि 3 साल में हमको ये इस प्रॉफिटेबिलिटी पे पहुंचना है, मतलब कोई भी कंपनी आज अगर स्टार्ट हो रही है तो उसको 3 साल में टर्न अराउंड करना है।
2: हम सबके दिलो दिमाग में भी ये बसा हुआ है कि हमें एक विकसित भारत बनाना है 2047 तक। इसमें वित्तीय यानी कि फाइनेंस का किस प्रकार का रोल होगा?
3: देखिए, अगर विकसित भारत की बात करें तो इकोनॉमी जो होती है वो एक किसी भी कंट्री की रीढ़ होती है, किसी भी देश की बैकबोन होती है। इकोनॉमी पे फोकस करना सबसे बड़ा उसका काम है अगर हमको विकसित भारत करना है तो। इकोनॉमी हर तरह से आती है, इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास सही ढंग से इन्वेस्टमेंट्स आए, बाहर का इन्वेस्टमेंट भी आए, और खाली हम बाहर की कंपनी को अपने यहाँ पे तो जगह दे रहे हैं पर हमारी खुद की कंपनियों को भी एमएनसीज बनना चाहिए, हमारी कंपनियां बाहर जाकर व्यवसाय करें, बिजनेस करें और वहां पर कमाई करें, वो बहुत जरूरी है
2: जी। और इसके लिए जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने हर बार स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया है, हर जगह स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है, वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल जो हेल्प होता है, असिस्टेंस होता है, उसकी भी सरकार की ओर से भी मदद की जाती है। तो जो व्यवसाय में जो उत्कृष्टता है, बिजनेस एक्सेलेंस है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए किस प्रकार की वित्तीय रणनीतियां अपनाई जाएं?
3: बिजनेस एक्सेलेंस या बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए फाइनेंशियल एक्सेलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आज के दिन में कई सारे सीएफओस, कई सारे सलाहकार मौजूद भी हैं। अगर मैं ये स्पेशली कहना चाहूंगा उन स्मॉल एंड मीडियम कंपनी से जो फुल टाइम सीएफओ नहीं भी रख सकते हैं एटलीस्ट एक सलाहकार जरूर रखना चाहिए। जिस प्रकार हमारे पास एक पहले डॉक्टर होता था हमारी हेल्थ देखने के लिए, उसी तरह हमारे पास फाइनेंशियल हेल्थ देखने के लिए भी एक सलाहकार होना चाहिए। विकसित भारत की अगर हम बात करते हैं तो विकसित भारत के लिए कई सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आई है, जैसे गिफ्ट सिटी की बात कर सकते हैं हम जो गुजरात में है, वहां पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज ट्रीटेड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसमें टैक्स में काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं और फेमा के रूल्स काफी चेंज हो चुके हैं। अब हमको काफी आसानी है हमको अगर हम बाहर कहीं इन्वेस्ट करना चाहें और बाहर से कुछ हम कमाना चाहें तो। सो फॉर इंडियन कंपनीज ऑल्सो बहुत ईजी हो गया है बाहर निवेश करना, आउट ऑफ कंट्री निवेश करना
2: जी।
3: और स्मॉल कंपनीज के लिए या किसी भी कंपनी के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसको मैं बोलता हूँ और सैप। ये बेसिकली इसको अगर हम बड़ा करें, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन वाइड क्या करना चाहते हैं और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आर का मतलब होता है रिस्क, जैसे आपने बोला रिस्क, तो हमको लिखना चाहिए कि इस ऑब्जेक्टिव को पाने में क्या क्या कठिनाई आ सकती है, वो सब आपका रिस्क है। ए का मतलब होता है अकाउंटेबिलिटी, उसमें आपको अकाउंटेबल होना चाहिए कि एक एक डिपार्टमेंट की क्या अकाउंटेबिलिटी है उन सबको पता हो। एस का मतलब होता है स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी बनाइए जिसके हिसाब से आप वो रिस्क को पार कर सकें। और पी का मतलब होता है प्लान, अगर आप प्लान करके चलते हैं और एक एक चीज का जैसे हमने बताया 3 साल के अंदर में, मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी कंपनी ब्रेक इवन कर सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी ला सकती है कोई नई से नई कंपनी।
2: मुद्रा लोन तो ये किस प्रकार से मददगार साबित हो सकता है छोटी छोटी कंपनियों के लिए खासकर?
3: देखिए छोटी कंपनियों के लिए मुद्रा लोन एक बहुत बड़ा लाइफलाइन है, ये एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। और जिस भी कंपनी को, ये छोटी कंपनी है जिसको जरूरत है बहुत ज्यादा, ये उसका उपयोग ले सकते हैं। वैसे आज के दिन में हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, हमारे पास मुद्रा लोन तो है ही, पर कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया था फैमिली ओरिएंटेड कंपनीज, उनको कभी डाइल्यूशन का भी सोचना चाहिए। 5-7% डाइल्यूट करके अगर हम अच्छी इक्विटी ला सकें या अच्छे लोग ला सकें, प्रोफेशनल्स ला सकें, शायद अच्छा हो सके।
2: स्टार्टअप्स के विकास के लिए या डेवलपमेंट के लिए कई प्रकार की रणनीति बनाई जाती है, इन स्टार्टअप्स के लिए रणनीति, वित्तीय रणनीति कितना मायने रखती है?
3: स्टार्टअप्स के लिए कोई भी वित्तीय रणनीति या फिर बिजनेस एक्सीलेंस की बात करें या फाइनेंशियल एक्सीलेंस की बात करें तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्टार्टअप का जो भी निवेश कर रहे हैं स्टार्टअप में इनिशियली, वो इसीलिए करते हैं कि वो उससे फायदा ले सकें, उससे 2-3 साल में उसका कुछ बेनिफिट ले सकें और उसकी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ सके।
2: जी जी,
3: सब इसी के लिए करते हैं। आज के दिन में स्टार्टअप्स को 2 चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, एक टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना चाहिए, कोई भी स्टार्टअप बिना टेक्नोलॉजी के ना चले और ना ही आप उसको चलाएं। टेक्नोलॉजी का सहयोग जरूर लें, अगर आपकी पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है तो एटलीस्ट टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट जरूर होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करना है और ये देखना है कि आज हमारे यहाँ क्या परेशानी है, उस परेशानी को अगर आप दूर कर सकें, यू कैन डू एनीथिंग।
2: आजकल देखा जाता है कि तकनीक का युग है, एआई का भी युग है, डिजिटल तकनीक का युग है, तो इसके माध्यम से इसने पूरी कार्यशैली को, कार्य प्रणाली को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। संस्था या कंपनी की सफलता के लिए ये डिजिटल तकनीक, एआई वगैरह, ये सब कितना महत्वपूर्ण है?
3: ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको सक्सेसफुल कंपनी बनना है तो एआई से मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि एआई इज हियर टू स्टे, वो यही है और हमको उसको साथ लेके चलना है। हम कोडक का एग्जाम्पल ले लें, कोडक पुराने जमाने के कैमरे बनाते थे, आज वो कंपनी खत्म हो चुकी है। पहले वीडियो कैसेट्स आते थे, आज वो वीडियो कैसेट्स नहीं है। तो हाउ वी कैन एक्चुअली डू बेटर, तो हमको टेक्निक और टेक्नोलॉजी को जरूर हमको साथ रखना है। रिस्क मैनेजमेंट के 4 ही तरीके होते हैं किसी भी रिस्क को मैनेज करने के लिए।
2: जी,
3: सबसे पहला तरीका होता है कोई अगर रिस्क आपकी तरफ आ रहा है उसको आप टर्मिनेट करिए, उसको आप खत्म करिए। सेकंड तरीका होता है कि अगर आप वो उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप ट्रीट करिए, कोई उसका इलाज करिए कि वो आपको इतना हानि ना पहुंचाए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं रिस्क फिर भी है तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका एक बहुत सीधा उदाहरण होता है इंश्योरेंस, अगर आपके पास रिस्क तो रहता ही है कि कभी आग लग सकती है, कभी कुछ हो सकता है, तो उसका एक इंश्योरेंस करा लीजिए। इंश्योरेंस के भी अलग अलग तरीके होते हैं, डायरेक्ट इंश्योरेंस भी हो सकती है और भी तरीके हो सकते हैं कि आप एक पार्टनर ले आए जिसको आधा आपने रिस्क दे दिया। और फाइनली जो एकदम बचा हुआ रिस्क बचता है उसको टेक करें। 4 T होते हैं, टर्मिनेशन, ट्रीटमेंट, ट्रांसफर एंड टेक। ये 4 T से आप किसी भी रिस्क को अगर आप प्लान ढंग से बना रहे हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हैं और ये 4 रिस्क लेके चल रहे हैं, कोई भी स्टार्टअप सक्सेसफुल हो सकती है।
2: तो इसमें क्या फाइनेंस के लिए भी किया जा सकता है?
3: बिल्कुल, ये फाइनेंस के लिए करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल मॉडल अगर आप बनाते हैं, कोई भी स्टार्टअप चालू करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है देखना कि आपकी फाइनेंशियल मॉडलिंग ये 4 T के अनुसार चल रही है कि नहीं।
2: जो मैनेजमेंट होता है उसमें किस प्रकार से इसे मैनेज किया जा सकता है?
3: जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट हरेक इंसान को, हरेक डिपार्टमेंट को टच करके जाता है, क्योंकि रिस्क किसी भी चीज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर HR की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स जिसको कहते हैं, अगर किसी कंपनी में अच्छे टैलेंट नहीं टिक रहा है या लोग नहीं टिक रहे हैं, भाग रहे हैं, तो वो एक रिस्क है, उसको कैसे HR मैनेज करेगा, वो HR डिपार्टमेंट का काम है। सेल्स का काम है कि अगर उनके पास अच्छे ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, अच्छा क्लाइंट कन्विंस नहीं हो रहे हैं, वो एक रिस्क है। फाइनेंस का काम है कि अगर वो ठीक से अपना कॉस्ट मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वो फाइनेंशियल रिस्क है। तो कोई भी रिस्क मैनेजमेंट मॉडल अगर हम लगाते हैं किसी कंपनी में, वो हर डिपार्टमेंट को टच करता है।
2: और वैसे देखा जाता है कि कभी भी किसी बिजनेस की ताकत होती है, वो सबसे बड़ी ताकत होते हैं उसके एम्प्लॉई। और यदि संस्था अपने मानव यानी कि HR के विकास में निवेश करती है, उसका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, तो उसकी उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी में और उसकी क्वालिटी में दोनों में डेवलपमेंट होता है, वृद्धि होती है, तो इसे किस प्रकार व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है?
3: ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करी आपने कमल जी, कि कोई भी संस्था है उसके चलाने वाले तो इंसान ही होते हैं, और इंसानों को ट्रेनिंग की, उनको डेवलपमेंट की का ख्याल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहीं पे HR एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि ये देखने के लिए कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारा काम कर रहे हैं, उनका हम बेहतर ख्याल कैसे रख सकते हैं। ओनली हैप्पी एम्प्लॉयज मेक प्रोडक्टिविटी। अगर कोई अनहैप्पी है, खुश नहीं है, दुखी है, परेशान है किसी चीज से, तो वो काम में भी मन नहीं लगाएगा, अल्टीमेटली कस्टमर्स खुश नहीं होंगे। आपने खुद देखा होगा अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो किसी दिन, तो अगले दिन आपका मन नहीं लगता काम में, आप चिड़चिड़ाए से रहते हैं। यही चीज

0: आपको उसको समझाना है तो एक मेंटर की तरह समझाएं जिससे उसको गाइडेंस मिल सके और उसको ये समझाएं कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक फाइल रखना हर एक एम्प्लॉय की, उसका गोल क्या है, फ्यूचर में वो क्या करना चाहता है, और हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उसकी गोल में उसका सहयोग करते रहें। अगर वो जनरल मैनेजर बनना चाहता है, कोई हमारे यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे आया है, जूनियर लेवल पे आया है, उसका गोल है मैं 10 साल में जीएम लेवल बनना चाहता हूँ, आप उसको कैसे गाइड कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं कि 10 नहीं तो 12 साल में आप अपनी कंपनी में ही बना सकते हैं, आपकी कंपनी भी ग्रो करेगी और साथ में वो भी ग्रो करेगी। कोई अगर चाहता है जैसे आपने बताया कि मेरी सैलरी बढ़ा दी जाए, 30% बढ़ा दी जाए, उसको बताना जरूरी हो जाता है कि अभी जो तुम काम करते हो इसके हिसाब से ये सैलरी शायद नहीं मिल पाए, आपको काम यहाँ पे ये आप गलत कर रहे हैं, ये आपको ठीक करना चाहिए, इतना और बढ़ा सकते हैं, और उसको गाइड करें कि वो काम कैसे बढ़ाए। और अगर वो काम उस लाइक बनता है, कंपनी को भी फायदा होता है, तो डेफिनेटली हमको शेयर भी करना चाहिए।
1: जी जी, जो छोटे छोटे जो व्यवसाय हैं, जो बिजनेस हैं, एसएमई हैं, उनके लिए तो ये बड़े स्तर के लिए जो डिजिटल जो परिवर्तन हो रहे हैं या फिर उनको अपनाया जो जाता है, उनको अपनाना बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे?
0: ये एक धारणा है आज के दिन में जो कि सही नहीं है, क्योंकि कई ऐसे एप्लीकेशन आ गए हैं जो बहुत सस्ते ढंग से आपके लिए एक ऐप बना सकते हैं। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर मेरे को डायरेक्टली रीच आउट करें मे बी, लेकिन कई सारे ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि डायरेक्ट आपके लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं, कई सारे एआई मॉडल्स हैं जो आपके लिए, और आपको बहुत ज्यादा उसमें खर्च नहीं करना पड़ता, और कई तो मंथली सब्सक्रिप्शन बेस पे भी चलते हैं। तो कहीं नहीं लिखा कि आप अपना खुद का एआई बनाइए, जो एआई अवेलेबल है उसमें से आप बहुत कुछ बना सकते हैं।
1: अभिषेक जी, आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की भूमिका में रहे, तो आपने इन 23 वर्षों में जैसे कि आपका अनुभव है, उसमें आपने किस प्रकार का बदलाव देखा है?
0: ये बहुत बड़ा सवाल है। इस 23 वर्षों में मैं

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबगाही। आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वाणी जयराम के गाए हुए भजन।

आगाही प्रोग्राम के तहत अभी आपने वाणी जयराम के गाए हुए भजन सुने। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। पेशो खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे। और अब आइए जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में आज के दिन कौन सी तारीखें दर्ज है। आज के दिन 1981 में भारत के पहले भूस्थिर उपग्रह यानी कि एप्पल ने आज ही के दिन अंतरिक्ष में आधिकारिक रूप से काम करना शुरू किया था। और इसके कुछ दिनों बाद यानी कि 2019 में भारत ने अपने महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। और अब बात करते हैं कुछ प्रमुख हस्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो आज की तारीख स्याही से नहीं बल्कि देश के महानतम सपूत के लहू से लिखा गया है। आज देश के सबसे निडर, निर्भीक और अदम्य साहसी क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद की जयंती है। वही आजाद जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी और जो जीते जी कभी फिरंगियों के हाथ नहीं आए। भारत माँ के इस वीर सपूत का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। श्रोताओं, आजाद जी सिर्फ एक नाम नहीं थे, वे ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक खौफ थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जीते जी कभी भी फिरंगियों की पुलिस उन्हें छू भी नहीं पाएगी और उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञा को अपनी आखिरी सांस तक निभाया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब वो दुश्मनों से घिर गए तो उन्होंने अकेले ही पूरी पुलिस फोर्स का सामना किया और जब उनके पिस्तौल में आखिरी गोली बची तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने की जगह खुद को गोली मार ली और भारत माँ की गोद में हमेशा के लिए सो गए। आज ही के दिन जहां हम एक तरफ चंद्रशेखर आजाद जी को याद कर रहे हैं और भी फ्रीडम फाइटर को याद कर रहे हैं, तो आज ही के दिन साल 1856 में भारत माँ के एक और महान सपूत का जन्म हुआ था जिन्होंने देश के कोने कोने में स्वराज की अलख जगाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक जी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो एक दूरदर्शी समाज सुधारक, वकील और पत्रकार भी थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए मराठा और केसरी जैसे अखबारों की शुरुआत की। उनके तीखे लेखों से ब्रिटिश सरकार इस कदर डर गई थी कि उन्हें कई

अष्ट दिन एक ऐसे महान आत्मा को भी नमन करने का है जिसने अपना पूरा जीवन मानवता, शांति और गरीबों की सेवा में समर्पित कर दिया। आज सिस्टर मैरी निर्मला जोशी की जयंती है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता मदर ट्रेसा के निधन के बाद मिशनरीज ऑफ चैरिटी की कमान संभालने के लिए चुना गया था। सिस्टर निर्मला जोशी का जन्म आशी के दिन साल 1934 में झारखंड की राजधानी रांची के एक नेपाली हिंदू परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम कुसुम था। पढ़ाई लिखाई में बेहद होनहार कुसुम ने राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री ली और कानून की पढ़ाई भी की, लेकिन कानून की अदालतों से ज्यादा उन्हें समाज के सबसे गरीब और बेसहारा लोगों की सेवा करने में अपना सुकून नजर आया। सिस्टर निर्मला की इसी निस्वार्थ और मूक सेवा के लिए भारत सरकार ने साल 2009 में उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म

0: आज आधुनिक भारतीय चित्रकला के उस्ताद सैयद हैदर रजा यानी SH रजा साहब की पुण्यतिथि है। रजा साहब एक ऐसे जादुई चित्रकार थे जिन्होंने कैनवास पर सिर्फ रंगों को नहीं बिखेरा बल्कि भारतीय दर्शन, आध्यात्म और ब्रह्मांड के रहस्यों को उकेरा है। भारत सरकार ने कला जगत में उनके इस अद्वितीय योगदान के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया था। फ्रांस सरकार ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान लेजियन ऑफ ऑनर से नवाजा था। आज का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास के एक ऐसे फनकार को भी याद करने का है जिन्होंने रोते हुए लोगों को हंसना सिखाया। आज ओरिजिनल भाईजान और किंग ऑफ कॉमेडी महमूद अली साहब की पुण्यतिथि है। फिल्मों की बात करें तो उन्होंने 300 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया है। सुनते हैं पड़ोसन का ये सदाबहार गीत।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुस

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मौदम मार्ग से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह बहबूद तमाम इस्लाहात का बुनियादी मकसद होना चाहिए और आवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के इकदाम तरतीब दिए जाने चाहिए। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हुकूमत नीट पेपर लीक के मामले पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है और इस मसले का मुस्तकिल हल यकीनी बनाने के लिए मुअस्सर पॉलिसी तैयार करेगी। भारत 2033 तक 5 छोटे 8वें बिजली घरों को फाल बनाने का मंसूबा रखता है। मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रूपये मालियत के 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की मंजूरी दी है। सर्वे मौर्या द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया के 2 रोजा दौरे पर होंगी। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मुलाकामी T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम हरारे में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह बहबूद हर इस्लाहात का बुनियादी मकसद होना चाहिए और हुकूमत के इकदाम अवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखकर तरतीब दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाहात को न सिर्फ हुकूमत के कामकाज को बेहतर बनाना चाहिए बल्कि भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के सफर को भी तेज करना चाहिए। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि तलबा की जानिब से उठाए गए नीट पेपर लीक मामले को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए और इस मामले से सियासी फायदा उठाना मुनासिब नहीं है। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि यह जांच का मौजू है जिस पर तफसीली बातचीत की जरूरत है। जनाब नड्डा ने कहा कि पेपर लीक एक संगीन मसला है जिस पर संजीदगी से गौर जरूरी है। मरकजी वजीर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क्यादत

उन्होंने कहा कि पेपर लीक कौमी तश्वीश का मामला है जो किसी एक हुकूमत या सियासी पार्टी तक महदूद नहीं है, लेकिन फिर भी अपोजिशन इस मामले को सियासी रंग देने में लगी हुई है। जनाब नड्डा ने कांग्रेस और अपोजिशन की हुक्मरानी वाली रियासतों में मुख्तलिफ इम्तहानात के पेपर लीक के मामले भी उठाए। उन्होंने कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर जानबदारी बरतने का इल्जाम लगाते हुए सवाल पूछा कि वो इन वाकयात पर बात क्यों नहीं करते। जनाब नड्डा ने जनाब गांधी पर इल्जाम लगाया कि वो इस मामले से सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं, जो कि अफसोसनाक है। जनाब नड्डा ने कहा कि जनाब गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई प्रेजेंटेशन में 150 इम्तिहानी पर्चों के लीक होने से मुतल्लिक बात की। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि यह जांच का मौजू है और हुकूमत बिलाशुबा इसकी जांच करेगी और मुल्क और अवाम के सामने सच्चाई को पेश करेगी। हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बामानी मुबाहिसे के लिए तैयार रहने की बात दोहराई है। लोकसभा में कल इस बारे में इजहार ख्याल करते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत मुल्क के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए पार्लिमानी जवाबित के तहत इस मामले के सभी पहलुओं पर बामानी हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बामानी मुबाहिसे के लिए तैयार रहने की बात दोहराई है। लोकसभा में कल इस बारे में इजहार ख्याल करते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत मुल्क के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए पार्लिमानी जवाबित के तहत इस मामले के सभी पहलुओं पर बामानी मुबाहिसे के लिए तैयार है। जनाब रिजिजू का बयान ऐसे वक्त में आया है जब नीट पेपर लीक मामला तलबा के मुजाहरों समेत मुख्तलिफ मौजूदात पर पार्लियामेंट की कार्रवाई अपोजिशन की हंगामा आरई की वजह से कल लगातार तीसरे दिन भी राखना अंदाजी का शिकार रही। इस दौरान राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मरकजी वजीर तालीम के इस्तीफे के बगैर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर हुकूमत

मौसम में फरोग दिया जाएगा। मंगलूर ईएमसी 474.3 एकड़ रकबे पर फैला है और इस प्रोजेक्ट पर 587.47 करोड़ रूपये खर्च होंगे, जबकि पिलापाईकम इस ईएमसी की तामीर 379.3 एकड़ में 424.55 करोड़ रूपये की सरमायाकारी से होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से दो रोजा रोमानिया दौरे पर रहेंगी। इस दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू रोमानिया के सदर, उमूरी वजीर आजम, सेंट के सदर और चैम्बर ऑफ डिप्टीज के सदर से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा सदर जमहूरिया का रोमानिया भारत पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप के अराकीन से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। सदर जमहूरिया फिलवक्त शिमाली मकदूनिया के तारीखी दौरे पर है। ये मकाम न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती बल्कि गुनागुन तारीख और आलमी अहमियत की हामिल लेक ओरिट के लिए जाना जाता है। इससे पहले शिवानी मकदूनिया की सदर ने कहा कि फख्र की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत की सदर एक खातून है। इस कोपरी में आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मोहतरमा दावकोवा ने कहा कि वो भारत की तवील तारीख और रूहानियत से काफी मुतासिर हैं। आज नशियात का कौमी दिन मनाया जा रहा है। 1927 को आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से रेडियो नशियात का आगाज हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम तब्दील करके

ऐसी तमाम बुराइयों की तरफ खींचती हैं। ऐसे हालात में इंसान उसी वक्त पाक साफ और उम्दा जिंदगी बसर कर सकता है जब वो इसके लिए मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार करे और अपने आप को सही रास्ते पर गामजन रखे। दुनिया की बुराइयों से महफूज रहने और अच्छे रास्तों पर चलते रहने की जो मुअस्सर तदबीरें अख्तियार की जा सकती हैं, उनमें से एक सालेहीन की सोबत अख्तियार करना है। सोबत इंसान की जिंदगी पर गहरा असर छोड़ती है। यही वजह है कि आमतौर पर अच्छी सोबत वाले अच्छे इंसान बन जाते हैं और बुरी सोबत अख्तियार करने वाले बुरे इंसान। इस्माइल मेरठी

0: अब खत्म हुआ। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब पेश खिदमत है प्रोग्राम चर्चा का विषय है।
1: आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक छोटा सा गाँव, एक साधारण रसोई और उसी रसोई से उठती एक बड़ी शुरुआत। जहाँ कभी सिर्फ घर के लिए अचार, पापड़ और मसाले बनते थे, आज वहीं से निकल रहे हैं ब्रांड, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई कहानियाँ। खेत के एक कोने में उगाई गई धनिया जब एक अत्याधुनिक पैकेज्ड ब्रांड बनकर उभरती है, या फिर किसी छोटे से शहर की बेकरी जब एक नए भारत के निर्माण की मिसाल बनती है, तब जन्म लेती है असली जमीनी क्रांति। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME स्कीम देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। एक ऐसी योजना जिसने न केवल 2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृतियों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है, बल्कि देश के अनौपचारिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को औपचारिक पहचान दी है। 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, 6 लाख से अधिक आजीविका के अवसर और 44% महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये कहानी है उस भारत की जो वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहा है। आज की इस विशेष चर्चा में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये योजना वित्तीय समावेशन, तकनीक, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के जरिए हमारे किसानों और स्थानीय उद्यमियों को रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाला बना रही है। साथ ही हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने और वरिष्ठ कृषि एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: जगदीश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये जो योजना है, इसने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया है अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर, और लगभग 75,000 से अधिक इकाइयां अब उद्यमी पंजीकरण, FSS, AI और GST के दायरे में आ चुकी है। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप इस फॉर्मलाइजेशन को केवल कर या विनियमन के चश्मे से अगर हटाकर व्यापक स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक विश्वसनीयता और क्रेडिट योग्यता के संदर्भ में देखें, तो क्या समझते हैं आप?
3: देखिए, मुझे लगता है कि जो ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, जो बेसिकली गांव पर आधारित है या टियर टू सिटीज पर आधारित है, टियर थ्री सिटीज पर आधारित है, इस पर बहुत पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, बिल्कुल सही ध्यान दिया गया है। और इसकी जो योजना बनी है वो इतनी मुकम्मल और इतनी परफेक्ट है कि आप किसी भी राज्य में चले जाए, आपको बाजार जिसमें आप अनाज के अलावा अपने घरेलू रसोई का जो सामान लेते हैं, इसके अलावा आप नाश्ते का सामान लेते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स आपको लोकली मेड मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके कारण जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिन्होंने इस मार्केट पे एक तरह से कब्जा करके रखा था, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में टिकने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, उनको नई नई स्कीम लानी पड़ती है। और देखते हैं कि बहुत छोटे स्तर पर, मतलब अगर आप कस्बाई स्तर पर चले जाए, तो कस्बाई स्तर पर भी लोकली और मैन्युफैक्चर्ड लोकली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। सिर्फ खाने पीने के पदार्थ हैं, दूसरे भी पदार्थ आपको मिलते हैं। बहुत दिन से और बहुत वर्षों से ये बाजार डेवलप हो रहा था, मोदी सरकार ने पहली बार इसको फॉर्मली ध्यान दिया और इसके लिए एक अच्छी मजबूत योजना शुरू की। और ये जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, अगर आप जो औपचारिक अर्थव्यवस्था देखेंगे देश की, तो उससे करीब 1/4 तो होगी, अभी उसका आकलन नहीं हुआ है कि ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो बेसिकली रूरल बेस्ड है, ये कितने की है, कितने हजार करोड़ की, कितने बिलियन डॉलर्स की है, वो आकलन अभी किसी ने नहीं किया कि एकांत स्टडी इस पर है। लेकिन अगर आप पाएंगे कि इस समय देश भर में और लोग लोकली, वोकल फॉर लोकल का नारा मोदी जी सरकार ने ऐसे ही नहीं दिया है, इस जो डेवलपमेंट हो रहा है नीचे के लेवल पर, उसको ध्यान में रखते हुए दिया है। आत्मनिर्भर भारत की भी जो अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत ये योजना है, उसको भी इस बात को ध्यान में रखते दिया गया है कि गांवों, कस्बों और टियर टू

0: फ्री सिटीज में, जहां तक कि आप जो बड़े शहर हैं उनमें भी आप पाएंगे कि उन अलग अलग क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के बने हुए प्रोडक्ट्स ही आपको मिलते हैं, चाहे खाने पीने के पदार्थ हो, चाहे आपके इस्तेमाल के पदार्थ हो, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर तो खाने पीने की चीज, नाश्ते की चीज और मनोरंजन की चीजें, वो सब लोकली प्रोड्यूस हो रही है। इस इकोनॉमी को टैप करके इस योजना ने बड़ा और मदद पहुंचाई है उन सब उद्यमियों को जो अपने बल पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: जी हरवीर जी, योजना ने हाल ही में 2 लाख से अधिक क्रेडिट लिंक्ड स्वीकृतियों का आंकड़ा छुआ है और इसमें 20,300 करोड़ से अधिक का निवेश भी आकर्षित हुआ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग तंत्र में अंतिम मील तक क्रेडिट डिलीवरी एक बड़ी चुनौती रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि इस योजना में ऐसा क्या अलग रहा जिसने बैंकिंग तंत्र के प्रति सूक्ष्म उद्यमियों का जो हिचकिचाहट का भाव है उसे तोड़ा। क्या बैंक अब सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण को कम खतरे वाला क्षेत्र मानने लगे हैं?
2: एक तो ये अपने आप में हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसमें हमारे लिए है। अभी करीब 30 लाख करोड़ से ज्यादा का ये एक इंडस्ट्री है देश में और जो अगले 2 साल में मेरे ख्याल से करीब 45,000 करोड़ तक उसको पार कर जाएगा। अब ये जैसे अभी उपासना जी कह रहे थे कि हम बात कर रहे हैं फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मल की, क्योंकि जो बड़ा फॉर्मल सेक्टर है, बड़ा कब्जा जो बड़े ब्रांड बड़े मार्केट एक्सेस उनके पास रहे हैं, और जबकि छोटे स्तर पर गांव से थोड़ा आगे हम जाए जो छोटे कस्बे छोटे शहर, वहां पर तमाम सारे एंटरप्रेन्योर्स ने कोशिश की कि वो वैल्यू एडिशन में जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें जाए, एग्रीकल्चर के वैल्यू एडिशन में जाए। वैल्यू एडिशन है फूड प्रोसेसिंग, जिससे कि वो बेहतर उनके आय का जरिया बने और स्थानीय स्तर पर किफायती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एक बाधा आती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए वो होती है वित्तीय संसाधनों की, जो हम रिसोर्सेज जो है फाइनेंशियल की जब बात करते हैं, जो छोटा एंटरप्रेन्योर है वो अगर उसके पास पूंजी नहीं है, और इसके पहले जब फॉर्मल सेक्टर की बात करेंगे या बैंक्स को अप्रोच करेगा उसका उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, तमाम सारे कोलेटरल चाहिए, फिर बैंक्स में इतना लंबा प्रोसेस है, उसको ये मिलना मुश्किल था और लोग आगे नहीं बढ़ पाए। जाहिर सी बात है कि इसका स्कीम को ही इसी काम के लिए तैयार किया गया कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कुछ लाख रुपए से अपना काम शुरू करना चाहते हैं वो किस तरीके से फॉर्मलाइज एंटरप्रेन्योर के रूप में और उनकी जो यूनिट है वो कैसे फॉर्मलाइज सेक्टर में जाए जो गुणवत्ता के मानक है उनको पूरा करती हो, और साथ में उसके लिए मार्केट की जो लोकलाइज स्तर पर जो अपॉर्चुनिटी है उसको टैप करे। अब इस तरह की स्कीम जो बिना कोलेटरल के एक सीमित स्तर पर जो फाइनेंस मुहैया कराती है ऐसे जो एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनको कोई बहुत बड़ा जो तामझाम होता है कि उन्हें रिपोर्ट बनानी है, आपके पास एसेट कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है, फिर बैंक तय करेगा कि हम इसमें कितना डालेंगे और किस तरीके से वो असेस करेगा, उन सब झंझटों से मुक्त।

उनका जो हैंड होल्डिंग जिसे हम कहते हैं कि उनको बताया गया कि किस तरीके की तकनीक आपका जो उत्पाद है उसको तैयार करने में काम उसका काम आएगी, किस तरीके की प्लांट और मशीनरी जो है इसमें जरूरत होती है और उसके लिए कैसे फाइनेंस मुहैया कराया जाएगा और हम अपने उत्पाद को मार्केट में कैसे ले जा सकते हैं, मार्केट लिंकेज कैसे हो सकता है, क्योंकि जो छोटे अंडरग्राउंड है उसके सामने ये भी एक चैलेंज होता है कि मार्केटिंग का जो एक स्किल होती है उसके पास उतनी बेहतर नहीं होती जो बड़ी कंपनियों की जो मार्केटिंग के जो लोग हैं या उनके जो संसाधन है उनके पास जो रिसोर्सेज है वो होते हैं। तो उस चैलेंज को दूर करते हुए ये जो सारे स्टेप्स हैं फाइनेंस अवेलेबल कराने से लेकर के उसको ट्रेड करने तक मार्केटिंग के तक वो इस स्कीम की खास जो खूबी है। और जो हम देख रहे हैं कि भाई 2 लाख से ज्यादा सैंक्शन इसमें हुए हैं तो ये अपने आप में 20,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें निवेश हो चुका है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो एक ये जो काम हो रहा है वो छोटे स्तर पर हो रहा है और जो हमारी जो रियल वर्ल्ड इकोनॉमी है क्योंकि वो प्रोड्यूस भी वहीं से आ रहा है तो उसके जो उत्पादक हैं

0: सारी कंपनियां एस्टेब्लिश हुई है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लोर करने का और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार के साथ में उनकी जो इकोनॉमी जो है उसको बड़ा करने का एक अच्छा एक तरीके से एक ये स्कीम बनी और उसका फायदा लोग उठा रहे हैं। उसके नतीजे आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने कहा कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे देश में। इस तरह से लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बदल रही है, उनके जो हाथ में अधिक पैसा आ रहा है तो वो प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं और उनको फिर ये है कि जो सिर्फ बड़ी कंपनियां हैं उनके तरफ में जाकर के जो स्थानीय स्तर पर उत्पाद उपलब्ध है वो उनके मार्केट जो है के रूप में सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर देखें हमारी जो जीडीपी का करीब 7% ये सेक्टर बन गया है और एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा इसके पास है। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत बड़ी गुंजाइश है क्योंकि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है जो हमारे पास जिसकी जो एक संभाव्यता जिसको हम कहते हैं उसका हमने बहुत छोटे स्तर का दोहन किया है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर जो है उनके लिए अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की।
1: हरवीर जी, जिन कहानियों का जिक्र कर रहे थे, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि पीएमएफ

एमई योजना के सबसे पहले जो लाभार्थी थे वो थे जमुना लाल पाटीदार और उनका आवेदन इस योजना के तहत पहला आवेदन था जिसे स्वीकृत किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण में कोई पृष्ठभूमि न रखने वाले 10वीं पास उद्यमी जमुना लाल पाटीदार को 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से इस योजना से मिले। उन्होंने उसका निवेश धनिया प्रसंस्करण इकाई शुरू करने में किया। योजना के तहत उन्हें वित्त, मशीनरी और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनका विचार एक सफल उद्यम में बदल गया और आज उनके पास 5 से ज्यादा लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं और उनका व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। जमुना लाल पाटीदार की ये कहानी हम सबको बताती है कि अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है और आपके पास एक विजन है, एक सोच है, एक प्लान है, तो उस प्लान को आगे बढ़ाने में इस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जगदीश जी, अगर खाद्य प्रसंस्करण की बात को

0: बनाना उनके लिए आज भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है। क्या आप देखते हैं कि इस दिशा में किस तरह के परिवर्तन लाने की जरूरत है और कितना बदलाव पिछले एक दशक में आया है?
1: देखिए, ये चैलेंज तो है और ये चुनौती भी है उन सब छोटे उद्यमियों के लिए जो अपने घर से या अपने गाँव से ऐसा उद्यम शुरू कर रहे हैं।

0: जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला कि लोकल प्रोसेसिंग यूनिट से क्या एग्री सप्लाई चेन मजबूत हो रही है, और दूसरा कि छोटे स्तर पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्या ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सस्टेनेबल मॉडल बन रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
1: सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो हमारे ग्रामीण युवा है जो वहीं पर रुकना चाहते हैं और कुछ बड़ा सोच के काम करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए मौका मिलना चाहिए। जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ट्रेनिंग में थोड़ा अभी कोशिश है।

0: टेक्नोलॉजिकल एनहेंसमेंट से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा। तो आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है कि हम ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब भारत को बनाएं, उस दिशा में कितनी प्रगति आप देखते हैं?
1: सर, महिलाएं बहुत बड़ा और हिस्सा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, क्योंकि भारत में फूड प्रोसेसिंग कोई आज की नहीं है, तो टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन अगर आप देखें कि कितनी चीजें हमारे घरों में बनती है, आज उस क्वालिटी की चीजें आपको बाजार में नहीं मिलती। हमारी नानियों दादियों ने क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या नहीं हमने खाया है, तो ये ऐसे ही नहीं बनती। फलों से, सब्जियों से, अनाज से, मोटे अनाज से, इन सब से वो बनाती रही। मैं समझता हूँ उसमें अगर आप महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, जो पुराना उनका ज्ञान, पुराने जमाने की जो उनकी विधियां हैं, जो बहुत कम खर्च में ओवरहेड एक्सपेंसिव जिसको कहते हैं, तो कोई भी पदार्थ उसमें वेस्ट नहीं जाता। अभी तो हम अपने जो कृषि टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें से सिर्फ 10% ही फूड प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं, और फल और सब्जियों में तो 20% ही कर पा रहे हैं। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े, अपनाए, तो आप यकीन मानिए वो महिलाएं ऐसा चमत्कार कर सकती है। 44% महिलाएं कम नहीं होती है। अगर एक योजना जिसमें 2 लाख से ज्यादा सेंक्शन हुए, 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है, उसमें अगर 44% महिलाएं हैं, तो ये मानकर चलिए महिलाएं इस योजना को आगे बढ़ा रही है। उनके उस ज्ञान को, जैसे क्या होता है, अगर आप कोई स्वयं सहायता महिलाओं का समूह है, और उसमें जब कोई एक टेक्निकल विशेषज्ञ जाता है, तो आधुनिक पढ़ाई लिखाई वाला होता है, तो जब उनको बताने लगता है, तो हंसती है आपस में कि क्या बोल रहा है, इसको नहीं मानते, ऐसे नहीं ऐसे बनता है। तो उस नॉलेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ट्रेडिशनल नॉलेज है। उस नॉलेज को किस तरह से आप आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट निकलने वाला है। जिन देशों ने फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाया, उन्होंने पुराने नॉलेज को छोड़ा नहीं है, पुरानी टेक्निक को छोड़ा नहीं है, उसको उन्होंने उसको नया रूप दिया, टेक्नोलॉजी ने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये अडॉप्टेशन अगर आप करते हैं इस योजना में, तो यकीन मानिए महिलाएं इस योजना की मतलब कर्णधार हो सकती हैं। और बड़े पैमाने पर कितना प्रोड्यूस हमारा बेकार जाता है, आलू पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, बेकार फेंका जाता है, तो भी फूड प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है, अगर है तो उसकी क्षमता उतनी नहीं है। टमाटर कितने ही राज्यों में टमाटर फेंक दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में तो एक पूरा जिला है टमाटर से सड़कों पर फेंक देते हैं। प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है, फिर प्रोसेसिंग की यूनिट अगर लगा दी जाए, तो उसको मार्केट एक्सेस नहीं है, और वो उस क्वालिटी में उसको मिलना चाहिए, जीवन अवधि है, तो वो प्रोड्यूस उस अवधि में पहुंच जाए कंज्यूमर तक, ये सब व्यवस्था अपने को सोचनी पड़ेगी। और उसके लिए जो मैं जोर इस बात पर है कि जो पुरानी विधियां हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएंगी, तो आप यकीन मानिए महिलाएं जो आज कर रही है ना, जो स्वयं सहायता समूह की छोटे छोटे उद्यम चला रही है, जैसे मिलेट्स के बिस्कुट, छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर गांव गांव में ये बन रही है, ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग, ये दोनों को संभालने की जरूरत है। तो अगर आप पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ मिलाते हैं, अगर मशीनरी नहीं है तो बनाई जा सकती है। जैसे मैंने कहा कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें लोग बना रहे हैं। मैंने छोटे स्थानों पे, अमरावती महाराष्ट्र का छोटा स्थान है, वहां 2-3 यूनिट्स देखे जो 3D टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे, तो उसमें उनको एक इंजीनियर मिल गया, उसके सहारे उन्होंने इसको अपना लिया। तो ये नए प्रयोग वो लोग उनके दिमाग में आते हैं।

0: छोटे छोटे कदम जब एक दिशा में बढ़ते हैं तो वो सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, पूरी तस्वीर बदल देते हैं। पीएम एफएमई योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि उन लाखों हाथों की ताकत है जो अपने हुनर से आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहे हैं। जहां एक छोटा सा यूनिट एक परिवार की उम्मीद बनता है और वही उम्मीद पूरे गाँव की अर्थव्यवस्था को गति देती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि जब नीतियां जमीन से जुड़ती हैं, तो बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं जिंदगियों में दिखाई देता है। हमारे अतिथि जगदीश उपासने जी और हरवीर सिंह जी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम चर्चा का विषय है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद।

0: ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में ख्यालों में जय हंगामा कहां भाग रही तू मैं काले से डर गए क्या
1: हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।

ತಂದಾನ ಹೇ ರೇಷ್ಮಿ ಬಾಲ ತಂದಾನ

मैं किधर को जाता ही चंदाना, क्यों पास न आता ही चंदाना, क्या मारी ये बाता चंदाना, दिल तोड़ ये घाता चंदाना। तो मैं किधर को जाता ही चंदाना, क्यों पास न आता ही चंदाना, क्या मारी ये बाता चंदाना, दिल तोड़ ये घाता चंदाना। हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।

शराब की हालत रंग बिरंग।

तो साहब आज के मेरी पसंद में हम याद कर रहे हैं बॉलीवुड के बेताज बादशाह मिर्ज़ा महमूद अली साहब को। और जब भी बॉलीवुड की कामयाबी का जिक्र होता है तो सबसे पहले जिस अदाकार का मतलब जिन अदाकारों का नाम आता है उनमें एक नाम मोहम्मद महमूद अली साहब का भी है। उन्होंने अपनी बेमिसाल मजाही अदाकारी, मुनफरिद अंदाज और शानदार एक्टिंग और टाइमिंग से हिंदुस्तानी फिल्मी सनत में समय ने ऐसा मकाम हासिल किया जो आज कम ही फनकारों को मैसर आता है। बल्कि ये कहना चाहिए समीन कि वो एक कॉमेडियन ही नहीं बल्कि एक अच्छे अदाकार, अच्छे गुलकार, प्रोड्यूसर और हिदायतकार भी थे। चार दहाइयों से भी ज्यादा तवील अरसे तक रहा उनका करियर और लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया और लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी।

0: ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ।
1: ਅਰੇ ਹਜ਼ਰਤਾ ਮੁਝੇ ਟੋਲੀਆਂ ਸੇ ਬਚਾਓ ਏ ਹਜ਼ਰਤਾ।
2: 1960 और 70 की दहाई महमूद के नाम रही। उनकी फिल्मों का बाकायदा इंतजार किया जाता था और कई मरतबा नाजरीन सिर्फ उनकी मौजूदगी की वजह से ही फिल्म देखने सिनेमा घरों का रुख किया करते थे। उनकी मशहूर फिल्मों की अगर बात करें, पड़ोसन, बॉम्बे टू गोवा, गुमनाम, भूत बंगला, कुमारा बाप, प्यार किए जा वगैरह शामिल है। खासतौर पर पड़ोसन में जुनूबी हिन्दुस्तानी मौसीकार मास्टर पिल्लई का किरदार रसामीन आज भी लोगों को याद है और उनके द्वारा जो एक्ट किए गए अलग अलग रोल्स, उनके जरिए जो निभाए गए अलग अलग यादगार रोल, उनमें मिजाही तरीन अदाकारों में किरदारों में इस कैरेक्टर का भी शुमार किया जाता है और कई अवार्ड्स भी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में जीते। फिल्म फेयर की जानिब से अगर बात करें तो फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड

ही कुवारा बाग फिल्म आई थी और 76 में कैद एक फिल्म का नाम था और बजरंगी का किरदार था इसमें उनका। 1977 में आई थी सबसे बड़ा रुपया, और 1980 में नौकर, और 1983 में खुददार। ये बहुत सारी फिल्में नॉमिनेशन तक पहुंची और ये एक लंबी फहरिस्त ही बताती है कि महमूद साहब कितने ज्यादा मकबूल थे लोगों के दरमियान। अब आपको सुनवाते हैं कि जो फिल्म फेयर की जानी से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड था 1963 की फिल्म दिल तेरा दीवाना। याद कीजिए महमूद और शम्मी कपूर को।

मेरा दिल तेरे नाम से।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस एयर कर रही है प्रोग्राम मेरी पसंद, और आज हम अदाकार मिजाहिया अदाकार महमूद साहब को याद कर रहे हैं। आज उनका यौम वफात है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें 23 जुलाई का दिन है ये, एक और हवाले से भी खास है क्योंकि आज मनाया जा रहा है नशरियात का कौमी दिन। और इसी मुनासबत से समीन अब से थोड़ी ही देर के बाद यानी 11:30 पर हम आपको एक फीचर भी सुनवाएंगे जिसका उनवान है रेडियो की अहमियत और इफादियत। तो अपने तमाम सुनने वालों को अपनी पूरी टीम की जानिब से हम नशरियात के कौमी दिन की मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और बात का सिलसिला जारी रखते हैं महमूद के हवाले से। महमूद की खास बात यह रही कि वो सिर्फ लोगों को हंसाते ही नहीं थे बल्कि जज्बाती किरदार भी जब उन्होंने फिल्मों में निभाए तो बड़ी खूबी के साथ, बड़ी उमदगी के साथ निभाए। फिल्म कुंवारा बाप आपको याद होगी, उन्होंने इस फिल्म में पोलियो जैसे हसास मौजू को मिजाह और जज्बात के हसीन इम्तिजाज के साथ पेश किया था। इस फिल्म की हिदायतकारी और प्रोडक्शन भी खुद उन्हीं की थी, यानी महमूद साहब ने ही फिल्म प्रोड्यूस की थी। इससे ये अंदाजा होता है कि उनमें सिर्फ अदाकाराना सलाहियतें ही नहीं थी बल्कि तख्लीकी सलाहियतें भी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। एक और खास बात भी महमूद साहब की रही कि उन्होंने हमेशा नए आने वाले फनकारों की हौसला अफजाई की, उनकी मदद करने के लिए हमेशा वो कोशा रहते थे।

इसी वजह से फिल्मी तबके में काफी मशहूर भी थे। उन्होंने कई उभरते हुए अदाकारों को मौके फराहम किए, जिनमें बाद में सुपरस्टार बनने वाले चंद फनकार भी शामिल थे। फिल्मी सनत में उन्हें न सिर्फ एक अजीम कॉमेडियन बल्कि एक मेहरबान और मददगार इंसान के तौर पर भी याद किया जाता है।

किस्मत न हो खोटी कैची की कमाई की जगह जेल की रोटी ये इंसाफ हुआ दुनिया।

दुनिया में अगर कोई भी हजाम न होता, जब दाढ़ियां रख के कोई गुलाम न होता, मशहूर जमाने में है एक लड़की जो मुझे

अयोकर दाल पुन्नम दात त्योहार समाचक अब देखिए तब होता है संसार समाचक।

0: आज ही का दिन था 23 जुलाई साल था 2004। महमूद साहब थे अमेरिका में, इंतकाल हो गया था आज ही के दिन और आज हम उन्हें अपनी पूरी टीम की जानिब से याद कर रहे हैं और ये है हमारा उनके नाम खराज अकीदत। उनकी वफात ने फिल्मी दुनिया को गमजदा कर दिया और हमने एक अजीम मिजाहिया अदाकार खो दिया, लेकिन फिल्में और उनके लाजवाल किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। वो एक ऐसे फनकार थे सामेन जिन्होंने ये साबित किया कि कॉमेडी सिर्फ हंसाने का नाम नहीं है बल्कि ये एक फन है और ऐसा फन है जो लोगों के दिलों को छू जाता है। गुरबत से शोहरत तक का उनका सफर मेहनत लगन और हौसले की जिंदा मिसाल है। आज भी जब उनकी फिल्में देखी जाती हैं तो नाजरीन बेअख्तियार हंस पड़ते हैं और यही किसी अजीम फनकार की सबसे बड़ी कामयाबी हुआ करती है। महमूद का नाम हमेशा हिंदुस्तानी फिल्म सनत के सुनहरी बाब में एहतराम के साथ लिया जाता रहेगा।
1: खाली डब्बा।

रेडियो हमेशा से ही अवामी जिंदगी का एक अहम जुज रहा है और कई मानों में इसकी अहमियत और इफादियत आज भी है। ऑल इंडिया रेडियो का शुमार दुनिया के सबसे बड़े नशरियाती इदारे के तौर पर बरकरार है और इसकी अहम वजह है

0: या हिंदुस्तान की सियासत का या हिंदुस्तान की खास करके जरात का खेती बाड़ी वाले हजरात जो हैं वो जानकारी लेने के लिए एक वाहिद रास्ता बचता है जो रेडियो है। रेडियो आज की तारीख में उतनी अहमियत का हामिल है जिस वक्त वजूद रेडियो का आया। आज हिंदुस्तान तरक्की पजीर है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन किसान खास करके मध्यम वर्ग लोग जो गांव और देहात में जिंदगी बसर कर नागालैंड मिजोरम मणिपुर और इसके अलावा मगरबी बंगाल और बिहार और हमारा त्रिपुरा वगैरह और खास करके राजस्थान के सरहदी इलाके जहां आज भी शमशी तवानाई से इलाके रोशन होते हैं, जहां तस्वुर नहीं है लाइट का वहां एक जरिया बचता है रेडियो, जिससे हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की जिंदगी बसर करने के लिए हिंदुस्तान के हालात जानने के लिए हिंदुस्तान की कल्चर को समझने के लिए एक वाहिद रास्ता है रेडियो।
1: आइए अब जानते हैं नौजवानों से कि वो क्या सोचते हैं रेडियो के बारे में।
2: कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं टीवी देखूं, और एक नेशनल टीवी हमारे जो दूरदर्शन चलाता है और दूसरा एक रेडियो चैनल जिस पे मैं नॉर्मली 106 पर मैं न्यूज सुनती हूँ, तो मुझे लगता है वो थोड़े से ऑथेंटिक सोर्सेज है कोई भी इन्फो लेने के। मुझे बहुत ज्यादा एग्जरेशन पसंद नहीं है, तो एक सिंपल और एक शॉर्ट टाइम में आपको मिल जाता है। दूसरा, आप रास्ते में भी होते हो तो आप रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हो, और बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे मोबाइल फोन में ये फैसिलिटीज आने लगी है, तो इसकी वजह से हमें एक अलग से रेडियो सेट यूज करना और एक फोन यूज करने के जहां से हम बच गए, इसकी वजह से मोबाइल रेडियो वगैरह सुनना आसान हो गया। और दूसरा, कई बार आप शॉर्ट ब्रेक्स में होते हो, आपका मूड ऑफ है तो आप क्विकली सुन सकते हो, और वीडियोस देखना फिर भी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आप और काम नहीं कर पाएंगे, तो मुझे लगता है इम्पोर्टेंस है, हम इसको नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते।
3: मैम, आज के इस दौर में अगर वीडियो का तकाबल बाकी तीन स्क्रीन उनसे किया जाए तो बहसियत यूथ मुझे लगता है कि रेडियो की एक अपना अहम मकाम है। बेशक जैसे कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है तीनों स्क्रीन्स भी अपनी एक अहमियत रखती हैं, लेकिन रेडियो के साथ जो एडवांटेजेस हैं वो बाकी सबके साथ नहीं। जैसे कि अगर हम एक गुफ्तगू में जाएं तो देखेंगे कि किसी भी स्क्रीन पे, चाहे वो मोबाइल स्क्रीन हो, टीवी स्क्रीन हो या फिल्म स्क्रीन, किसी भी चीज को देखने के बाद हम किसी हद तक उसे महदूद कर देते हैं अपनी नजरों में, अपने ख्याल में, अपने तसव्वुर में। लेकिन जब हम कोई चीज रेडियो पर सुनते हैं या उसे महसूस करते हैं तो उसकी हद मुकर्रर नहीं की जा सकती। ये हमारे ख्याल के ऊपर, हमारी फिक्र के ऊपर है कि हम उसे कहां तक ले जा सकते हैं, कहां तक उसे सोच सकते हैं। यानी कि एक चीज रेडियो पे सुनी जाने वाली कोई भी चीज एक हद नहीं दी जा सकती।
1: इंडिया रेडियो की खसूसियत की बात की जाए तो उसने मुतअद्दिद नौईयत और एतबार से प्रोग्रामों को तरतीब दिया और बहुत अहम असनाफ पर तवज्जो मरकूज की। उनमें से एक है ड्रामा। उर्दू ड्रामों को जितना फरोग ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस ने दिया उतना दुनिया में किसी इदारे ने शायद ही दिया हो, और यही कहना है मारूफ ड्रामा निगार डॉक्टर मोहम्मद काजिम साहब का।
4: देखिए, उर्दू मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो की शुरुआती दिनों से ही उस पर ड्रामे नशर हुए हैं। उर्दू के मुझे लगता है कि जितने भी बड़े अदीब व शायर रहे हैं उन्होंने ड्रामे लिखे हैं रेडियो के लिए और मुसलसल नशर हुए हैं। बल्कि मैं ये कहूं कि एक जमाने में, यानी पारसी थिएटर के बाद, जो लोग ये कहते हैं कि ड्रामे का जवाल नजर आता है, उस वक्त रेडियो ने ड्रामे को संभाला दिया और रेडियो पर मुसलसल ड्रामे पेश हो रहे थे। और उर्दू के उस जमाने के तरक्की पसंद अदीब जितने भी थे सबों ने रेडियो पर ड्रामे लिखे, बल्कि रेडियो पर बाजाबता इसी काम के लिए मुलाजिम थे। मिसाल के तौर पर मंटो, अश्क, कृष्णंदर, बेदी, इसमत चौहताई, हजर अहमद अब्बास या सरदार जाफरी, तमाम लोगों ने ड्रामे लिखे हैं। ये उर्दू के बड़े अदीबों में है और वो पूरा एक अहद इनसे मंसूब है।

0: हम मुंतकिल हो रहे थे, जंग आजादी चल रहा था उस जमाने में भी और आजादी के बाद भी, उन लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया है ड्रामे के जरिए, और बल्कि लोगों को इंतजार होता था कि इस हफ्ते इस दिन को इतने बजे फोन साहब का ड्रामा आएगा, और उसके लिए बाज़ाब्ता वक्त निकालते थे कि इस वक्त हमें यह ड्रामा सुनना है, इनका ड्रामा आना है, मंटो का ड्रामा आना है। उससे कि ड्रामा एक ऐसी सिंफ है जिसमें अदब को फरोग देना मुश्किल काम है, और रेडियो ड्रामा और भी मुश्किल काम है क्योंकि वहां कुछ नजर नहीं आता है, सिर्फ आवाज है, और उस आवाज में जिस तरह के जादू इन लोगों ने जगाए हैं वो मतलब बहुत बड़ा काम है, और उर्दू के फरोग में बड़ा काम किया। आजादी के बाद भी आप बाद के जमाने में देखें कि मंजूम ड्रामे भी आए हैं, जुबैर रिज़वी साहब ने लिखा है आपके, उसके बाद और भी लोग जो है शामिल, शमी हनफी साहब ने बहुत सारे रेडियो ड्रामे लिखे हैं, इब्राहिम यूसुफ ने बहुत सारे रेडियो ड्रामे लिखे हैं, तो और ये लोग सब बड़े अदीब हैं, इन लोगों ने इस तरह के ड्रामे लिखे हैं। तो ड्रामे और वो ड्रामे कुछ उसमें से शाये हुए हैं, कुछ बाद में तरतीब भी दिए गए, कुछ इन लोगों के अपने मजमुए में शामिल है, शमी साहब के दोनों मजमुए में रेडियो ड्रामे शामिल है, जुबैर रिज़वी का ड्रामा रसाले में छपा है, और मंडो के चंदर बेदी असमत, इन लोगों के ड्रामे तो ऑलरेडी उनकी कुलियात में शामिल हो चुके हैं। तो इस तरह मैं ये कहूंगा कि रेडियो ने ड्रामे के फरोग में, और खसूस उर्दू ड्रामे के फरोग में, कि ड्रामे का मतलब उस जमाने में उर्दू ड्रामा ही हुआ करता था, कि रेडियो स्टेशन जो ड्रामे नशर होते थे उर्दू में ही नशर होते थे, तो उसने ड्रामे के फरोग में रेडियो ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, बल्कि नाकाबिले फरामोश काम किया है। ड्रामा बिल्कुल कोई भी ड्रामा मैं ये नहीं कह सकता है कि वो सोशल नहीं होता है, सामाजिक ड्रामे ही होते हैं, ड्रामे का मतलब ही समाज होता है, इसलिए कि पहली बात तो ये कि उसमें अकेला एक आदमी कुछ नहीं करता है, एक से ज्यादा लोग शामिल होते हैं रेडियो में, तो और भी ये है कि उसमें टेक्नीशियन को भी मैं उसमें शामिल कर लूं, तो वो भी उस ड्रामे का हिस्सा बन जाते हैं जो टेक्नीशियन होते हैं आर्टिस्ट के अलावा, और उससे जो मैसेज मिलता है हमें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उर्दू नहीं जानते हैं लेकिन उर्दू ड्रामे नशर करने में ताउन दे रहे हैं, उर्दू का फरोग कर रहे हैं, तो इस तरह से एक अलग सोसाइटी, एक अलग सोशल काम वो भी हो रहा है। ऑल इंडिया रेडियो ने हमेशा ऐसे मौजूदात का इंतखाब किया जो खवास के साथ साथ आवाम के लिए भी अहमियत के हामिल हो। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में बहुत सारी जबानें बोलने वाले और मुख्तलिफ मजाहिब और कल्चर के लोग रहते हैं, और इस गंगा जमनी तहजीब की हमेशा अबियारी की ऑल इंडिया रेडियो ने।
1: देखिए, आजादी से पहले और आजादी के बाद रेडियो का एक खास किरदार रहा है। जब रेडियो शुरू हुआ तो उस वक्त कोई और मास मीडिया नहीं था, आज देखिए हम समझते हैं कि टेलीविजन है, फिल्में हैं, तो उस दौर को याद कीजिए जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेडियो था, और रेडियो से पहले अखबारात वगैरह होते थे जो अलग अलग जबान के लोगों को पहुंचते थे और नतीजे में एक ही कल्चर की आमतौर से नुमाइंदगी करते थे। तो हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये पहला जरिया था इब्लाग का, मास मीडिया का, जो एक साथ सबको पहुंच रहा था, यानी कि हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, पारसियों को और ईसाइयों को, और जितने भी मतलब तबकात हैं, और चाहे वो रूरल इलाका हो या शहरी इलाका हो, चाहे वो मद्रास उस जमाने में कहते थे या वो पिशावर हो, तो जो शुरू में ट्रांसमीटर्स लगाए गए थे उसमें एक ट्रांसमीटर वहां भी लगाया गया था जिसको आज हम लोग कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा, और उस जमाने में उन लोगों ने जिस तरह के प्रोग्राम पेश किए वो आज तक मिसाल है। वजह ये है कि जब एक बार आपको मालूम हो जाता है कि आपकी बात जो है हर तबके का इंसान सुन रहा है और हर मजहब से ताल्लुक रखने वाला सुन रहा है, हर तहजीब का नुमाइंदा सुन रहा है, हर सकाफत से ताल्लुक रखने वाला सुन रहा है, तो आप एक ऐसा लहजा इख्तियार करते हैं जिसमें आप सबसे बात कर सके, और इसी को हम कहते हैं मिली जुली तहजीब या गंगा जमनी तहजीब या कंपोजिट कल्चर। और देखिए, इससे खूबसूरत क्या बात हो सकती है कि सुबह का वक्त है और ट्रांसमिशन चल रहा है, और जो हमारी रेडियो की पहली अनाउंसर हैं वो आती हैं और अपना अनाउंसमेंट करती हैं, और उनकी आवाज जो है वो हवाओं के दोष पे उड़ते हुए चलते हुए आप तक पहुंचती है, सुनने वालों तक पहुंचती है, और

0: अंतर हो जाता है, और वो जितने भावों से सुनाते हैं ना, जो बातें कहते हैं, वो मुझे जल्दी स्ट्राइक करती है। तो मुझे लगता है मतलब मेरे लिए तो रेडियो इम्पोर्टेंट है, बट पता नहीं मेरा छोटा बेबी है, मैं उसे कितना ये बात समझा पाऊंगी।
1: बोले बिसरे गीत बोली के मतवाले राही महफिल। जी हाँ, ये वो रेडियो प्रोग्राम्स हैं जिन्हें सुनकर हमारा बचपन गुजरा है। क्या जमाना था वो भी, दिखाई कुछ नहीं दे रहा होता था, पर फिर भी पूरी अक्कासी दिमाग में चलती रहती थी। एडवर्टीजमेंट के नाम पर अपने टाइम चेक कीजिए, करेक्ट, एक से एक दिलचस्प और मुख्तसर। नहीं हाँ, खो गया है वो सब, वो जमाना बहुत याद आ रहा है। आजकल के आरजीएस को चाहिए कि 70s और 80s के रेडियो प्रोग्राम सुने और उनसे सीखें। खुदा करे कि रेडियो का वही जादू फिर से छा जाए। नाचीज लियाकत अली, दिल्ली से।
2: इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में जहां तफरी के बहुत से जराए मौजूद हैं, वहां रेडियो अपनी मुनफरिद शनाख्त के साथ मौजूद है और उन तमाम चैलेंजों का सामना कर रहा है जो वक्तन फवक्तन उसको दरपेश है। इस सिलसिले में प्रोफेसर दानिश इकबाल और प्रोफेसर अली जावेद साहब का कहना है कि चैलेंजेस तो हर दौर में आते हैं, जरूरत है उनका डट के मुकाबला करने की।
3: आज का जो दौर है वो हर फील्ड में, हर मैदान में चैलेंजेस का दौर है। आप यशोर पे चलते हैं तो आपको लगता है कि ये भी एक

भेजते। रेडियो एक ऐसा जरिया है कि जो हमारी जिंदगी की मसरूफियात में खलल अंदाज नहीं होता। हम अगर सफर कर रहे हैं तो गाड़ी में हम रेडियो सुनते हुए चले जाते हैं। हमारा किसान अगर खेत पे है तो वो अपने रेडियो से ही अपने लुत्फानंदोज होता है, वो उसको दुनिया की खबरें मिलती हैं। तो रेडियो के लिए कोई चैलेंज नहीं है, रेडियो के लिए कोई चैलेंज बनने की कोशिश करता रहे, लेकिन रेडियो खुद एक ऐसी आवाज है। अक्सर ये कहा जाता है कि इस आज रेडियो की सुनने का सिलसिला कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि आज सेट कम हो गए, लेकिन रेडियो की लिसनिंग कम नहीं हुई है। आज भी जब मैं कोई सफर करता हूं तो मैं खबरें हों या गाने हों या हालात हाजरा पे तबसरे हों, मैं रेडियो से ही सुनता हूँ। और दूसरी बात ये कि जो हम पर्दे सीमी पर देख रहे हैं उसमें लफ्जियात कम होते हैं, क्योंकि हम वहां तस्वीरों की जुबानी बात की जाती है, यहां हम लफ्जों से बात करते हैं और लफ्ज वो हमारा साथ देते हैं कि जो हम देखना इत्तफाकन अगर सीमी पर हमारी नजर से कोई तस्वीर हट गई तो हम उसको पूरी तरह की समझ नहीं पाते। रेडियो हमें हर चीज को समझाता है। मैं खुद क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहा हूं कुछ अरसे, तो मैंने महसूस किया है कि लोगों में जो आपस में करीब लाने का एक सिलसिला रहा वो रेडियो से रहा। ऐसा कोई प्रोग्राम दूसरा कोई मीडिया नहीं पेश कर रहा, गाने हो रहे हैं, फिल्में हो रही हैं, लेकिन जिंदगी साजी किस प्रोग्राम से हो रही है उस पर रेडियो ने बहुत ज्यादा तवज्जो दी है। इसलिए मैं रेडियो को मुबारकबाद देता हूं और मैं समझता हूं कि ये आवाज कभी नहीं खत्म होगी। ये आवाज वो है कि जो अब्द और महबूद को जोड़ती है। रेडियो आज दुनिया में तहसील का नसीब

और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आज 23वीं दौलत मुशर्रका खेलों का आगाज हो रहा है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से दो रोजा रोमानिया दौरे पर रहेंगी। इस दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू रोमानिया के सदर विक्टर डैन उबूरी वजीर आजम यानी बोलजान सेनेट के सदर मसिया एब्रोडियान और चैम्बर ऑफ डिप्यूटी

अमृता और वाजिद की आवाजों में ये नगमा भी आपने सुना गॉड तुसी ग्रेट हो फिल्म से। इसके साथ ही आज का फिल्मी दो गानों का ये प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा अब खत्म हुआ। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री

सौराष्ट्र, कच्छ, मगरबी राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में इतवार तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। 23वीं दौलत मुश्तरका खेलों का आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आगाज हो रहा है। 10 दिनों तक जारी रहने वाले इन खेलों में 74 मुल्कों की टीमें हिस्सा लेंगी। ओलंपिक्स में तमगा जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और ब्लोवलिना बोरगोहाइन सीडब्ल्यूजी 2026 में भारत की नुमाइंदगी करेंगी। भारत ने पिछले दौलत मुश्तरका खेलों में 61 तमगे हासिल किए थे। चीन के शहर चांगजू में चाइना ओपन बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। ओलंपिक में 2 मरतबा तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु भारत की खिलाड़ी उन्नति हुड्डा को हराकर खवातीन सिंगल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। संघीय जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया के 2 रोजा दौरे पर रहेंगी। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के एक आले के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उसकी सख्त

जम्मू कश्मीर में एक बड़ा एहतजाज किया जाएगा। भारत ने सेहत आम्मा के हंगामी हालात पर काबू पाने के लिए कीनिया को 4.5 टन तिब्बी इमदाद भेजी है। अमरीका ने मुसलसल 12वीं रात ईरान पर फजाई हमले किए। दोनों ममालिक शहरी बुनियादी ढांचे को निशाना बना रही हैं। और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आज 23वें दौलत मुश्तरका खेलों का आगाज हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात।

मिलियन वेव से 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। नजर डालेंगे अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया के 2 रोजा दौरे पर होंगी। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के एक आले के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उसकी सख्त मजम्मत की है और इस बात को दोहराया कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। पाकिस्तानी हुकाम के मजालिम के खिलाफ आज पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में एक बड़ा एहतजाज किया जाएगा। भारत ने सेहत आमा के हंगामी हालात पर काबू पाने के लिए कीनिया को 4.5 टन तिब्बी इमदाद भेजी है। अमरीका ने मुसलसल 12वीं रात ईरान पर फजाई हमले किए। दोनों ममालिक शहरी बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं और स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आज 23वें दौलत मुश्तरक खेलों का आगाज हो रहा है। ये थी अब तक की

0: खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 1:15 होने को है। उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे अपनी दूसरी मजलिस की नशरियात को लेकर हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
1: बहुत ही खूबसूरत गीत श्रोताओं, मुकेश जी की आवाज और राज कपूर जी की मासूमियत, ये जोड़ी हमेशा कमाल करती थी। फिल्म की कहानी शुरू होती है राजू से। राजू एक अनाथ, बेहद भोला भाला और नेक दिल इंसान जो डफली बजाकर गाना गाकर अपना पेट पालता है। एक दिन राजू एक घायल शख्स को तड़पते हुए देखता है और उसकी जान बचाता है, लेकिन उसे क्या पता कि जिस इंसान की उसने मदद की है वो चंबल का एक खूंखार डाकू सरदार है। डाकू राजू की मासूमियत और ईमानदारी से प्रभावित होता है, उसे अपने गुरुओं के पास लेकर जाता है। राजू समझता है कि ये रॉबिन हुड की तरह गरीबों की मदद करने वाले भले लोग हैं। इस बीच उसकी मुलाकात होती है सरदार की बेटी कमली से।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। कमली यानी अभिनेत्री पद्मिनी के अद्भुत नृत्य और अदाकारी ने इस फिल्म में जान भोग दी। जब राजू डाकुओं के ठिकाने पर रहने लगता है तो कमली और उसके बीच प्यार पनपने लगता है, लेकिन राजू अभी भी इस कड़वे सच से अनजान था कि ये लोग बंदूक के दम पर निर्दोषों का खून बहाते हैं।

श्रोताओं, कहानी में असली मोड़ तब आता है जब सरदार की मौत के बाद राका यानी प्राण डाकुओं का नया सरदार बनता है। राका एक क्रूर और हिंसक डाकू है। एक शादी के दौरान जब डाकू पूरे गांव में कत्लेआम और लूटपाट मचाते हैं तो राजू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि ये दया नहीं बल्कि नग्न हिंसा है। राजू का दिल टूट जाता है और वो पुलिस को सूचना दे देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजू देखता है कि पुलिस भी डाकुओं को सुधारने के बजाय उन्हें एनकाउंटर में खत्म कर देना चाहती है। तब राजू के मन में सवाल उठता है कि अगर अपराध को खत्म करना है तो अपराधी को मारना हल है या उसके अंदर पनप रहे पाप को मारना। राजू फैसला करता है कि वो डाकुओं को आत्मसमर्पण के लिए मनाएगा।

0: इंद्रप्रस्थ चैनल पर हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज हम बात कर रहे हैं फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। दोस्तों, होठों पे सच्चाई रहती है, ये केवल एक गाना नहीं बल्कि इस देश की आत्मा है। ये फिल्म महात्मा गांधी की उस विचारधारा को दर्शाती है जिसमें कहा गया था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। राजू जब डाकुओं के बच्चों और महिलाओं को देखता है तो वो उन्हें ये सही रास्ता दिखाने के लिए तड़प उठता है। वो डाकुओं को समझाता है कि हिंसा का रास्ता सिर्फ विनाश की तरफ ले जाता है।
1: कोटों तो सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
2: मुकेश, जो आप सबके प्रिय गायक थे, मेरे बड़े भैया थे। मुकेश भैया एक महान कलाकार थे, एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं? जब जब पुरानी बातें याद आती है तो आंखें भर आती हैं। उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन

सामने राघव और बाकी डाकू अपने हथियार डाल देते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। इस फिल्म ने 1961 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता। राज कपूर जी का अभिनय, पद्मनी की सुंदरता, प्राण साहब की कड़क अदाकारी और मुकेश जी का, हम ये कहें कि उनकी रूहानी आवाज, इन सब ने मिलकर इस फिल्म को एक अमर कृति बनाया। आज भी जब देश में शांति और सद्भाव की बात होती है तो ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि हमारी ताकत हमारी सादगी और सच्चाई में है। उम्मीद है आपको जिस देश में गंगा बहती है इसका यह संगीतमय सफर पसंद आया होगा। मुझे यानी अपने दोस्त को अनुमति दीजिए, हम आपको छोड़े जाते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

आप लौट चले हैं। ये गाना सिर्फ राजू का बुलावा नहीं था बल्कि भटक चुके लोगों के लिए सही रास्ते पर वापस आने का एक संदेश था। श्रोताओं, अंत में राजू की ईमानदारी, प्यार और अहिंसा

0: अभी हमारी श्रोता सुनने के कार्यक्रम में एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। दिन के 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोण हुई खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार नीट प्रीख्या पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को छेती तो छेती सख्त सजा देने लिए फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करेगी। संसद के दोवे सदन की कार्रवाई नीट प्रीख्या पेपर लीक समेत वक् वक् मुद्दों से विरोधी धिर के हंगामे तो बाद दोपहर बाद 2 बजे तक लिए मुलतवी कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 देशों के दौरे के आखिरी पड़ाव से आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेंगे। भारत ने सिंधु जल संधि बारे संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को रद्द करते हुए कहा कि जिन्ना चिर पाकिस्तान सरहद पर दहशतगर्दी

और खातून अव्वल सदर जमहूरिया मुर्मू के एजाज में आज सरकारी इशाइये का एहतमाम करेंगे। कल सदर जमहूरिया मुर्मू भारत रोमानिया तिजारती फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के मेम्बरान से मुलाकात करेंगी। सिक्किम की सरकार ने नामची जिले में सुरंग के वाकये की पूछताछ के लिए आईजीपी की जिरे निगरानी एक आला सतह की चार मेंबरों पर मुश्तमिल कमेटी कायम की है। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर पेश करेगी। वजीर आला प्रेम सिंह तमांग ने एक आला सतह की कमेटी कायम करने का ऐलान किया था। फिलिपाइन के मनीला में आसियान इलाकाई फोरम की 33वीं वजारती मीटिंग में भारत ने दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने पर जोर दिया है और एक आजाद खुले सबकी शमूलियत वाले और जवाबित पर मबनी भारत बहरुल काहिल के अपने अज़्म का इयादा किया है। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि ये फोरम खासतौर से बढ़ती आलमी पेचीदगियों के दरमियान भारत बहरुल काहिल में सियासी और सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल की खातिर एक अहम प्लेटफॉर्म है। बहरी सलामती के सिलसिले में वजीर मौसूफ ने कहा कि बहरे हिंद खित्ते में इत्तलात के तबादले का मरकज भारत बहरुल काहिल में बहरी बेदारी पहल और भारतीय बहरिया के असासे तैनात किए जाने जैसे इकदामात पायरेसी सामान और मुनशियात की गैर कानूनी तिजारत से निमटने में मदद के साथ साथ महफूज बहरी तिजारत को भी यकीनी बना रहे हैं। भारत ने दरियाए सिंध के आबी मुआहदे से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की रायजनी को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि जब तक इस्लामाबाद की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी को उसकी रियासती पॉलिसी के एक अहम हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहेगा उस वक्त तक इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश पाकिस्तान की जानिब से नई दिल्ली पर यह इल्जाम लगाए जाने के बाद जवाब दे रहे थे कि वो दरियाए सिंध आबी मुआहदे को मुअत्तल रखते हुए पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जम्मू कश्मीर पर जनाब पी हरीश ने कहा कि मरकज का जेर इंतजाम इलाका हमेशा भारत का एक अटूट और कभी अलग न होने वाला हिस्सा रहा है और रहेगा। अमरीका और सऊदी अरब ने एक अहम और तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत खलीजी मुमलिकत को सिविल एटमी प्रोग्राम को फरोग देने की इजाजत होगी। अमरीकी महकमाए तवानाई के मुताबिक इस मुआहदे को पुरमन एटमी तआवुन के मुआहदे के तौर पर बयान किया गया है जो सऊदी अरब की एटमी तवानाई प्रोग्राम में अमरीकी कंपनियों को ज्यादा रिसाई फराहम करेगा। 23वीं दौलत मुश्तरका खेलों का आज शाम स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आगाज हो रहा है। 10 दिनों तक जारी रहने वाले इन खेलों में 74 मुल्कों की टीमें हिस्सा लेंगी। भारत के 125 एथलीट इन खेलों में हिस्सा लेंगे। ओलंपिक में तमगा जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा मीराबाई चानू और लोवलीना बोरगोहाइन सीडब्ल्यूजी 2026 में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज नीट पेपर लीक में मुलव्वस अफराद को जल्द और सख्त सजा को यकीनी बनाने की खातिर फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि तलबा के मुस्तकबिल का तहफ्फुज हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले समेत किसी भी मामले पर बहस के लिए तैयार है। भारत ने मनीला में आसियान वजारती मीटिंग में दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में दरियाए सिंध आबी मुआहदे पर पाकिस्तान की रायजनी को मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा कि मुआहदा उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक सरहद पार की दहशतगर्दी खत्म नहीं हो जाती। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया। कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू नहीं रहेगी। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का यह बयान परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
1: आप जिस हिसाब से सदन में सरसा साते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे ये ठीक नहीं है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
2: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पर चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पर चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या। आज तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
3: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूं कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
0: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
5: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
0: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर यह जवाब दिया।
6: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो आपसी विश्वास सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
0: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
7: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रुसनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजर डान के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयरकोर बोटचवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ. मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृहमंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जिंदगी अगर मुस्कुराने का नाम है तो हिंदी सिनेमा में उस मुस्कान को सबसे खूबसूरत अंदाज देने वाली में एक नाम हमेशा याद किया जाएगा और वो नाम है महमूद का। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। कार्यक्रम के साथ मैं आज आपकी दोस्त अर्चना गोयल। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आज का हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है उस कलाकार को जिसने अपने अभिनय, हास्य, नृत्य और बेहतरीन अदाओं से लाखों दिलों में जगह बनाई। आज बात महमूद साहब की।

29 सितंबर 1932 को मुंबई में जन्मे महमूद के पिता मुमताज अली मशहूर डांसर और अभिनेता थे, लेकिन परिवार ने आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया। महमूद ने टैक्सी चलाने से लेकर पोल्ट्री फार्म में काम करने तक कई छोटे बड़े काम किए। फिल्मों में शुरुआत छोटे छोटे किरदारों से हुई, लेकिन उनका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाया। जल्द ही उन्होंने साबित कर दिया कि कॉमेडियन भी फिल्म का सबसे यादगार हिस्सा हो सकता है। फिल्म पड़ोसन में महमूद ने दक्षिण भारतीय संगीत शिक्षक का किरदार निभाया। इस भूमिका के लिए उन्होंने दक्षिण भारतीय लहजे और हाव भाव पर खूब मेहनत की। यही वजह है कि आज भी ये किरदार हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार हास्य पात्रों में गिना जाता है।

0: தன்னாடு கருகே சிங்கா.
1: ஐயோ தம் தம் தம் தம் தம்

0: जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: तो अब बारी है संदेशों की। हमारे बहुत से श्रोताओं को शिकायत होती है कि मैं उनके मैसेज नहीं लेती हूं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कई बार समय की कमी के कारण मैसेज नहीं ले पाती हूं, पर आज मैंने देखा है कि बहुत सारे श्रोता शिकायत कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने मैसेज लिया है। ये हैं हमारे साथ एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्किन, पीना मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना, और ये लिख रहे हैं कि आपसे गुजारिश है कि सभी के संदेश जरूर लेना जो बने होते हैं। ओके, आज के कलाकार में महमूद

पर जानकारी अच्छी लग रही है और गाना भी उनको बहुत पसंद आ रहा है। तो मस्कीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आशा है कि आपकी ये शिकायत भी आज दूर हो गई होगी। हमारे साथ बनी है साउथ एक्सटेंशन से गुरमीत सिंह मीता, साथ में शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल, और आप हैं बड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, और आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार। और ये मैसेज हमें मिला है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा का। और ये मैसेज हमें मिला है चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और राम सहोदर जी का। और ये लिख रहे हैं कि हमें ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी प्रस्तुति पसंद आ रही है। तो इंद्रभान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। दोस्तों, महमूद सिर्फ हंसाते नहीं थे बल्कि वो किरदार को पूरी शिद्दत से निभाते थे। दक्षिण भारतीय शिक्षक हो, भोला नौकर हो या शरारती दोस्त, हर भूमिका में उनकी अलग छाप दिखाई देती थी। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी सटीक थी कि कई बार दर्शक पुराने मुख्य नायक से ज्यादा महमूद का इंतजार करते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि महमूद ने अभिनय के साथ साथ फिल्म निर्माण और निर्देशन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने कई नई प्रतिभाओं को अवसर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने कई कलाकारों और संगीतकारों को शुरुआती दौर में सहयोग दिया। वे दिल के उतने ही अच्छे इंसान थे जितने बड़े कलाकार।

आपको बता दें कि एक समय में महमूद को मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने के लिए नौकरी पर रखा गया था। बाद में उन्होंने मीना कुमारी की बहन मधु से शादी कर ली। शादी और पिता बनने के बाद ज्यादा पैसे कमाने के लिए उन्होंने अभिनय करने का निश्चय किया। शुरुआत में उन्होंने दो बीघा जमीन और प्यासा जैसी फिल्मों में छोटे पात्र निभाए। पहला ब्रेक उन्हें मिला 1958 की फिल्म परवरिश में। गुमनाम फिल्म में उन्होंने दक्षिण भारतीय रसोई का कालजयी किरदार अदा किया। इसके बाद फिल्में आई प्यार किए जा, लव इन टोक्यो, जिद्दी, बॉम्बे टू गोवा, नीला आकाश, नीलकमल, पत्थर के सनम और अनोखी अदा। बतौर निर्देशक उनकी सस्पेंस कॉमेडी थी भूत बंगला। अभिनेता, निर्देशक, कथाकार और निर्माता के रूप में काम करते हुए उन्होंने शाहरुख खान को लेकर वर्ष 1996 में आखिरी फिल्म दुश्मन दुनिया का बनाई, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही।

इन गोवा और जौहर महमूद इन हांगकांग नाम से फिल्में बनाई। उन्होंने 1963 में दिल तेरा दीवाना के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और प्यार किए जा के लिए बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड जीता। इसके अलावा फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन 1967 की फिल्म लव इन टोक्यो में वे नामित हुए। 1960 और 70 के दशक में शायद ही कोई ऐसी बड़ी फिल्म रही हो जिसमें उनकी मौजूदगी दर्शकों के लिए आकर्षण बनी हो। उनकी खासियत ये थी कि वे बिना फुहरता के साथ साफ सुथरा हास्य प्रस्तुत करते थे जिसे पूरा परिवार साथ बैठकर देख सकता था।

23 जुलाई 2004 को अमेरिका में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज वो हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी फिल्में, उनके संवाद और मुस्कान आज भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। उन्होंने साबित किया कि एक कॉमेडियन केवल हंसाने वाला कलाकार नहीं, बल्कि फिल्म की आत्मा भी हो सकती है। दोस्तों, महमूद का जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर चेहरे पर मुस्कान और दिल में हौसला हो, तो मंजिल जरूर मिलती है।

0: काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

उसमें जिसमें 3:05 पर खबरें नशे की जाएंगी और फिर 3:15 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत चंद फिल्मी लक में आप सुन सकते हैं।

मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस से। सपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं। आपसे चंद लम्हों के बाद आप खबरें सुनेंगे।

शानदार कॉमेडी अदाकार के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। प्यार किए जा, पड़ोसन, भूत बंगला, गुमनाम, कुंवारा बाप जैसी फिल्मों में उनकी कॉमिक टाइमिंग आज भी मील का पत्थर मानी जाती है। आइए चंदा में उन्हीं की फिल्मों के आपकी नजर करते हैं मेरी पसंद प्रोग्राम में।

ये था आंखें फिल्म का नगमा आशा भोसले मन्ना डे और साथियों की आवाजों में, और लीजिए अब सुनिए आशा भोसले मोहम्मद रफी का गाया हुआ हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये नगमा।

दिल मेरा, होए होए एक दिल मेरा लूट लिया।

सबको अपनी कॉमेडी अदाकारी से हंसाने वाला ये इंसान, ये अदाकार 23 जुलाई सन 2004 को इस दुनिया को अलविदा कह गया। बेशक वो आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी अदाकारी हमेशा जिंदा जावेद रहेगी उनके चाहने वालों के दिलों में।

0: इतनी बड़ी तादाद अगर हलाक होती है तो जाहिर से बात है कि आप सोचिए कि ये हलाकतें सिर्फ एक शख्स की नहीं है बल्कि पूरे पूरे घर तबाह हुए हैं और फिर उसके नुकसान। फिर आप देखिए कि दूसरी जंग जो शुरू होती है उसको भी आप देखें कि उसका आगाज होता है कि 1 सितंबर 1939 को और फिर 2 सितंबर 1945 तक ये जंग चलती है और इसके भी बड़े खतरनाक नतायज इस जंग के रहे हैं। पूरी दुनिया एक तरीके से मफलूज हो गई है हो गई थी, तो इसलिए लोगों ने सोचा कि ये ठीक नहीं। फिर तीसरी जंग के बारे में जो पेशीन गोईयां हैं, क्योंकि अब न्यूक्लियर प्लांट हैं, आप देखिए जगह जगह न्यूक्लियर सिस्टम जो है वो नस्ब किए गए हैं, ऐसे में अगर तीसरी जंग होती है तो जाहिर है कि दुनिया तबाह हो जाएगी। हमें इस बात पे फख्र है कि अदम तशद्दुद की बात हिंदुस्तान से जा रही है और गांधी जी याद किए जा रहे हैं इसीलिए। और मैं गांधी जी के नजरिए को, अपनी सरजमीन को, कि जिसने हमेशा जो है मोहब्बत की बात की, प्यार की बात की, अपनाइयत की बात की, मेरे ख्याल से विश्व गुरु अगर हमारा हिंदुस्तान बनेगा तो इसी नजरिए से, गांधी के नजरिए से ही विश्व गुरु बनेगा। और जंग को दुनिया में रोकने के लिए अगर कोई खड़ा होगा मजबूती से, अभी यूक्रेन में आप देखिए हिंदुस्तान ने जो है कहा कि नहीं, इसको आप जो है बातचीत से हल कीजिए, हम किसी के साथ नहीं होंगे, हम सिर्फ बातचीत के साथ होंगे, ये एक बड़ा कदम है और यही जो है मुस्बत पहलू दुनिया के सामने जाएगा।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज अलम रशीद साहब कि डॉक्टर साहब इन्होंने तो पूरा पस मंजर भी कर दिया कि पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग के दौरान क्या क्या नुकसानात में कितने लोग मारे गए और कितने घर तबाह बर्बाद, कितने मुल्क तबाह बर्बाद हो गए। शायद बाज मुल्क तो उभरने में उनको 25-30 साल लग गए। इन तमाम मंजर को सामने रखते हुए आप अगर गांधी जी को आंकना चाहें तो क्या कहेंगे?
2: देखिए, जो शांति का ख्याल था, उसका जो तसव्वुर था, वो पहले दुनिया के स्पिरिचुअल परंपरा में, रिलीजियस परंपरा में मौजूद था
1: जी।
2: गांधी जी ने उसको पॉलिटिकल सवाल को हल करने के लिए टूल्स के तौर पर अपनाया और स्थापित भी किया, पूरी दुनिया को एहसास कराया कि ये सिर्फ आध्यात्मिक और धार्मिक चीज नहीं है शांति, इसके जरिए आप सिविल राइट्स का आंदोलन लड़ सकते हैं और अपना सिविल राइट्स पा सकते हैं, आप ह्यूमन राइट्स की तरफ जा सकते हैं, आप नागरिक अधिकारों की शिनाख्त कर सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो गांधी जी का था, वो बार बार इस बात को कहते थे कि अगर आंख के बदले आंख लेने की शुरुआत हो और इसी पर दुनिया कायम रहे तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी, फिर उसको बचाया नहीं जा सकेगा, तो किसी भी एक आदमी को बर्दाश्त करके भी चलना होगा इस पर कि एक आंख भले ही फूट गई पर अब सामने वाले को इसका एहसास कराया जाए कि न उसकी फूटे न हमारी फूटे। तीसरी चीज, चूंकि ये कल्पना और या विचार के तौर पर ये बात लोग सुनने में अच्छा लगता था, पर लगता था कि दुनिया के स्तर पर इसको कोई मानेगा नहीं। गांधी जी ने पहले साउथ अफ्रीका में रेसियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ही इसको स्थापित किया। इस साल जो यूनाइटेड नेशंस ने विश्व शांति दिवस के अवसर पर विषय रखा है, इन रेसिज्म बिल्ड पीस, आप सोचिए पूरा सूत्र जुड़ता है वहां से, गांधी से। पहली बार एक आदमी को जो पूरा पढ़ा लिखा है उसको एहसास होता है कि केवल हमारे रंग की वजह से, हमारे देश की वजह से हमारे साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो गांधी की सबसे बड़ी खूबी इस मामले में है वो ये कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी निर्भय बना देना, उसको साहसी बना देना, या जो दूसरा तरीका है, जो जंग का तरीका है, युद्ध वाला तरीका है, शांति से मुख्तलिफ तरीका है, उसमें हमेशा ताकतवर की चलेगी
1: जी।
2: पर जो शांति वाला तरीका है इसमें कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी उसमें आगे बढ़ सकता है, एक
1: प्रोसेस का हिस्सा
2: बन सकता है और वो उसके जरिए अपने हक और हकूक को पा सकता है। एक चीज हमें समझना चाहिए, जो दुनिया की सारी दार्शनिक या ज्ञान की परंपराएं हैं उसमें जो अभी सर चढ़कर बोल रहा है विचार, वो ये कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होगा या शक्तिशाली ही आगे बढ़ेगा, ताकतवर आगे बढ़ेगा। गांधी कहते थे तो जंगल का कानून है, तो फिर पशुओं में और हम मनुष्यों में क्या फर्क होगा? अगर हमने सभ्यता की इतनी लंबी यात्रा की है और जो पशु से लेकर मनुष्य तक की हमारी यात्रा है, या हम मनुष्यों का मस्तिष्क कुदरत ने सबसे ऊपर बना के रखा है, तो हमें सोचना होगा कि हम कैसे

0: उनसे भिन्न रहें। जंगल में हो सकता है सबसे ताकतवर का राज चले, उसका रहे जो ताकतवर है, पर यहाँ
1: दुनिया में ना रहे,
0: जो इंसानी दुनिया है उसमें ना रहे। ये गांधी बार बार सिखाते समझाते और तमाम जोखिम लेकर भी इसको आगे बढ़ाते रहे। एक खास बात मैं अभी, चूंकि इन साहब ने जिक्र किया दूसरे विश्व युद्ध का, गांधी का हिटलर से कोई संपर्क नहीं था, पर उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर को पत्र लिखा, 3 पत्र, और कहा कि चूंकि तुम भी मनुष्य हो और मैं भी मनुष्य हूं और इसी धरती के हम दोनों वारिस हैं, इंसान है, इसलिए इस रिश्ते में तुम मेरे भाई हो और मैं तुमको ये सिफारिश करता हूं, तुमको पत्र लिखता हूं। बार बार उन्होंने जो असंभव दिखने वाली चीज है उसमें भी एक सूक्ष्म संभावना, पॉसिबिलिटी की तलाश करने में वे हमेशा जुटे रहे। और इस लिहाज से नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए या संसाधनों पर कब्जे करने वाले लोगों को एहसास कराने में कि आपका लालच सब कुछ का जिम्मेवार है और इसकी वजह से पूरी दुनिया को आप नरक बना रहे हैं, आप इतने 5000 या 10000 साल की यात्रा को एक मिनट में, एक सेकंड में मटिया मेट करने को उतारू हैं, तो ये वो हमेशा बताते रहे, समझाते रहे।
1: डॉक्टर साहब, कहीं पर गांधी जी ने एक बार लिखा था कि दुनिया में अगर आप पीस कायम करना चाहते हैं तो इसके लिए विपिन की जरूरत नहीं है
0: जी,
1: तो फिर वो विपिन क्या है गांधी जी के पास?
0: हाँ, गांधी हमेशा वो कहते थे कि ये जो हमारी अभी मिलिट्री है अलग अलग तरीके की, चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, कहते थे इसकी बजाय पूरी दुनिया में शांति सेना बनाई जानी चाहिए और युद्ध को किसी निदान के तौर पर न देखकर एक मसला के तौर पर देखा जाना चाहिए कि वो अपने आप में वो समस्या है। युद्ध कभी किसी चीज का हल नहीं कर सकता और वो पूछते थे कि आप इसके असली कारण तक पहुंचे कि किसी भी जगह युद्ध होने का कारण क्या है? तो युद्ध होने का कारण के तौर पर दिखता है कि आपको अपनी साम्राज्यवादी भावना का, अपनी बाउंड्री का प्रसार करना है, दूसरे की चीजों को हड़पना है, आपको अपना जितना है उसमें संतोष नहीं है, आप दूसरे के हक और हकूक पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए युद्ध होता है। तो वो उस कारण को समझने की बात हमेशा करते थे कि कारण को ही ठीक अगर कर दिया जाए, लोगों की चेतना को, उनके मस्तिष्क को ही ठीक से समझा दिया जाए, उसको बदल दिया जाए, तब युद्ध नहीं होगा। और जो फिर भी समस्या अगर पैदा होती है तो शांति सैनिक इसकी बात करें, आपस में हर जगह के शांति सैनिक रहें और वो इसके लिए रहें।
1: आपसे और गुफ्तगू अभी जारी रहेगी हमारी। एक बार फिर मैं मुमताज रिजवी साहब से मुल्तमिस होना चाहूंगा। मुमताज साहब, ये गांधी जी ने सिर्फ पॉलिटिकल पीस की बात तो नहीं की थी
0: जी,
1: उन्होंने तो कहा था कि जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के जितने शेड्स आपके पास है उसमें पीस आना चाहिए और पीस अगर कायम करना चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में और तवील मुद्दत तक, यानी कि लॉन्ग टर्म तक अगर पीस करना चाहते पैदा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर के बच्चों के अंदर पीस पैदा कीजिए।
2: नहीं, बिल्कुल ये सही है।
1: क्या ये बच्चों के साथ पीस पैदा करने की बात क्या?
2: देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ तो तारीख है कि बच्चा जब पेट में होता है, हमल से औरत होती है, तो वहीं से वो सीखने लगता है। आप खुद देखते होंगे कि किस तरीके से अभिमन्यु ने पूरी जंग सीख ली थी पेट के अंदर और आखिर में वो जाग गए, क्या हुआ, बेदार हो गए, जिसकी वजह से वो चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाए तो न पूरा सीख लेते। तो इसका मतलब ये है कि जंग की बात हो या अम्न की बात हो, हुनर की बात हो या गुमराही की बात हो, ये बचपन से ही जब घुट्टी में इसको कहते हैं
1: जी जी,
2: तरबियत और घुट्टी में अगर वो चीज पहुंच जाए कि नहीं, हमें अम्न की बात करनी। हम क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन ऐसी है, क्योंकि जब हम हिंदुस्तान की सरजमीन की बात करते हैं, जब हम मादरे वतन की बात करते हैं, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि ये जो जमीन है, ये जो खित्ता है, ये इतना जरखेज रहा है हमेशा से कि यहां कभी नफरत की बात ही नहीं हुई। हम हमेशा अपनी तकरीरों में भी कहते हैं कि ये ऐसी सरजमीन है कि यहां अगर नफरत भी बोई जाएगी ना तो जब दरख्त निकलेगा तो उससे मोहब्बत फूटेगी। और ये सही है। देखिए, अच्छा, उसकी वजह क्या है? देखिए, बचपन में आप खुद जानते हैं कि बचपन की यादें आपको अभी भी जो है वो हॉर्न करती हैं। आप माजी की तरफ जब जाते हैं, यादों की पगडंडी पे चलते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको बहुत मुतासिर करती हैं कि ऐसा ऐसा, और वो कई

0: कार आपको गलत रास्ते से रोक भी लेती, वो बातें बचपन की कि नहीं नहीं ये बातें हमें माँ बाप ने बताई थी या कोई बुजुर्ग ने ये बात कही थी, नहीं नहीं इससे ये ठीक नहीं। तो क्या है कि इसीलिए गांधी जी हो या कोई हो, वो बचपन से, आज हमारे जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो भी आप देखिए कि नए बच्चों को, कि आने वाली नस्लें 47 में जब देखेंगी तो क्या है, वो चीजें जो है कैसे, तो हर चीज जो बचपन में उस चीज को जब दिया जाता है ज्ञान या इल्म, तो वो बहुत देर पा होता है। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी चीज है, देखिए गांधी जी के हवाले से हबीब जालिब का एक शेर है कि जुल्म के होते हुए, जुल्म के होते अमन कहां मुमकिन यारो, इसे मिटाकर जग में अमन बहाल करो। जुल्म है, ज्यादती है, जब ये चीज रहती है और जब अदम अदालत हो यानी इंसाफ जहां पे ना हो, तो अमन कायम नहीं किया जा सकता। दुनिया में देखिए क्यों जंग हुई, आलमी जंग जो हम बात कर रहे हैं, हुई क्यों, कहीं ना कहीं ज्यादती हुई, कहीं ना कहीं छीना जाती,
1: वो ज्यादती ना हो तो फिर हर जगह अमन कायम रहे।
0: जाहिर है इंसाफ, देखिए जब तक अदल कायम नहीं होगा, जहां अदल कायम नहीं होगा वहां झगड़ा होगा, और इसीलिए हमारे जो मजाहिब भी हैं अगर आप देखें तो वो क्यों अदल की बात करते हैं, जब आज लोग तभी अमन होगा।
1: देखिए मजहब तो इंसान अमन की बात करता है,
0: नहीं इसीलिए अमन की बात, आदल की बात करता है। देखिए पहले आदल की बात होती है, इंसाफ की बात होती है, जब आप इंसाफ की बात करेंगे, आदल की बात करेंगे, तो अमन उसमें पोशीदा है, अमन उसमें पोशीदा है।
1: आपकी बात एकदम दुरुस्त है और मुझे याद आता है कि सेवाग्राम आश्रम में जो प्रार्थना हुआ करते थे, उस प्रार्थना में ना सिर्फ ये कि किसी एक मजहब की किताब से कोई एक्सट्रैक्ट निकाल करके पढ़ाया जाता था, बल्कि वेद, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल और दूसरी मजहबी किताबों के भी एक्सट्रैक्ट निकाल कर
0: आज
1: पढ़े जाते हैं।
0: आज भारतीय विद्या भवन में मेरा बेटा पढ़ता है, वहां पे आप देखिए आज भी वहां भी अरबी में दुआएं हैं और संस्कृत में दुआएं अलग अलग, ऐसा नहीं है, आज भी
1: ये सिलसिला। तो हमारी ये जो अम की परंपरा है, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इन जड़ों को हिलाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन जड़ों को सबसे आगे ले जाने वाला कोई हिंदुस्तानी है तो वो है मोहनदास करमचंद गांधी। एक बार हरिजन में किसी अंग्रेज ने एक इंटरव्यू किया था डॉक्टर साहब, तो उस इंटरव्यू में उसने कुछ सवाल किए थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि अगर आप महात्मा गांधी को अमरीका की सारी दौलत दे दें तो वो उस वक्त तक कबूल नहीं करेंगे जब तक के उन्हें इस बात का इत्मीनान हो जाए कि ये तमाम पैसे इंसानियत के
2: तरीके से,
1: इंसानियत की भलाई के लिए खर्च ना हो। यानी कि वो उनकी नजर है तो हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान के अंदर वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चला रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अंग्रेजों से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी नजर विश्व शांति पर है कि पूरी दुनिया में अमन कायम होना चाहिए। जरा आप इस पर
2: जी, असल में मैं फिर आपको जो जहां आप जिक्र कर रहे थे गांधी के सेवाग्राम आश्रम का
1: जी,
2: जहां उन्होंने आरंभ कराया प्रार्थना सभा में कि सारे धर्मों की पवित्र ग्रंथों से कुछ कुछ पंक्तियों को साथ पढ़ा जाए और सब लोग एक साथ पढ़ें, ये शुरुआत थी। और हमें ये मान लेना चाहिए कि कुछ तनाव रहे होंगे, कुछ परेशानियां रही होंगी, और अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने श्रेष्ठता बोध में खुद को बाकियों से अच्छा मानते होंगे, इसलिए गांधी जी को जरूरत पड़ी कि हम सबको एक साथ बैठाकर पढ़ाएं और सर्वधर्म संभाव, सबके धर्म के प्रति आप अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे के धर्म को भी आदर दें, जिससे एक सहिष्णुता का भाव पैदा हो और तनाव खत्म हो। तो ये तो हम लोगों को मानना होगा कि पूरी दुनिया में तनाव के कई कारण रहे हैं, जिसमें से एक धार्मिक तनाव भी रहा है, जिसको सुलझाने के लिए गांधी जी ने लगातार कोशिश की। अब एक दूसरी चीज, वो इन प्रार्थना के जरिए आप याद कीजिएगा कि वो हमेशा पहले वो मानकर चलते थे कि ईश्वर ही सच्चाई है, पर बाद में लंबे डिस्कशन के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, सच्चाई ही ईश्वर है। पर सच्चाई को परिभाषित कैसे किया जाए, ट्रूथ को कैसे परिभाषित किया जाए, तो उन्होंने इसको कहा कि ट्रूथ का मतलब हुआ जस्ट सोसाइटी, न्यायपूर्ण समाज, कि ऐसा समाज बन जाए, या उसको अगर बढ़ाकर कहें तो एक ऐसा राष्ट्र बन जाए, ऐसी दुनिया बन जाए जिसमें किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। और ये सत्य है, यानी नाइंसाफी का नहीं होना ही ईश्वर है। अगर किसी मुल्क में, किसी दुनिया में, किसी समाज में या किसी परिवार में, किसी संगठन में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और सबके साथ न्याय हो रहा है, तो जस्टिस हो रहा है, तो इसका मतलब वहां ईश्वर की मौजूदगी है। क्योंकि गांधी हर चीज को एक स्पिरिचुअल या धार्मिक प्रतीक या उसके जरिए ही देखने समझने की कोशिश करते थे, बहुत पवित्र ख्याल के जरिए इन सारे विचारों पर वो सोचते थे। इसलिए वो धर्म को अलग नहीं करते थे, अध्यात्म को अलग नहीं करते थे, राजनीति को अलग नहीं करते थे, जीवन की सारी चीजों के बीच एक ऑर्गेनिक रिश्ता देखते थे वो। पर वो मानते थे कि ये हिंसा जब तक रहेगी अन्याय रहेगा। अब हिंसा जब तक रहेगी अन्याय रहेगा, तो इस हिंसा को के खात्मे के तौर पर जो गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हिंसा के खात्मे के लिए हिंसा ही की जाए या हिंसा के खात्मे के लिए अहिंसा के जरिए आया जाए। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, हिंसा को हिंसा से ही खात्मा करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर गांधी कहते थे फिर आप एक अहिंसक दुनिया नहीं बना पाएंगे, आप जो सिविलाइजेशन बना पाएंगे उसमें फिर हिंसा रहेगी ही, उसमें फिर वायलेंस रहेगा ही, उसमें फिर अन्याय रहेगा ही, गैर बराबरी रहेगी ही। तो गांधी इन सारी चीजों को देखते के साथ एक स्ट्रक्चरल वायलेंस के प्रति भी सचेत थे कि हम कोई ऐसा ढांचा भी बना लें, दुनिया ऑर्गेनाइज कोई ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा ऐसा हो जाए, नेशन स्टेट का ढांचा ऐसा हो जाए, या दुनिया के स्तर पर देखें तो ताकतवर मुल्क बाकी देशों के साथ अपनी बातों को ढांचे के बल पर, अपनी ताकत के बल पर मनवा लें। तो गांधी उससे इनकार करते थे, वो कहते थे मैं अकेला व्यक्ति भी रहूंगा तब भी इसके खिलाफ लड़ता रहूंगा, इसके खिलाफ बोलता रहूंगा। और इसीलिए वो उनको रविन्द्रनाथ टैगोर का वो गीत भी बहुत अच्छा लगता था कि अगर तुम्हारी कोई आवाज न सुने जो दी तेरा राग सुने ना कोई, एकला चलो रे, एकला चलो रे, अकेले चलो अगर तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनता है तो। तो गांधी जी हमेशा इस बात की ताईद करते रहे, इस पर जोर देते रहे, अर्ज करते रहे सबसे कि पहले संसाधनों का बंटवारा बराबर करो और किसी की जरूरतें इतनी अधिक न हो जाए या किसी के पास इतनी अधिक चीजें न हो कि दूसरे के पास कुछ भी न हो, और उसके जरिए हिंसा होगी और उसके जरिए शांति नहीं कायम की जा सकती, और वो बेहतर जीवन के लिए शांति की बात करते थे। एक बात पर और वो जोर देते थे अपने शिष्यों के बीच कि हम कुदरती तौर पर पीस के समर्थक हैं, हम उत्तेजना में, गुस्सा में, नफरत में, एक मोमेंट में तो रह सकते हैं पर लगातार नहीं रह सकते, लंबे समय तक नहीं रह सकते। अगर कोई कौम या कोई व्यक्ति भी लंबे समय तक नफरत और गुस्सा की आग में जलते हुए रहेगा तो उसके भीतर एक हार्मोनल डिसबैलेंस होगा और वो धीरे धीरे भले ही वो मनुष्य के तौर पर उसका शरीर रहे लेकिन वो जहनी तौर पर नहीं रहेगा, वो पशु हो जाएगा और राक्षस हो जाएगा।
1: सर बहुत तफसील से आपने सारी बातें बताएं, बस एक नुक्ते पर और बात करनी है और चाहूंगा कि हमारे रिजवी साहब, मुमताज़ रिजवी साहब इसका जवाब दें कि देखा आपने कि पॉलिटिकल सतह पर उनकी कोशिश थी कि हिंदुस्तान में कोई तशद्दुद ना हो और आजादी की जंग हम जीत जाएं, बड़ी हद तक कामयाबी उसमें मिली उनको, फिर उन्होंने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया। तो पॉलिटिकल सतह पर फिर डॉक्टर साहब ने बात बताई कि किस तरह सोसाइटी की सतह पर, समाज की सतह पर, तमाम मजहब को लेकर के चलने की कोशिश की। मैं यहां तक समझता हूं कि उन्होंने हर सतह के इख्तलाफात को दूर करने की कोशिश की, मजहब के इख्तलाफात को दूर करने के लिए आश्रम में एक साथ तमाम मजाहब के एक इज्तिमा किया। इसी तरह जब हिन्दुस्तान में हिन्दी उर्दू का झगड़ा हुआ तो ये हिन्दुस्तानी का आलम लेकर के खड़े हो गए और कहे कि हम हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तानी जबान इस्तेमाल करें जिसमें ना उर्दू बहुत ज्यादा होगी ना हिंदी बहुत ज्यादा होगी बल्कि दोनों के आमजस होगी। क्या राय आपकी?
0: नहीं देखिए, इलाहाबाद में हिंदुस्तानी एकेडमी कायम है
1: जी,
0: वो इसी की बुनियाद है
1: जी,
0: और हमने वो रिसाला भी देखा है कि जिसमें सिर्फ स्क्रिप्ट जो है अलग, यानी एक लिखावट
2: खत में एक
0: दोनों भाषाएं एक लिखावट, तो आप देखिए कि वहां रिसाला अब भी शायद निकलता
1: होगा।
0: अच्छा, उसमें जबान का फिर हम लोग जो बोलते हैं, आप देखिए कि हिंदी उर्दू अभी जो बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा उसमें फर्क नहीं है। तो ये इसीलिए था, देखिए ये इसलिए था क्योंकि आज आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो मुल्क तकसीम हुआ तो उसका इल्जाम एक जबान पे दे देते हैं, लेकिन अगर गांधी जी को आप देखेंगे तो वो इल्जाम दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि वहां तो जबान का वही खत्म हो गया था। तो ये जो गांधी जी का देखिए जिस तरीके से ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, इस तरीके बहुत सारी चीजें, और फिर वो जहां हिंदुस्तान में भी आप देखिए कि आखिरी वक्त में भी जब ज्यादा फसादात हुए तो धरना दे करके वो बैठ गए, हम उठे।

0: ये नहीं, तो इस तरीके की शख्सियत जो है, और इसीलिए आप देखिए पूरी दुनिया में गांधी जी का मुजस्समा है और उनके लोगों के दिलों में मुजस्समा।
1: और वो शख्स कितना अमली था, प्रैक्टिकल था कि अगर कलकत्ते में फसाद हुआ तो वहां पहुंच रहा है।
0: मैं वही कह रहा हूँ, हर
2: वहां पहुंच रहा है।
0: लोग आप बचते हैं, एक ट्वीट करते हैं, लेकिन वो उस वक्त जब संसाधन नहीं थे, अब तो लोग जा सकते हैं।
1: हाँ,
0: फसाद होता रहता है, लोग सियासत करते हैं। मैं खैर उस पर नहीं जाऊंगा
1: जी,
0: वो अहले सियासत हैं, वो उनका काम जाने, मैं वो नहीं कह रहा। लेकिन ये कि मैं फिर वही बात कहूंगा कि गांधी जी इतना बड़ा सिंबल हमारे साथ है, इतनी बड़ी ताकत, जो नजरिया है, देखिए नजरिया ही ताकत होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। कि आपका नजरिया क्या है, वही ताकत आपकी बनती है। और आज फिर हम कह रहे हैं कि अगर विश्व गुरु हिंदुस्तान बन सकता है, भारत बन सकता है, तो वो गांधी जी के नजरिए से बन सकता है। इसलिए गांधी जी को याद करना बहुत जरूरी है। गांधी जी एसेट है हमारे, और उनके नजरिए पे चल के हम हिन्दुस्तान को तरक्की दे सकते हैं, हिन्दुस्तान को मजबूत कर सकते हैं, हिन्दुस्तान में भी हमने कायम कर सकते हैं और पूरी दुनिया में हमने कायम कर सकते हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सामीन, ये गुफ्तगू आप सुन रहे थे गांधी जी और आलमी अमन के सिलसिले में, और हमारे दोनों पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी तरह इसको बयान किया कि किस तरह सियासी सतह पर गांधी जी ने कोशिश की, समाजी सतह पर कोशिश की, मजहबी सतह पर, यहां तक कि लिसानी सतह पर भी हमाहंगी, दोस्ती, मेल मिलाप, शांति पैदा करने की ये कोशिश जो कर रहा है, उसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी। ये एक ऐसी शख्सियत हिंदुस्तान के है जिसे हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, या दुनिया की तारीख इन्हें फरामोश नहीं कर सकती। हम अपने दोनों पैनलिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर राजीव रंजन गिरी साहब, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, राजधानी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, एडिटर रोजनामा कौमी भारत, का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप दोनों ने बड़ी तफसील से और बहुत रिलेवेंट अंदाज में ये गुफ्तगू की। और हफीज के शेर पर अपनी बात खत्म करता हूं कि हफीज अपनी बोली मोहब्बत की बोली, हफीज अपनी बोली मोहब्बत की बोली, ना उर्दू ना हिंदी ना हिंदुस्तानी।
0: वाह,
1: बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों
0: का। शुक्रिया।

रही फिल्म का ये दुगाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। और ये सुनिए मोहम्मद रफी का गाया हुआ छोटी बहन फिल्म का नगमा शंकर जयकिशन की मौसीकी में।

0: ये है पूर्णिमा फिल्म का नगमा, महमूद का गाया हुआ, मौसीकी कल्याण जी आनंद जी की।
1: लोरी लोरी लोरी ले मई लोरी, अरे लोरी सुना सुना के सुलाती है नारियां, ये मर्द भी कर सकते हैं।
2: मर्द जिंदाबाद।

तू थाकी गयो फरी पर नहीं समझतो बेशरम। अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दूंगा।

कलीन फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे मन्नाडे की आवाज में, मौसीकी थी रवि की, और लीजिए सुनिए पड़ोसन फिल्म का नगमा किशोर कुमार मन्नाडे और महमूद का गाया हुआ।

आग लगाई चोट कर दूंगा। सज्जम सकजम सकनम सकदम सत्संगी सत्कृष्ण सत्तजम सकजम सकनम सकदम सत्संगी सत्कृष्ण सत्तजरि सदन तज्जनि सदन तज्जनि सदन तज्जनु सत्त सरित दनत चनुत दिनित तज्जनित सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम सम

गुमनाम फिल्म का नाम सुनिए, मोहम्मद रफी का गाया हुआ शंकर जयकिशन की है मौसीकी।

0: जिसमें क्वारा बाप फिल्म का ये नगमा मौसीफी राजेश रोशन की
1: उड़िया
0: किशोर कुमार महमूद और साथियों को गाया हुआ।

पहले तालियां तो बजा। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

हो? तुम लोग उदास रहना चाहते हो? तुम लोग हंसना चाहते हो?

भूत बंगला फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे मन्ना डे और साथियों की आवाजों में मौसीकी थी आरडी बर्मन की। और ये प्रोग्राम के आखिर में सुनिए जौहर महमूद इन गोवा फिल्म का ये नगमा।

और जो नौजवानों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि तलबा के मफादात के तहफ्फुज़ के सिलसिले में सिलसिलेवार इकदामात के तहत फैसला किया गया है। वज़ीर दाखला अमित शाह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उस फैसले की तारीफ की जिसमें उन्होंने पेपर लीक मामलों में फास्टैग अदालतों के जरिए कसूरवारों के खिलाफ सुनवाई में तेजी लाने और सख्त कार्रवाई को कहा है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा कि नौजवानों का दरख्शां मुस्तकबिल और उनकी फलाह दोनों ही में मोदी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नौजवानों के तई वज़ीर आज़म के अहद को उजागर करते हुए जनाब शाह ने कहा कि यह फैसला उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक की वजह से नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं और यह फैसला एक संगमील साबित होगा। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिसमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज के दौरान एक खातून की मौत की बात कही गई है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर पुलिस ने वाजे किया कि यह झूठी और गुमराहकुन खबर है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि वो खातून जिंदा है और उनका इलाज राम मनोहर लोहिया आरएमएल अस्पताल में चल रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में आज रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंचेंगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर सदर जमहूरिया मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वो रोमानिया के अपने मनसब निकोसोर डान के साथ वफ सतह की बातचीत करेंगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में रजाकाराना शटडाउन और चक्का जाम हड़ताल जारी है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जेएसी ने पीओजेके के लोगों से अपील की है कि वो अपने मुतालबात की मंजूरी और इस तहरीक के दौरान पाकिस्तानी हुकाम के हाथों मारे गए लोगों के लिए दुआ करने की खातिर आज के एहतजाज में पूरी ताकत के साथ शिरकत करें। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में जेएसीसी ने 23 जुलाई को इंतहाई अहमियत का हामिल दिन करार दिया है। जेएसीसी के कायदीन ने पाकिस्तानी हुकाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए हुक्मरानों को उन बेगुनाह लोगों का कत्ल करार दिया है जिन्हें अपने हकूक का मुतालबा करने के रद्द अमल में कत्ल कर दिया गया है। आज नशरियात का कौमी दिन मनाया जा रहा है। 1927 को आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से रेडियो नशरियात का आगाज हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम तब्दील करके ऑल इंडिया रेडियो AIR रख दिया गया। यह दिन भारत की तरक्की तालीम के फरोग और सकाफती वरसे के तहफ्फुज में नशरियात के अहम किरदार को उजागर करता है। यह दिन भारत की तरक्की तालीमी आगाही और सकाफती वरसे के तहफ्फुज में नशरियात के अहम रोल को उजागर करता है। सिक्किम की सरकार ने नामची जिले में सुरंग के वाकये की पूछताछ के लिए IGP की जेर निगरानी एक आला सतह की 4 मेंबरों पर मुश्तमिल कमेटी कायम की है। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर पेश करेगी। वजीर आला प्रेम सिंह तमांगोले ने एक आला सतह की कमेटी कायम करने का ऐलान किया था। अब तक सुरंग से 22 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और बचाव कार्रवाइयां अब भी जारी हैं। फिलिपाइन के मनीला में आसियान इलाकाई फोरम की 33वीं वजारती मीटिंग में भारत ने दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने पर जोर दिया है और एक आजाद खुले सबकी शमूलियत वाले और जवाबित पनमबनी भारत बहरुल काहिल के अपने अज्म का इरादा किया है। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने कहा कि यह फोरम खासतौर से बढ़ती आलमी पेचीदगियों के दरमियान भारत बहरुल काहिल में सियासी और सिक्योरिटी मामलात पर तबादले ख्याल की खातिर एक अहम प्लेटफॉर्म है। बहरी सलामती के सिलसिले में वजीर मौसूफ ने कहा कि बहर हिंद खित्ते में इत्तलात के तबादले का मरकज भारत बहरुल काहिल में बहरी बेहतारी पहल और भारतीय बहरिया के असासे तैनात किए जाने जैसे इकदाम पायरेसी सामान और मुनशियात की गैरकानूनी तजारत से निपटने में मदद के साथ साथ महफूज बहरी तजारत को भी यकीनी बना रहे हैं। अमरीकी फौज ने मुसलसल 12वीं रात ईरान पर फजाई हमले किए। दोनों जानिब से शहरी बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि इन हमलों का मकसद ईरान की शहरी बहरी जहाजों और तजारती जहाजों को इलाकाई समंदरी इलाकों में नुकसान पहुंचाने की सलाहियत को कमजोर करना है। ये कार्रवाइयां ऐसे वक्त में हो रही हैं जब अमरीका अपनाए हुरमुज पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने और बैन अल-अक़वामी बहरी तजारत को बहाल करने की कोशिश कर रहा है।

0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ईरान अबनाए हुरमुज में किसी जहाज पर हमला करता है तो अमेरिका उसके जवाब में एक पुल या बिजली घर को तबाह कर देगा। दूसरी जानेब ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराकसी ने कहा है कि ईरान आंख के बदले आंख की दिफाई हिकमत अमली इख्तियार करेगा। उधर खारजा के वजीर ममलिकत कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत ने इस बात को फिर कहा है कि मगरबी एशिया के तनाजुर के पुरमन और देर पहल के लिए बातचीत और सिफारती रास्ता अपनाना चाहिए। आज राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में जनाब सिंह ने कहा कि भारत ने आबनाए हुरमुज और उसके आसपास तवानाई और तजारती जहाजों की बिला रोक टोक आमद रफ्त को यकीनी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। 23वें दौलत मुश्तरका खेलों का आज शाम स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आगाज हो रहा है। 10 दिनों तक जारी रहने वाले इन खेलों में 74 मुल्कों की टीमें हिस्सा लेंगी। भारत के 125 एथलीट इन खेलों में हिस्सा लेंगे। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में दरिया सिंध आबी मुआहदे पर पाकिस्तान की राजधानी को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में रजाकाराना शटडाउन और चक्का जाम हड़ताल जारी है। भारत ने मनीला में आसियान वजारती मीटिंग में दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने पर जोर दिया है। अमरीका ने मुसलसल 12वीं रात ईरान पर फजाई हमले किए। दोनों ममालिक शहरी बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं। और ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेल आज शाम शुरू हो रहे हैं। 125 भारतीय एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नशरियात के साथ तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

ऑल इंडिया रेडियो दासराय की प्रोग्राम है। मैं हरजीत कौर हाजिर हाँ तुहाडे किते आज दा प्रोग्राम घिन के कुछ बाता कुछ गीत इस विच असा तुहाडे नाल गल्ला भी करे सा ते पंजाबी गीत भी सुनवे सा। सब तो पहला तुहाको एक गीत सुनवे सा। गीत हंस राज हंस की आवाज विच है। सिली सिली आंदी ये हवा किते कोई रोंदा होवेगा।

हंस अज हंस दी आवाज विच सुनदे पया वे ते हुण पहला गल करेंदे हां साफ पानी ते जिहड़ा पानी असा पीणदे हां ओह साफ होना चाहिदा है। ए तां तुहानू पता ही है, नहीं तां बीमारियां लगवे सन। पर इस पानी को साफ किंज रखे सा ए असा तुहां को दसेंदे हां। बहुत सौखा है, सब तो पुराना तरीका है कि पानी को उबाल के पीवना। इस नाल बैक्टीरिया मर वेंदे हैं। आरो कैंडल वाटर फिल्टर वाटर प्योरीफायर घर विच जरूर लावो ते इन्हा को साफ भी करेंदे रहो। इन्हा मशीना नाल गंदगी तोड़ रसायन बैक्टीरिया खत्म थेंदे हैं ते पानी खालस ते मिठड़ा बनेंदा है। ग्रामा विच खूह दा पानी भी साफ होंदा है। जिथे पानी को साफ करने का मशीनी तरीका कहनी उथा क्लोरीन गिन के लियावो ते पानी को इन्दे नाल साफ करो। 20 लीटर पानी च एक गोली क्लोरीन भी पा देवो। पारे पानी तुसा अधे घंटे बाद पीवना है। इस नाल पानी दे नुकसान पहुंचावन आले जीवाणु मर वंज दे हिन ते भैनो बिरावो पानी साफ पीवना है ते बीमारियां तो दूर रहना है। ते हुण सुनेंदे हां एक हां को कड घिनन आला गीत आवाजा सुरिंदर कौर ते प्रकाश कर दिया हिन।

हरी प्रकाश कौर ते सुरिंदर कौर का काया कीत सुन आलियो आजकल साइबर फ्रॉड बहु देंदे पाए हैं। तुसा सुनया हो सी के इंदे खाते चो 40,000 रुपये निकल गए। उन्होंने ऑनलाइन काम करेंदे हुए 2,00,000 रुपये गुआ गिदे। इंज हर महीने हजारा धोखे आलिया लेवन देवन दिया शिकायता पईया मिले दिया हैं। तुहाडे कोल भी इंज दे फोन आवदे होणगे कि तुहा को इनाम देवदे पए हां। अपने खाता नंबर दे आखरी 4 नंबर दस देवो। पैसे तुहाडे खाते विच पोसन की पोसन बल्कि कड गिने जा सन। ऑनलाइन लेवन देवन दे धोखे बहुत ही गए हैं। लोगों को ऑनलाइन काम करना बहुत सौखा लगेंदा है पर इसको बहुत सावधानी नाल करण दी जरूरत है। तुसा रत्ता को ओटीपी दसेंदे नहीं कि तुहाडे खाते दी सारा जानकारी उन्हा तीकण पुज जेंदी है ते तुहाडा नुकसान थिया ही थिया। ए करके अपना इंटरनेट कनेक्शन पासवर्ड दे नाल हिफाजत करके रखो। बुरी गल साइबर कैफे जा फ्री वाईफाई तू इंटरनेट बैंकिंग जा ऑनलाइन लेवन देवन

सुनावन जी, बहु दिया गीते किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया, दिल करे वेख दारा वहां। गावन आले हिन दूसरा फतेह अली खान ते उन्हां दे साथी।

Rengi,

Oh, yeah.

वैरायटी प्रोग्राम इथे खत्म थींदा है। ए प्रोग्राम तो हा कुकिंग से लगा सको खत घर के दसना ते हुन हरजीत कौर को देवो इजाजत।

समय से समाज हमारे इस तरह के प्रोग्राम झोक माहिती एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी दाए अमृतसर के मेरे तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस हिंदी पंजाबी सेवा शाम दे 5:30 बज रहे ने देश पंजाब मसले सा आगाज करने हैं।

ਹੁਣ ਕਰ

என்ன

I'm not going to be able to do it.

Thank you.

0: आजू बाल साहब आजू बचाने आजू
1: रड़ी राम जी जय हिंद जी
0: जय जी जय जी बाल साहब बचाने की हाल चाल है।
1: हाल चाल बाबा वधिया चढ़दी कला तुसी सुनाओ।
0: खेती बाड़ी दा हाल ते हो गया हुण दाता ने जिदा मशहूरी प्रचार ही करदा पिया।
1: हां जी
0: ते जिहड़ा रंग है
1: हां जी
0: ओ असल समान जिहड़ा हथ नहीं लग रहा
1: तुसी दुखदी रख ते हथ रखी जांदे आ ते ए गल्ला ना तुसी करो।
0: हां
1: जी
0: देखो आ समा ऐसा है
1: हां जी
0: जिहनू कहंदे के भरके मीह पैण वाली जिदा आपां गल कह
1: सकदे। सही गल है बिलकुल।
0: पर हुण आपां देखदे कि जिदा बरसात हो रही है
1: हां जी
0: ए बरसात दा मतलब रुपये च चवानी वाला हिसाब भी है।
1: इदां दी भादो च नहीं हुंदी।
0: हां
1: ते तुसी आ हिसाब ला लो
0: हिसाब ला लो। सो इस करके खेतीबाड़ी दे विच कसाब बहुत है इस वक्त आप सारे जानते हैं।
1: हां जी
0: ते इहदा हल ते दाते कोल ही है।
1: बिलकुल जी
0: है नहीं।
1: हाँ जी
0: अपने कोल हल है नहीं। आपां इन्नी समझदारी बरतीए
1: हाँ जी
0: के रकबा थोड़ा घटा सकते हैं।
1: बिलकुल जी बिलकुल। जिवें आपां तुसीं अगे भी गल करदे हुंदे आ कि नवीं तकरीकां ने डीएसआर सीधी बिजाई आ।
0: हाँ
1: वो जिहड़े जिमीदारां ने इस वारी ओह लाई हुई आ ओह तां पुठियां छालां मार रहे बिलकुल
0: बिलकुल मार रहे। सही गल है। या जिन्हें बासमती का रकबा बासमती थले रकबा लेके आया।
1: हाँ जी
0: सो इस करके क्योंकि आपां पहलों भी यही जिदा तुसीं कहा जिक्र करदे हां कि आउण वाला समां कोई बहुता साडे लई सार्थक समा नहीं है सौखा समा नहीं है। उस समय दे चुनौती भरे समय दे लई अपने आप नूं अज तों तैयार करना चाहिए।
1: सही गल है।
0: फिर जदों समय ते आ के साडे सिर ते पै जांदी है फिर असी बाद दे विच बदलाव वाले पासे चलांगे ते फिर उह कारगर साबित नहीं होना।
1: हुण इस वारी कईआं ने सोचना सीधी बिजाई जी कर ली होंगी।
0: हाँ।
1: पर अगली बारी जो झोना लाने की वारी आनी है करना फिर सारे ने कदू
0: ही कुछ है।
1: बिल्कुल
0: करना उही कुछ है।
1: बिल्कुल
0: पिछली बारी हो गया इस बारी थोड़ी होगा। कितने ना कितने साडे जिदा कहने विचारधारा इदा दी बन गई है।
1: हाँ जी
0: भी असी हर गल नू ना
1: हाँ जी
0: बस अगरजी है ना अणगौणिया जा उनू मतलब ए है कि जिन्ना सानू दृष्टिकोण दे नाल गंभीरता होना चाहिए।
1: हाँ जी
0: उस नजरे नाल असी अज भी अपनिया जेड़ा

0: डॉक्टर एस एस गिल साबका निदेशक सार सिख्या खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना।
1: सर जो देहाती प्रोग्राम की गल चलती है मेरी याद अज तो कोई 60-65 साल पहला अपने बचपन के समय चली जाती है जो पिंडा दे विच सांझे रेडियो दिते होंगे सीगे वो लाउड स्पीकर से लगे होंगे सी उस तो 5 मिनट पहला साडे गुरुद्वारा साहब भाई साहब ने घड़ियाल बजा देना बच्चे तो लैके बुढ़े तक भजे ही जाते होंगे सी उथे साडे साथ दे विच फड़े की जिथे लाउड लगता होंगे सी बड़े ध्यान जानी वो प्रोग्राम सुनते सीगे जिदे विच कलियां खेती ज्ञान तो लैके पेंडू विकास के सारे मसलियां तक समाजिक मसलियां तक गल्लां होंदियां सी कई गल्लां ठंडू राम जी होने बड़े नुकते इस तरह दसते होंदे सी कि हादसे दे विच सियाण पड़ी होंदी सी किसानां नूं खेती विज्ञानियां नूं जोड़न दा काम दे विच देहाती प्रोग्राम ने एक अहम भूमिका निभाई। दूजा उन्होंने गलों के मैं भी समझा कि ज्ञान का जिहड़ा स्रोत आ किसानां लई बाकी तो हले आए नहीं सीगे भी एक यही रेडियो ही एक कोई सीगा जिथो उन्होंने हर रोज का ज्ञान मिलता सी देख सकते सी कि केड़ी फसल केड़ी किस्म की झाड़ है की बीमारियां सारिया उथो उन्होंने ज्ञान हो यानी एक सीधा राबता विज्ञानियों के किसानों के इस प्रोग्राम ने पैदा किया इसे करके इस प्रोग्राम के जेडे सारे नाम जेडे इन्होंने पात्र से इस प्रोग्राम के एक किसाना लई मैं समझता भी जो जिम्मे हूं एक फिल्मा के हीरो हीरो जाते जो पिंड जाते हैं तो उन्होंने देखने लई मोढ़े का मोढ़ा जोड़ के लोग आते सी दूजा मनोरंजन के भी नाल दी नाल ही एक यह भी समझदा कि मनोरंजन का ज्ञान का सोशल समस्यावां बारे पैदा करने का जिहड़ा सीगा प्रोग्राम एक बड़ा अहम जरिया सीगा उदों अहम की कहूं मैं तो कहूंगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पहला ही सी टीवी होने तो पहला।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो स्वयं बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को भंग करने के लिए जिम्मेदार लोगों को शीघ्रता से दंडित किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के कारण राज्यसभा को भी दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने आज बताया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए कुल 1000 तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि विदेश मंत्रालय स्वयं के खर्च पर यात्रियों को परिवहन, आवास, भोजन, चिकित्सा परीक्षण, मार्गदर्शन आदि जैसी सेवाएं प्रदान करता है। सिक्किम में नामची जिले के समरदुंग में एनएचपीसी तीस्ता जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे सभी 25 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही 4 दिन के बाद बचाव अभियान समाप्त हो गया। सिक्किम सरकार ने इस दुखद घटना के कारणों का पता लगाने के लिए 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। ये कदम विशेष रूप से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में व्यापक अनियमितताओं का पता चलने के बाद उठाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोटरोसेनी पैलेस में राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। इस दौरान कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार

0: भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ कम हो गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में आज ठाणे, पालघर, नासिक और पुणे के घाट क्षेत्रों के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तरी कोंकण, दक्षिणी कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में शनिवार तक तेज बारिश की संभावना है। प्रशासन ने पुणे और कोंकण की ओर यात्रा करने वाले पर्यटकों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत को 126 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम राम। अतुल भाई
1: जी, पायल भाई,
0: भाई कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत हम अपने सभी किसान बहन भाइयों का मनोरंजन तो कराते हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें, काम की बातें भी जो उनके काम आ सकती है, जिससे कि वो अच्छा लाभ, अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, ऐसी भी जानकारी हम समय समय पर अपने किसान भाई बहनों को देते रहते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए हमारे कृषिगत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए विशेष जानकारी, उनकी फसल से संबंधित हो, चाहे उनके पशुपालन से संबंधित हो, चाहे उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो, जानकारी समय समय पर हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम पहुंचाते रहते हैं। ऐसी ही आज एक जानकारी हम भी लेकर के आए हैं, मशरूम उत्पादन की संरक्षित खेती, संरक्षित एवं आधुनिक तकनीकी।
0: बिल्कुल, क्यों ना ये बातचीत अपने सभी बहन भाइयों को सुनवाई जाए।
1: बिल्कुल, और इसकी जानकारी दे रहे हैं पवन कुमार, प्रगतिशील किसान, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो पहले भी लेते हैं ये जानकारी।
2: भाइयों नमस्कार, हम अपने कार्यक्रम में कभी कभी प्रगतिशील किसानों को भी बुलाते हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करते हैं, चाहे वो सब्जी उत्पादन हो, चाहे बागवानी की बात हो, और चाहे फसल उत्पादन की। और अगर हम सब्जी की बात करें तो सब्जियों में भी बहुत सी सब्जियां हैं, कोई तो फूलगोभी उगाता है तो कोई दूसरे तरीके की सब्जियां उगाता है, लेकिन अगर हम बात करें एक विशेष जो पौष्टिक सब्जी है जिसको कहते हैं कि मशरूम, और कुछ लोग इसको कुंभ के नाम से भी जानते हैं, तो आज हमारे साथ हैं पवन कुमार जी जो कि एक मशरूम उत्पादक हैं, और इनसे जानेंगे कि मशरूम उत्पादन की संरक्षित और आधुनिक तकनीक क्या है। पवन कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्ते सभी को जी। मेरा
2: सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि जैसे मशरूम इसको कुंभ भी कहते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि जो हमारे किसान भाई करना चाहते हैं कि कई तो जंगली मशरूम होते हैं और जो हमारे किसान भाई उगाते हैं सब्जी के तौर पे जिन्हें प्रयोग किया जाता है, तो इनमें क्या अंतर है, कौन से उगाए जाते हैं?
3: जो जंगली मशरूम होती है उनमें कुछ खाने के योग्य सभी मशरूम नहीं है जंगली।
2: हाँ, मतलब खाने योग्य नहीं है।
3: हाँ, सभी नहीं है, है कुछ खाने योग्य
2: जी,
3: मगर वो लोग खा सकते हैं जिनको पहचानो नहीं, तो वो विषैली भी है।
2: और जो उगाते हैं किसान भाई वैज्ञानिक तरीके से?
3: हाँ, ये एक साइंटिफिक तरीके से, इसका मशरूम एक फंगस है तो वो तैयार किया जाता है लैब में, जो कि हमारे शरीर में उसका कोई भी नुकसान नहीं होता।
2: तो आपने मशरूम का उत्पादन कब से शुरू किया था?
3: मैं 2016 में किया था जी।
2: आज मशरूम आपने शुरू किया था, अब उसकी स्थिति क्या है?
3: हमने स्टार्टिंग में छोटे कंट्रोल कंडीशन फार्म से शुरू किया था
2: जी,
3: तो बटन मशरूम से शुरू किया था। अब हम दो तीन तरह के मशरूम उगाते हैं, बटन भी उगाते हैं, ओस्टर भी, क्रीमनी, एक पोर्टोबेलो।

0: उनमें थोड़ा सा प्रोटीन विटामिन एक्स्ट्रा है और टेस्ट भी अलग है और बनाने का तरीका भी अलग है।
1: जैसे आपने जब शुरू किया तो क्या मशरूम के बारे में पहले से जानकारी आपको थी या आपने इसकी कहीं से ट्रेनिंग ली?
0: नहीं, मैंने मेरे नजदीक केवीके उजवा था दिल्ली में
1: जी,
0: तो वहां से मैंने ट्रेनिंग ली। फिर उसके बाद मैंने हैक से भी ली, सोलन से भी ली नए रिसर्च के लिए। तो वहां ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने शुरू किया। फिर मैं धीरे धीरे हर साल अपने कंट्रोल कंडीशन के जो हमारे प्लांट है वो बढ़ाता गया।
1: तो आज के कितनी स्थिति है, कितने क्षेत्रफल में आपने लगा रखा है?
0: अभी हमारा जो है इसका क्षेत्रफल, इसमें जिस स्टेप बनते हैं
1: जी,
0: और हमारे सारे एसी प्लांट है कंट्रोल कंडीशन के, 12 महीने चलते हैं।
1: तो 12 महीने उत्पादन मिलता है?
0: हाँ जी, 12 महीने उत्पादन मिलता है हमारा। अभी 80 टन खाद आता है, तो 80 टन का मतलब होता है कि अगर आप मैनेजमेंट आपका ठीक ठाक है तो 18 से 22% निकलती है एक बैच में। 80 टन का मतलब हो गया 16,000 किलो। एक बैच हमारा 70 दिन के आसपास हमारा कंपोस्ट अंदर भी और बाहर हो जाता है। एक बैच मतलब 70 दिन के आसपास लग जाते हैं, 60 से 70 दिन।
1: और कंपोस्ट आप क्या खरीदते हैं या बनाते हैं?
0: हाँ जी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ तो यहाँ मैं बना नहीं सकता, मेरे को कंपोस्ट बनाने की परमिशन नहीं मिली थी, तो बाहर से लेता हूँ, मगर फार्मूला हम अपना देते हैं।
1: अच्छा, उनसे अपने तरीके से बनवाते हैं?
0: हाँ जी, उनसे अपने तरीके से बनवाते हैं। और 30-40 फार्म मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हरियाणा राजस्थान में भी, दिल्ली में भी और उत्तराखंड में भी, उनको भी खाद हम ही दिलवाते हैं।
1: जो आपने कंपोस्ट तैयार कराते हैं उसकी क्या विशेषता है, किस तरीके से बनवाते हैं?
0: हमारा वहाँ भी कंट्रोल कंडीशन से ही बनता है कंपोस्ट
1: भी?
0: हाँ, वो ओपन में नहीं बनता, उसके अंदर जैसे ओपन में बनता है उसमें हमें पोस्चराइज करने के लिए बहुत केमिकल यूज करना पड़ता है। हमारा टनल बंकर में बनता है तो हम उसको एक हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, वो प्रोसेस है, तो उसमें कोई केमिकल या पेस्टिसाइड ये यूज दवाई या कोई यूज नहीं होती उसके अंदर। हाई टेम्परेचर से जो हमने पोस्चराइज करना पड़ता है उसी से मशीनों में हो जाता है टनल बंकर में।
1: जो कंपोस्ट बनते हैं ये केवल मशरूम के लिए?
0: हाँ, मशरूम के लिए ही बनता है जी, वो अलग से ही बनता है, मशरूम का ही बनता है। वैसे तो सभी मशरूम का अलग अलग है
1: जी,
0: मगर जो हम 2-3 तरीके की बनाते हैं, जैसे बटन का है, पोर्टोबेलो क्रीम ने, उसमें एक दोनों ये एक ही यूज हो जाता है। ओस्टर का जो बनाते हैं वो हम खुद बनाते हैं, बाकी कुछ मशरूम अलग है उनका हम खुद बनाते हैं, उसके लिए टनल बंकर की जरूरत नहीं होती।
1: मान लीजिए आपने कंपोस्ट ले ली और उसके बाद उसमें जब स्पॉन मिलाने का वो होता है तो उसको क्या, कौन सी तकनीक अपनाते हैं?
0: हम अपने फार्म पे 2 तरीके से उगाते हैं, एक बैग पे और एक बैग में। तो जैसे बैग में है, बहुत से किसान तो क्या करते हैं कि जहाँ कंपोस्ट बनता है
1: जी,
0: उन्हीं को कह देते हैं कि जी हमारा स्पॉन इसके अंदर मिक्स करके दे देना, मगर उसमें किसान को कई बार नुकसान हो जाता है। जब कंपोस्ट ट्रेवलिंग करता है
1: तो
0: गर्मियों के टाइम में उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उससे उसका स्पॉन मरने का डर रहता है। हम ऐसा नहीं करते
1: जी।
0: हमारे साथ कई बार क्या होता है, जैसे कंपोस्ट आया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो हम उसको बेड में कन्वर्ट करते हैं, बैग में नहीं डालते ना उसके अंदर स्पॉन डालते हैं, उसको हम अपने बेड पे डाल देते हैं। और फिर जब उसका टेम्परेचर उसमें हमारा जो एक साइंटिफिक 24-25 डिग्री उतना आ जाता है, हमारे एसी उसको ठंडा करते हैं, एक दिन के अंदर हो जाता है, फिर उसके अंदर हम स्पॉनिंग करते हैं, या बैग में भी करना पड़ता है तो बैग को हम ऐसे ही बगैर स्पॉनिंग के रखते हैं। जब उसका टेम्परेचर एक ठीक ठाक आ जाता है 24-25 डिग्री, तभी उसमें स्पॉनिंग करते हैं, नहीं तो नहीं करते।
1: तो ये
0: किसान ये गलती करते हैं कि थोड़ी सी ये कर लेते हैं कि जी बैग बने बनाए ले लिए, अब वो रस्ते में ट्रेवलिंग में या टेम्परेचर में भीग गया, या कभी लापरवाही हो जाए या हाई टेम्परेचर हो गया, तो उससे किसान का नुकसान होने का डर है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए। टेम्परेचर जब 24-25 डिग्री आ जाए तभी स्पॉनिंग करे उसमें।
1: तो जो स्पॉन है वो कहाँ से लेते हैं आप?
0: स्पॉन हमारा जी दिल्ली से भी आता है और सोनीपत से भी आता है, लैब है वहाँ
1: जी,
0: उन लैब से लेते हैं।
1: तो अलग अलग किस्मों के अलग अलग होते
0: हाँ,
1: हैं?
0: हाँ, वैरायटी अलग अलग है।
1: और जो आपने जिस तरीके से कहा कि हमारा पूरा संरक्षित दशाओं में है, तो उसमें टेम्परेचर आप कैसे मेंटेन करते हैं?
0: हमारे पास कमर्शियल एसी लगे हुए हैं, इसके लगाने के लिए पूरा कोल्ड स्टोर टाइप बनाना पड़ता है, हमारे कोल्ड स्टोर टाइप है सारे, उन्हीं में रैक है, उन्हीं में हमारी कंट्रोल कंडीशन के लिए एसी लगे हुए हैं, कमर्शियल एसी लगते हैं सेंट्रलाइज, वो लगे हुए हैं, तो उसी से टेम्परेचर मेंटेन होता है।
1: अच्छा, कोई भी चीज जब हम संरक्षित दशाओं में उत्पादन करते हैं तो उसके लिए उसमें स्वच्छता की बहुत जरूरत होती है।
0: हाँ जी,
1: तो वो आप कैसे करते?
0: देखो, पहले धारणा क्या थी कि मशरूम सड़ी गली चीज में पैदा होती है।

0: अगर हमारे कंपोस्ट में कुछ पार्ट पोस्टराइज ठीक नहीं हुआ या सड़ा गला है, वहाँ मशरूम नहीं आएगी जी। बड़ी शुद्ध जगह में मशरूम पैदा होती है। तो हम अपने प्लांट में जो हमारे कमरे हैं जिनमें हम उगाते हैं, उनको बड़ा साफ सुथरा रखते हैं जी। जब हम उसके अंदर कंपोस्ट डालते हैं तो उसको कम से कम नहीं तो हम 24 घंटे या 48 घंटे पहले सफाई करके फिर ट्रीट करके उसको बंद कर देते हैं कि इसके अंदर कोई बैक्टीरिया या मक्खी मच्छर कोई चीज ना हो।
1: तो जैसे इसमें, क्योंकि जब आप बिल्कुल उसको बंद रखते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें कीटों का तो कोई प्रभाव होने की संभावना रहती नहीं है।
0: नहीं, कई बार क्या होता जी, जैसे मौसम में अब जैसे बरसात का है
1: जी,
0: तो किसानों को ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज्यादा हो जाते हैं इन दिनों में।
1: अच्छा, कीट आ जाते हैं।
0: हाँ जी, उसके लिए अब हमारे कमरे बंद होते हैं
1: जी।
0: इसका एक बनाने का भी तरीका होता है कमरे का
1: जी।
0: ऐसा नहीं है कि आपने एक कमरा बनाया और उसके आगे पूरा ही खुला है, दरवाजा खोला, बाहर से हवा आ रही है या कीट आ रहे हैं। तो बनाने से पहले ये दो तीन चीजें देख ले कि कमरे से आगे एक और कमरा बनाए जो आपके बाद में स्टोर या पैकिंग में यूज हो जाएगा। तो एंट्री जब भी होगी किसी चीज की, पहले उस कमरे में होगी, फिर प्रोडक्शन यूनिट में होगी।
1: मान लीजिए फिर अगर उसमें कीट आ गए, हाँ, तो उनका नियंत्रण कैसे करें?
0: कुछ कीट ऐसे हम पे नियंत्रण बड़ा मुश्किल हो जाता है। सावधानी और साफ सुथरा रखना ही बचाव है। ध्यान रखना चाहिए किसानों को कि दवाई वाई ना यूज करके सावधानी बरते।
1: तो मशरूम में भी कोई बीमारियां वगैरह भी होती हैं?
0: बीमारियां तो जी आ जाती है, बहुत तरह की बीमारी है, उसमें कुछ पीछे से भी आ जाती है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो बीज है स्पोन
1: जी,
0: उसमें भी आ सकती है, कंपोस्ट में भी आ सकती है। कंपोस्ट पोस्टराइज ठीक नहीं हुआ हो, शुद्धिकरण उसका ठीक नहीं गया, उसका एक टेम्परेचर पे ले जाके फिर उसको डाउन करने पे गलती कर देता है कई बार किसान, तो उसमें किटोनिया उटोनिया टाइप कई तरह की बीमारी है, तो उसमें मशरूम नहीं आती। कुछ बीमारी तो ऐसी है, स्टार्टिंग में जब हम कंपोस्ट में स्पोन मिलाते हैं, स्पोन रन होते ही थोड़े दिन बाद ही बीमारी आ जाएगी और कोई मशरूम पैदा नहीं होगी।
1: तो मान लीजिए मशरूम ऐसी फसल है कि जिस तरीके से लोग गेहूं धान काटते हैं इकट्ठा तैयार हो जाता है, लेकिन मशरूम में ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आता है, तो इसकी जो कटाई है, ग्रेडिंग है, इसमें आप क्या सावधानी रखते हैं?
0: अगर आप ग्रेडिंग का और क्वालिटी का ध्यान रखोगे तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। थोड़ी सी सावधानी और अच्छा रेट। देखो, आप सब्जी लेने जाते हो मार्केट में
1: जी,
0: जो आपको सब्जी में कोई भी पैकिंग में या खुली है जो सबसे अच्छी लगती है, ग्राहक को सबसे पहले उसी को उठाता है,
1: बिल्कुल साफ सुथरे हो।
0: तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, उस अपने फार्म पे ही जब आप मार्केट पे जाओ उससे पहले उसकी ग्रेडिंग करवा दो, तो ए बी ग्रेड भी दोनों बिक जाती है, ये नहीं बिकती नहीं है, बिक जाती है। तो ग्रेडिंग बहुत जरूरी है। दूसरा, कस्टमर का भी ध्यान रखना चाहिए
1: जी,
0: जो हमें पैसे दे रहा है,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: उसके भी स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना चाहिए।
1: और क्योंकि देखो, उत्पादन तो सभी कर लेते हैं और मेहनत करते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत से उत्पादन कर लूं, लेकिन असली बात आती है कि उसकी मार्केटिंग की, क्योंकि जब तक वो बिकेगी नहीं तब तक उसे फायदा नहीं होगा। तो आप मार्केटिंग कैसे करते हैं?
0: देखो, मार्केटिंग की तो सबके पास अपने अपने स्रोत है जी। हमारे पास तो ज्यादातर हमारी खुद सप्लाई है, हम होलसेल में जैसे मंडी है
1: जी,
0: आड़ती जहाँ बैठते हैं वहाँ हमारी बहुत कम जाती है, वहाँ हमारी तब जाती है जब हमारे पास एक्स्ट्रा हो। अच्छा। नहीं तो हमारे पास, मैं तो दिल्ली का ही रहने वाला हूँ, मार्केट तो किसानों के लिए सबके लिए है, मगर वहाँ लेने वाला देखेगा ना जी कि किसकी क्या क्वालिटी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप क्या क्वालिटी दे रहे हो और वो क्या क्वालिटी ले रहे हैं। हमारी तो दिल्ली में जो टॉप मार्केट है ना, उनके अंदर हम देते हैं और ठीक ठाक रेट हमें मिलता है। मंडी के अंदर क्या होगा कि आड़ती के हाथ में रेट है,
1: हाँ, वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं,
0: और यहाँ हम दे रहे हैं उसको अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं तो हमारे हाथ में रेट है
1: जी, वो मनमाना पैसा देते हैं। तो जैसे क्योंकि जिस तरीके से आप संरक्षित दशाओं में कर रहे हैं तो इसमें लागत भी ज्यादा आती है।
0: हाँ जी,
1: तो जो हमारे छोटे किसान अगर इस कार्य को करना चाहें, उनके लिए आपकी क्या सलाह है?
0: उसमें हर स्टेट के अंदर गवर्नमेंट भी सहायता करती है
1: जी।
0: अगर उनके पास अपना पैसा नहीं है तो वो पहले इसके लिए ट्रेनिंग करे, सीखे अच्छी तरह, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों। उसके बाद बहुत सी संस्था है हर स्टेट के अंदर,
1: हर राज्य में है,
0: हाँ, जो उनको फाइनेंशियल हेल्प कर सकती है, उनसे सहायता ले सकते हैं। अगर वहां से भी कोई बात नहीं बनती तो उसके पास जितना बजट है वो अपना छोटा काम कर सकता है। दूसरा, इसके अंदर एक और फायदा है कि परिवार में जितने भी बेरोजगार है उनको सबको रोजगार मिलेगा और दूसरे लोगों को भी आप रोजगार दोगे,
1: मतलब केवल कार्य नहीं।

0: शुरू कर रहे हैं, उसके साथ अपने पूरे परिवार के लोगों को उसमें रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे
1: अब
0: हैं।
1: ये देखो ना, हम किसी से खाद भी ले रहे हैं, बीज भी ले रहे हैं, मार्केट में भी हम मशरूम
0: जी
1: को,
0: जी
1: कितने लोगों को
0: हाँ, कोई
1: जुड़े हुए हैं,
0: ग्रेडिंग कर
1: उनको
0: रहा है,
1: सबको
0: कोई पैकिंग
1: रोजगार
0: कर
1: मिलता है।
0: रहा है, कोई
1: हाँ
0: उसकी कटाई कर रहा है, कोई स्पॉन मिलाने का काम करता है, मतलब पूरा बेड बनाने से लेकर के उसकी मार्केटिंग तक पूरा कार्य रहता है। लेकिन जब कोई भी कार्य किया जाता है, निश्चित तौर पे जितनी उसमें आसानियां होती हैं उतनी चुनौतियां भी होती हैं। तो इसके अंदर क्या चुनौतियां हैं?
1: देखो, इसके अंदर सबसे पहले तो चुनौती ये है कि आपका जो खाद है वो आप एक अच्छे उससे चुने और बढ़िया ले।
0: अच्छी जगह से
1: हाँ, जो उसके अंदर पूरा मटेरियल अच्छे तरीके से डाल दे, जिसका आपकी उत्पादन का जो परसेंटेज है वो ठीक आ जाए। अगर वो नहीं आया तो आप उत्पादन
0: विश्वसनीय
1: नहीं ले
0: जगह
1: सकते।
0: होनी चाहिए।
1: हाँ, दूसरा, फिर आपके पास काम करने वाले जो लोग हैं वो भी ठीक ठाक हो, उनको पहले आप अच्छे तरीके से सिखाओ, नहीं तो वो भी गलती कर देंगे तो भी नुकसान है। जो मशरूम खाद में अगर बीज मिलाना है तो टेम्परेचर देखना, वो सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वो बीज के जो कुछ प्रोसेस है कि भाई हमारा माइसिलियम फैल गया, फंगस फैल गई, तो उसके अंदर हम एक केसिंग मिट्टी मिलाते हैं, वो कैसे तैयार होती है, वो इन चीजों का कि हमने कितना पीएच, इन सब चीजों का हमने ध्यान रखना पड़ेगा। फिर लास्ट में जब हमारी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है
0: जी
1: तो प्रोडक्शन के टाइम हमें खास ध्यान रखना पड़ता है ग्रेडिंग का, जो आप बात कर रहे थे कि भाई रेट की,
0: जी
1: जब आप ग्रेडिंग करोगे तो आपको रेट बढ़िया मिलेगा, तो उस टाइम बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बात आती है पैकिंग हो गया आपका माल,
0: जी
1: फिर मार्केट भेजना। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई हमने पैक करके रख दिया, भाई कल भेज देंगे परसों, नहीं, आज अगर हमारी मशरूम की कटिंग होनी है तो वो आज ही होगी और मार्केट भी आज ही जाएगी। स्टोरेज नहीं है इसमें,
0: जी
1: थोड़ा
0: हाँ
1: बहुत टाइम के लिए स्टोरेज है, नहीं तो नहीं है स्टोरेज। एक और भी है जी, कि जो शाकाहारी लोग हैं
0: जी
1: उसके लिए बड़े फायदेमंद है मशरूम। विटामिन डी मशरूम में ही मिलता है और फैट फ्री है, 0% फैट है मशरूम में। दूसरा, कैंसर, बीपी और शुगर, इनमें ये हेल्पनेस है। ये हमारे जो मार्केट दिल्ली में मिलती है बटन मशरूम, ये बाकी जो मेडिसिन की है वो तो है ही अलग,
0: जी
1: मशरूम में मेडिसिन की भी है जो हर कोई नहीं खरीद सकता, कॉस्टली है, बाकी ये भी हेल्पनेस है खाने के लिए।
0: जी बिल्कुल पवन कुमार जी, आप निश्चित तौर पे बहुत अच्छी जानकारी दी और निश्चित तौर पे इससे किसान भाइयों को काफी फायदा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अतुल भाई, अभी हमारे सभी भाई बहन सुन रहे थे ये बातचीत, तो मशरूम उत्पादन की संरक्षित एवं आधुनिक तकनीक जिससे आप खेती कर सकते हैं, इस बातचीत में भाग ले रहे थे पवन कुमार, जो कि एक प्रगति किसान है, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: बिल्कुल, और देखिए योजना भी हमारी सरकार ने काफी चलाई हुई है हमारे सभी किसान बहन भाइयों के लिए। पायल बहन, उन्हीं में से एक योजना है प्रति बूंद अधिक फसल, यानी कि जब बूंद यानी कि जब आप फसल को बूंद बूंद सिंचाई करते हैं, यानी कि पौधे की जड़ तक आप जो है जल पहुंचाते हैं, तो निश्चित रूप से जैसे पूरे खेत में पानी फैल जाता है, तो पूरे खेत में पानी ना फैला करके पाइप बिछा करके प्रत्येक पेड़ की, जैसा कि आपने बैंगन का पेड़ लगाया हुआ है या गोभी के पेड़ लगाए हुए हैं, तो उनके पौधे की जड़ में जो पानी पहुंचाया जाता है बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा।
2: बिल्कुल, और देखिए इससे फायदा भी है अतुल भाई, कि पानी की बचत भी होती है और फसल भी आपकी बहुत अच्छी होती है।
3: बिल्कुल, और देखिए बरसात का मौसम भी चला हुआ है पायल बहन, तो हम तो यही कहेंगे अपने सभी किसान बहन भाइयों से कि भाई अपने स्वास्थ्य का भी आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि देखिए बरसात के मौसम में खांसी जुकाम भी हो जाते हैं, और कई बार बरसात में अगर आप भीग जाते हैं तो भाई बुखार भी आपको जो है हो जाता है, तो अपने स्वास्थ्य का भी आप विशेष ध्यान रखें। आप चलते चलते अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं तेजवीर विधुड़ी की आवाज में ये उपदेश।

तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे तेज भीड़ विधुड़ी की आवाज में ये उपदेश, और इस उपदेश के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को हमारी राम राम, राम। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पारासर।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 7:30 हो रहे हैं और अब आप सुनेंगे कुछ गजल। लीजिए, सबसे पहले सुनते हैं पंकज उदास के स्वर में ये गजल।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे पंकज उदास की गायक कुछ गजलों का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और लीजिए आप सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोविड-19 में कर्तव्य निर्वहन के दौरान जान गंवाने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने पश्चिमी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना का शुभारंभ किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा राजधानी दिल्ली में यातायात भीड़ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, परिश्रमी छात्र के साथ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कल नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा और आज विश्व प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोविड-19 महामारी के दौरान कर्तव्य के निर्वहन में सर्वोच्च बलिदान देने वाले फ्रंटलाइन वर्कर के परिजनों को वर्षों से लंबित 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि कर्तव्य के निर्वहन में सर्वोच्च बलिदान देने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स के योगदान का स्मरण और उनके परिवारों के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता सदैव सर्वोपरि रहेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज बताया कि राजधानी दिल्ली में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की हैं। दक्षिण दिल्ली से लोकसभा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री गडकरी ने बताया कि इस परियोजना से दिल्ली में 2,105 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
5: श्री गडकरी ने बताया कि दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे की योजना के अंतर्गत डीएनडी से फरीदाबाद और सोहना होते हुए 6 लेन का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा जिसकी लागत 4,583 करोड़ रुपए है। इसके अलावा लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग 48 को नेल्सन मंडेला मार्ग वसंत कुंड से जोड़ने के लिए शिवमूर्ति से 6 लेन की टनल भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इन सभी योजनाओं पर व्यय की जाने वाली कुल राशि 1,04,145 करोड़ रुपए है। आश्रम से बदरपुर बॉर्डर तक मरौली गुड़गांव रोड, आईएनए से महिपालपुर और कालिंदी कुंज जंक्शन से ओखला बैराज तक एक इंटरचेंज के निर्माण की अन्य परियोजनाओं का प्रस्ताव है। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
4: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पश्चिमी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 917 कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
6: यह डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना पश्चिमी दिल्ली नगर निगम के 25 वार्डों के लगभग 4.5 लाख परिवारों को कवर करेगी। इसकी शुरुआत पहले चरण में 6 वार्डों से हो गई है जबकि शेष 19 वार्डों को इस वर्ष 31 अगस्त तक जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ, हरित और विकसित दिल्ली का निर्माण केवल सरकारी प्रयासों से नहीं बल्कि जन भागीदारी से ही संभव है। उन्होंने नागरिकों से घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था का सहयोग करने, गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित करने तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने का आह्वान किया। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार ने नगर निगम को निर्देश दिया कि इसके लिए जो भी फंड चाहिए वह सरकार प्रदान करेगी।
7: दिल्ली सरकार ने भी नगर निगम को ये कहा कि जितना भी फंड लगेगा, परंतु दिल्ली सरकार की यह प्रायोरिटी है कि दिल्ली साफ होनी चाहिए, दिल्ली सुंदर होनी चाहिए। किसी भी शहर की सुंदरता जो सबसे पहले आती जाती है वो वहाँ की सफाई व्यवस्था से आती है।
6: उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आधुनिक तकनीक, मजबूत बुनियादी ढांचे और जन सहभागिता के समन्वय से दिल्ली देश की सबसे स्वच्छ और सुव्यवस्थित राजधानी के रूप में स्थापित होगी। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, महापौर परवेश वाही और नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार भी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
4: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा कि पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्णय हर परीक्षा में छात्र के साथ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों के अधिकारों और उनके परिश्रम पर आघात करने वालों के विरूद्ध कानून पूरी कठोरता के साथ काम करेगा। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि डॉ राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लागू करना हो या प्रधानमंत्री द्वारा आज सुबह बताए गए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना हो, सरकार कोई भी अस्थायी समाधान या जल्दबाजी में किए जाने वाले उपाय नहीं कर रही है। एक प्रेस वार्ता में श्री सूद ने कहा कि सरकार उन सभी कमियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कल नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। इस बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह बैठक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में ब्रिक्स सहयोग के विकास में महत्वपूर्ण है। मंत्रालय के अनुसार बैठक इस बढ़ती वैश्विक समझ को दर्शाती है कि आपदाएं सतत विकास, जलवायु अनुकूलन, आर्थिक स्थिरता और मानव सुरक्षा के लिए व्यापक और गंभीर जोखिम उत्पन्न करती हैं। बैठक में ब्रिक्स के 10 सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज पीएचडी चैम्बर हाउस में सेफ स्कूल्स लीडरशिप 2026 पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम में स्कूल की सुरक्षा और मुश्किल हालात का सामना करने की क्षमता के लिए एक व्यापक और भविष्य के हिसाब से तैयार दृष्टिकोण की जरूरत पर जोर दिया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि अब स्कूल की सुरक्षा का दायरा केवल भौतिक बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, इसमें साइबर सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, आपदा की तैयारी और अप्रत्याशित स्थितियों में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की क्षमता भी शामिल है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। हालांकि डीएमआरसी ने बताया कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा की समस्या को रोकने के लिए आज दिल्ली शाहदरा शामली रेलखंड के लोनी रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले कुल 71 मामले पकड़े गए और 37,210 रूपये का रेलवे राजस्व वसूला गया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को दी गई हिरासत में लेने की शक्तियां नई नहीं है, बल्कि ये शक्तियों का नियमित विस्तार या नवीनीकरण है। एक बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह आदेश हर 3 महीने में जारी किया जाता है और वर्तमान नवीनीकरण 7 जुलाई को इस वर्ष 19 जुलाई से 18 अक्टूबर की अवधि के लिए जारी किया गया था। पुलिस ने कहा कि ये नवीनीकरण छात्रों के विरोध प्रदर्शन शुरू होने से काफी पहले जारी किया गया था। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसायटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित जवाब में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आज कहा कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री लाना जारी रखेगा। प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के बारे में श्री द्विवेदी ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के पहले से ही लगभग 1.1 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये तेजी से बढ़ रहा है।
8: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
4: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऐसा माध्यम है जो देश को जानकारी देता है, प्रेरित करता है और एकजुटता करता है, साथ ही विकसित भारत की भावना को भी आगे बढ़ाता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस पर सभी श्रमिकों और समर्पित कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दत्तोपंत ठेंगड़ी के मार्गदर्शन में स्थापित भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रहित, उद्योग हित और श्रमिक हित के आदर्शों को आधार बनाकर श्रमिकों के सम्मान, अधिकारों और कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें नमन किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वराज और स्वदेशी के प्रबल समर्थक लोकमान्य तिलक ने भारतीयों में आत्मगौरव और राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा दी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनके विचारों, साहस और नेतृत्व के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के प्रति

तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने बताया कि विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक घटना में गंभीर रूप से घायल हुई महिला जीवित है और इसका इलाज जारी है। तथ्य जांच इकाई ने बताया कि उसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है और वेंटिलेटर से हटा लिया गया है। सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और सोशल मीडिया पर अपुष्ट दावों को साझा न करने का आग्रह किया। अब बात मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल बादल छाये रहने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोविड 19 में कर्तव्य निर्वहन के दौरान जान गंवाने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने पश्चिमी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन परियोजना का शुभारंभ किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, दिल्ली में यातायात भीड़ को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पश्चिमी छात्र के साथ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कल नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा और आज विश्व प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त है गीत मालिका में फिल्म संगीत का। तो आज ये कार्यक्रम लेकर मैं आपके साथ आपकी दोस्त हाजिर हूँ शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, प्रोग्राम चालू करते हैं। साथ अगर हम सफर हो तो डगमगाते हुए भी समझ जाते हैं कदम। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर हमारे साथ हमारा हम सफर साथ चल रहा है तो हम किसी भी मुश्किल वक्त में हंसते हंसते निकल जाते हैं।

दोस्तों, अगर प्रेम सच्चा हो तो दूरियां रिश्ते नहीं तोड़ती, बल्कि मिलने की तड़प और बढ़ा देती हैं।

साथियों, प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन प्रेम का जो असली मतलब है वो है इंतजार। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि प्रेम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन इंतजार हर कोई नहीं कर सकता।

साथियों, किसी से दिल लग जाए क्या वो प्रेम है? नहीं, लेकिन किसी के बिना दिल ना लगे वो प्रेम है।

तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

0: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।
1: ये कहा दोस्तों, जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ठोकरें ही सिखाती हैं हमें संभलना और चलना और अपनी मंजिल तक पहुंचना।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में फिल्म दीवाना से ये गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। और लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी

0: नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की है कि केन्द्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
2: एट द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर,
3: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
2: एक्चुअली कमिटेड दिस क्राइम।
0: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
4: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: ऋतु हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान। जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य

0: एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोटोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
1: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते।

0: जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने यह बात कही।
1: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं।

0: देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1 करोड़ 10 लाख उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
1: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगांव में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3,000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोगोहोइन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर दाई के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9।

पौने 10 बजे खबरें नष्ट की जाएंगी। 9:55 पर सुनिएगा कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से। रात 10 बजे पेश करेंगे मार्केट मंत्र। फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद आप सुन सकते हैं 10:30 बजे से लेकर 11:30 तक। इस दौरान 11 बजे सुनिएगा खबरें बड़े सगीर से। 11:30 प्रोग्राम होगा सुर्खियों में। बजे मौसीकी के प्रोग्राम का वक्त रहेगा रात 12:45। आज इसमें हम आपको सुनवाएंगे मुनाली खाडेकर से रामजोग में ख्याल। बारह बजे आलमी खबरें नष्ट की जाएंगी और 12:10 पर क्लासिक की मौसीकी के प्रोग्राम में सुनेगा उस्ताद शकूर खान से सारंगी पर राग दरबारी। सदाबहार फिल्म नगम का लुत्फ आप ले सकते हैं 12:30 बजे आखिरी शब प्रोग्राम के तहत। ये प्रोग्राम जारी रहेगा 12:50 तक। 12:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 1 बजे हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने तक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों को जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: डीडीएम में मेकेदारी 71 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामने आज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे है। यह दिन हमारे और आपके लिए बहुत अहम है। इसी दिन की वजह से आज हम आपके करीब हैं, आप हमारे साथ हैं। इसी दिन यानी 23 जुलाई 1927 को वो दिन था जब सबसे पहले बॉम्बे में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के जरिए हिंदुस्तान में नशरियाती खिदमत का आगाज हुआ। उस दिन से लेकर आज तक ये नशरियाती सफर जारी है और लोगों को करीब लाने में, लोगों की जहन साजी में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। आप तमाम को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए सामने अब सुनते हैं नौजवानों की किरदार साजी में रेडियो का रोल, इस मौजू पर जनाब एसएम शफीक की ये मालूमात।
1: शख्सियत क्या है ये किसे कहते हैं? ख्यालात, एहसासात और जज्बात और बर्ताव ही एक शख्स को दूसरे से मुख्तलिफ बनाता है। शख्सियत के फरोग के लिए चंद बातें अहम हैं: खुला दिमाग, जिस्मानी जुबान पर तवज्जो, मुस्बत अंदाज फिक्र, अच्छा सामे होना, होश खुर्रम और नर्म खो, ईमानदारी और वफादारी, नए नए लोगों से राबता और ताल्लुकात, सब्र तहम्मुल और मुश्किलात में सुकून और ठहराव। एक शख्सियत में इन खसूसियात का इजहार मुख्तलिफ तरीकों और जराए से होता है। इनमें से एक जरिया है इबलाग का। तो आइए पहले जराए इबलाग की बात करते हैं, खसूसन रेडियो की। जराए इबलाग का बुनियादी काम आवाम को बाखबर करना, उनके इल्म में इजाफा करना और उसमें बेहतरी लाना है। हिंदुस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में जराए इबलाग और मीडिया की बड़ी अहमियत है। मुल्क की आबादी का चूंकि एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, इसलिए जराए इबलाग की इस तबके में बेदारी पैदा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। यह बेदारी तालीमी और सकाफती और समाजी नौयत की होती है। जराए इबलाग में रेडियो नौजवानों को बेदार करने में

भी सबसे पहले रेडियो ही कवर करता है। खासकर अगर हम अपने मुआशरे की बात करें जहां आए दिन रबते का जरिया यानी मोबाइल फोन अब आम होने लगा है, बड़े शहरों में हड़तालें वगैरह होती हैं, तो रबते का कोई और जरिया नहीं बचता। लोग कहते हैं टीवी पर खबरें देखने को मिल जाती हैं, लेकिन टीवी तभी चलेगा जब बिजली होगी, तो लोड शेडिंग भी एक बड़ा मसला है। ऐसी सूरत हाल में रेडियो अपना मकाम मजीद बनाता जा रहा है और आगे निकलता जा रहा है। रेडियो की इस अहमियत को अक्वामे मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने इस तरह बयान किया था कि अपनी इजाद से लेकर अब तक रेडियो ने लोगों को सोच दी, तब्दीली के दरवाजे खोले और जान बचाने वाली मालूमात का जरिया बना। उन्होंने मजीद कहा कि रेडियो तफरी के अलावा मालूमात और तालीम और तरबियत फराहम करता है। रेडियो इत्तलात और मालूमात के साथ साथ अवाम के अहम मसाइल को उजागर करके उनके मुमकिन हल पर माहिराना गुफ्तगू पर मबनी प्रोग्राम भी नशर करता है, जिससे खास तौर पर नौजवान

ने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके जमन में भरपूर कार्रवाई की है। उन्होंने मजीद कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों के वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के ऐलान का मकसद तलबा और उनके कुंबों को इस बात की फिर यकीन दहानी कराना है कि जो लोग इम्तहानात के वकार को मजरूह करने के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। नीट पेपर लीक और तलबा के एहतजाज के मामले समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजीशन के एहतजाज के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिनभर के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसी दौरान पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजीशन पार्टियों खासतौर से कांग्रेस से अपील की कि वो नीट पेपर लीक मामले पर बहस कराने में तआवुन करे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने एक ऐसी तारीख और मुद्दत तक जिस पर अपोजीशन मुत्तफिक हो दोनों ऐवानों में इस मामले पर बहस कराने की खातिर हुकूमत की रजामंदी के बारे में पहले ही मुत्तला कर दिया है। जनाब रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी से यह कहते हुए अपील की कि वो शरायत न रखे क्योंकि इस तरह की शरायत को बहस से बचने की एक कोशिश के तौर पर देखा जाएगा। मरकजी वजीर और ऐवान के लीडर जगत प्रकाश नड्डा ने अपोजिशन की यह कहते हुए नुक्ताचीनी की कि उनका तर्ज अमल इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन न तो बहस के लिए तैयार है और न ऐवान की कार्रवाई चलने देना चाहती है। अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अपोजिशन बहस के लिए तैयार है लेकिन उन्होंने मुतालबा किया कि पहले वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मामलों पर बहस करने के लिए तैयार है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू तीन मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में आज रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंच गई हैं। कोट्रासिनी पैलेस पहुंचने के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सदारती महल में रोमानिया के सदर निकोश ओडोन ने सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। वक्त की सतह की बातचीत शुरू हो चुकी है। बातचीत के बाद कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। रोमानिया के सदर और खातून अव्वल सदर जमहूरिया के एजाज में आज रात सरकारी इशाइये का एहतमाम करेंगे। भारत काबिल तजदीद तवानाई छोटी कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2026 दो नवंबर से नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक्कद किया जाएगा। आज नई दिल्ली में इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए जदीद और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर जनाब प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस चार रोजा कॉन्फ्रेंस में सरकारों पॉलिसी साजों सनअती रहनुमाओं सरमायाकारों इख्तराकारों स्टार्टअप्स और बैन अल्कवामी इदारों को माहौल के लिए साजगार तवानाई में मुंतकली को रफ्तार देने और बाहमी इश्तराक के फरोग में तआवुन के लिए चाहने का मौका फराहम होगा। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। जनरल जोशी ने कहा कि यह समिट मुतालिका फरीकैन को दुनिया की सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करने वाली माहौल के लिए साजगार तवानाई के मार्केट्स और दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मईचतों में से एक में शामिल होने का मुनफरिद मौका फराहम करेगी। दिफाई तहकीक और तरक्की के इदारे डीआरडीओ ने ओडिशा के साहिल से मुत्तसिल एपीजे अब्दुल कलाम जजीरे से लंबी दूरी के जमीन से फजा में वार करने वाले मिसाइल कुशा की परवाज का पहला आजमाइशी तजुर्बा कामयाबी से मुकम्मल किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और दीगर मुतालिका फरीकों को इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने कहा कि यह हसूलियाबी भारत के दिफाई तहकीक और तरक्की के इदारे का एक अहम संग मील है। जनाब सिंह ने कहा कि फजा से जमीन से फजा में लंबी दूरी तक वार करने वाले मिसाइल तैयार करने की सलाहियत सिर्फ चंद ही ममालिक के पास है। उन्होंने कहा कि इस मिसाइल निजाम की मदद से भारत की दरामदी इन्हिसार में कमी आएगी और मुल्क की फजाई दिफाई निजाम की सलाहियत में नुमाया बेहतरी आएगी। गुजरात में शदीद बारिश जारी है जिसकी वजह से खासतौर पर जनूबी गुजरात खत्ते के बहुत से हिस्से जेर आब आ गए हैं। मामूल की जिंदगी में खलल पड़ा है। कस्बे और गांव जेर आब आ गए हैं जबकि रेल और सड़क नकलो हमल मुतासिर हुई है। वलसाड सूरत और नौसारी समेत बारिश से मुतासर अजला में बचाव और राहत की कार्रवाइयां मिशन मोड में जारी हैं। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि वजीर आला भूपेन्द्र पटेल ने जनूबी गुजरात में सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज गांधीनगर के रियासती हंगामी ऑपरेशन के मरकज में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की।
وزیراعلی نے بارش سے متاثرہ اضلاع کے کلکٹروں کو ہدایت دی کہ وہ سیلاب سے متاثرہ اور نشیبی علاقوں میں راحت اور لوگوں کو باہر نکالنے کی کوششوں کو تیز کرنے کو اولین ترجیح دیں۔

वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वज़ीर-ए-आला भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की और रियासत में शदीद बारिश के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने शदीद बारिश के मद्देनजर राहत और बचाव की कार्रवाईयों और शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए मरकज की जानिब से हर मुमकिन इम्दाद की यकीन दहानी कराई। इसी दौरान वज़ीर-ए-आला भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में शदीद बारिश की सूरत हाल में राहत और बचाव की कार्रवाईयों से मुतालिक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी बात की। मरकजी वज़ीर दाखिला ने रियासत को इस सिलसिले में तमाम जरूरी इमदाद की यकीन दहानी कराई। इसमें दोनों से मुश्तरका गेम्स आज से स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शुरू होंगे। 74 मुल्कों की टीमें इस 10 रोजा इवेंट में हिस्सा लेंगी। ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन दौलत मुश्तरका गेम्स में भारतीय टीम की क्यादत करेंगी। दूसरी जानब भारत ने इफ्तिताही तकरीब से पहले ही अपने तमगों की मुहिम का आगाज कर दिया, क्योंकि ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाली बॉक्सर लवलीना ने बाय मिलने के साथ ही सीधे खवातीन के 75 किलोग्राम के सेमीफाइनल में जगह बना ली। कुल अंदाजी में सिर्फ 5 खिलाड़ी होने की वजह से मुकाबला करने वाली 3 खिलाड़ी जिनमें लवलीना भी शामिल हैं को बराह रास्त आखिरी 4 सेमीफाइनल में पहुंचा दिया गया, जबकि बाकी 2 खिलाड़ी 1 क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी। मर्दों के क्रिकेट

0: था, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, वो करा लें। और ये टेस्ट बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से सारे अस्पतालों में हो जाता है। लैब्स, प्राइवेट लैब, सरकारी लैब, सब जगह अवेलेबल है। सिर्फ एक ही छोटा सा टेस्ट आपको बता सकता है कि पेशाब में इन्फेक्शन है, और अगर पेशाब में इन्फेक्शन है तो आप कल्चर करा सकते हैं, और कल्चर के मुताबिक अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, अपनी दवाइयां रेगुलर ले रहे हैं, तो आप इस इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें जो जंक फूड होता है उसमें ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है, और ऑक्सलेट क्या होता है, जब कम पानी पीते हैं तो ये ऑक्सलेट हमारे पेशाब की थैली में, किडनी में बैठ जाता है, जम जाता है और स्टोन बनाता है। और जहां पे भी कोई फॉरेन बॉडी होती है जैसे कि स्टोन, तो वो किडनी स्टोन बनाती है और स्टोन की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है।
1: तो मेन चीज क्या है, स्टोन को रोकना है, इन्फेक्शन को रोकना?
0: पहले मैं कहूंगी कि पहले स्टोन बनना रोकें, अपना पानी का जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है हमारे दिन का, जो कि 8 ग्लास मिनिमम है, वो लें। अगर आप पानी ठीक क्वांटिटी में पीते हैं तो आपको वैसे ही स्टोन नहीं बनेंगे और आपकी पेशाब की थैली, रास्ता सब बिल्कुल एकदम साफ रहे। तो अगर हम अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाएं और अपनी अच्छी आदतों को बढ़ाएं और खराब आदतों को कम करें और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी अपने डे टू डे रूटीन में रखें, और बहुत जरूरी पानी 8 ग्लास मिनिमम पिए, तो अगर हम इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दें तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि यूटीआई भी एक जो है उनमें से, उनको अवॉइड कर सकते हैं।
1: कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से इस प्रोग्राम में भी आप सुन रहे थे। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब की नाली के इन्फेक्शन के हवाले से डॉक्टर अंजुमारा की गुफ्तगू। मीडियम वेव 1073 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम मार्केट मंत्र।
2: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: And welcome to Market Mantra. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार निखिल।
1: और सबसे पहले आइए सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: थैंक यू निखिल। Benchmark domestic indices declined for fourth straight session. Sensex falls over 350 points. Nifty settles at 23,870. Most Asian stock market indices close in positive zone. And global crude oil prices rise around 5%.
1: घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 350 अंक से अधिक लुढ़का और निफ्टी 23,870 अंक पर बंद हुआ। अधिकतर एशियाई शेयर बाजारों में आज सकारात्मक रुख देखा गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 5% तक ऊपर चढ़े।

0: Before we take the top story, important announcement for our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 364 अंक बढ़कर 76,391 पर आ गया। निफ्टी 127 अंक गिरकर 30,870 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार भी आज मिड कैप और स्मॉल कैप में लगभग 1% की गिरावट देखी गई।

0: पहले भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच बाजार की शुरुआत लाल निशान के साथ हुई। सत्र के दूसरे हिस्से में गिरावट का रुख और तेज हो गया, जिससे सूचकांक लगातार चौथे दिन नीचे आकर बंद हुए हैं।
1: Benchmark domestic equity indices ended around 0.5% lower today. The Sensex shed 364 points to close at 76,391. The Nifty lost 127 points to settle at 23,870. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index and the Small-Cap 100 Index fell around 1%. Earlier, the markets opened on a negative note amid geopolitical uncertainties and rising crude oil prices. Bearish sentiment intensified further during the second half of the session, dragging the indices lower for the fourth consecutive day.
0: Sensex में शामिल 30 में से 19 कंपनियों में आज गिरावट दर्ज हुई। सबसे ज्यादा नुकसान वाली कंपनियों में देखा जाए तो अडानी पोर्ट्स में लगभग 2.3%, बजाज फाइनेंस में लगभग 2% और इंडिको में 1.6% की सुस्ती आई। इसके विपरीत महिंद्रा एंड महिंद्रा में 1.7%, टीसीएस में 1.5% और एटर्नल में 1.1% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई।
1: इन द सेक्टरल इंडिसेस ऑन द बीएसई 24 out of 26 सेक्टर्स एंडेड इन द नेगेटिव जोन। अमंग द टॉप लैगर्स रियलिटी ड्रॉप्ड 1.8%, services slipped over 1.6% and telecommunication fell over 1.3%. In contrast, auto advanced over 0.5% and insurance rose 0.7%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,585 companies declined, shares of 1,637 companies advanced and shares of 169 companies remained unchanged.
0: अंतर बैंक की विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में लगभग सपाट कारोबार करते हुए 96.57 पर बंद हुआ। सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज सेंसेक्स और निफ्टी लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए हैं, तो इसे केवल अल्पकालिक करेक्शन हम मान सकते हैं या फिर बाजार किसी एक नए ट्रेंड की ओर बढ़ रहा, खासतौर पर ऐसे समय में जब तमाम भू राजनीतिक अनिश्चितताएं बनी हुई है और तेल की कीमतों में जो उछाल है वो भी देखा जा रहा है?
2: निखिल जी, मुझे लगता है जो इस हफ्ते हम जो देख रहे हैं कि बाजार में लगातार गिरावट बनी हुई है, आज चौथा दिन है जब हम जो गिरावट के साथ बाजार बंद हुए हैं भारतीय बाजार, तो मुझे लगता है जो एक कारण, जो सबसे बड़ा कारण जो इसमें जो दिखाई दे रहा है, वो सीधे सीधे जो अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध है वो दोबारा से जो है काफी तेज हो गया है और किसी भी तरह की कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है कि कोई किसी तरह की कोई पीस का जो या तो बातचीत हो रही हो, बैक चैनल बातचीत हो रही है, लेकिन वो कितनी सार्थक होगी या कितनी सार्थक है वो अभी भी बिल्कुल अनिश्चितता है। और जैसा आपने कहा कि इस समय जो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, मतलब वो लगातार बनी हुई है। बीच में हमने देखा युद्ध विराम हुआ लेकिन वो टिका नहीं उसके बाद, और साथ साथ जो सप्लाई बॉटलनेक्स है, तो इस तरह और साथ साथ जो इस बार फिर हम देख रहे हैं जैसे पहले हुआ था, कच्चे तेल की कीमतों में दोबारा उबाल, 90 डॉलर के आसपास उसके ऊपर भी कीमतें चली गई थी, अभी आज इस समय भी मुझे लगता है 90 के आसपास है, 90 तो वो हमारे लिए तो कम से कम बहुत खराब खबर है। और चूंकि हम तकरीबन 90% अपनी जो एनर्जी नीड्स हैं, जो हमारे तेल या गैस की जो जरूरतें हैं उनको हम आयात करते हैं, तो मुझे लगता है मोटे तौर पर बाजार में जो नेगेटिव सेंटिमेंट हम देख रहे हैं वो इसी की वजह से।
1: सिद्धार्थ, यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफकोर्स नेगेटिव्स इन द मार्केट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट ड्रैग्ड डाउन द मार्केट्स फॉर द फोर्थ स्ट्रेट सेशन, बट बिटवीन ऑल दिस यू नो आई सी रे ऑफ होप। इफ यू लुक एट द ऑटो सेक्टर, द ऑटो स्टॉक्स, एक्चुअली टुडे इज द सेकेंड डे दैट द ऑटो स्टॉक्स एंड ऑटो शेयर्स हैव रिजन, सो व्हाट आर द रीजंस दैट even amongst this doom and gloom auto sector is doing so well?
2: Well, I would say auto obviously is still in the positive territory, and the most important reason, if you look at the auto sales, the numbers that we got, the last numbers, and if you look across across segments, whether it was four wheelers, two wheelers, three wheelers, or sales of EV, which is really picking up now, and plus also the commercial vehicles, plus also if you look at the rural side, the track sales of tractors, so we have seen a very positive growth in auto sales across segments, and I think that is the reason which is keeping the auto stocks in green. Plus also if you look at the results, the Q1 results, we've got

0: क्षेत्र हो या चाहे उनके ब्रिजेस हो या पुल हो, तो उन पे भी अटैक करेंगे अगर ईरान अब जो है अटैक करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में जो जहाज हैं जो तेल लेके वहां से निकल रहे हैं। उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपने जो ईरान सपोर्टेड हूती रेबल्स हैं उन्होंने जो रेड सी का रूट है जो कि अभी तक हमारे लिए सबके लिए एक जो ऑल्टरनेट सरप्राइज का एक रूट बना हुआ था उसको अब उन्होंने उस पर भी उन्होंने जो है रोक लगाई बल्कि दो जहाजों पे अटैक भी किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाजार में इन जो नए ये इवेंट्स हैं उनका भी कहीं ना कहीं दबाव दिख रहा है।
1: बट सिद्धार्थ, यू वेरी राइटली सेड दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स द इंडियन स्टोरी द ग्रोथ स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट एंड यू नो इनफैक्ट दैट इज व्हाट इज बीइंग हैज बीन मेंशनड इन द आरबीआईज स्टेट ऑफ द इकोनॉमी बुलेटिन दैट जुलाई बुलेटिन एंड एज यू वर सेइंग दैट यू नो द एफआईआईज आर मेकिंग अ कमबैक हैव मेड अ कमबैक इनटू द इंडियन इकोनॉमी सो दैट ओवरऑल इफ यू डू लुक एट इट इट्स अ वेरी गुड न्यूज बिकॉज एज द आरबीआई बुलेटिन सेज दैट द हेल्दी डोमेस्टिक डिमांड एंड रिजिलियंट इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर्स हैव हेल्प्ड सस्टेन इकोनॉमिक मोमेंटम डिस्पाइट चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम फ्रेजाइल जियोपॉलिटिक्स एंड सप्लाई चेन प्रेशर्स एंड एज यू वर मेंशनिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज्ड $3.1 billion इनटू इक्विटी एंड डेट मार्केट्स इन जुलाई अप टू द 20th ऑफ दिस मंथ व्हाइल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिमेन्ड हायर ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई दिस ईयर सो ओवरऑल लाइक वी आर डिस्कसिंग दैट It's you know the trust of not just FIIs the domestic investors as well as FIIs is still intact and you know in the Indian story.
0: As Anubha, as you rightly said, it is not only the FIIs. As you also mentioned that figure in April May the FDI inflows have also it's almost at a record level of about $6 billion, and we are expecting a net FDI in the current financial year of upwards of around $15 billion, which is I think after 4 years we are seeing that kind of number or FDI inflow into the country, and especially at a time when things are so uncertain. And as the RBI report also mentions about the heightened global economic uncertainty, also supply bottlenecks. But despite all that, they have mentioned in the report the demand, whether it is in the urban areas or in the rural areas, and if you look at the GST data, the digital payments data. So everything is positive. India's industrial sector or the services sector continue to be to record a robust growth, and the only concern is on the food side.
1: Yes, the inflation
0: has been a little delayed because of the monsoon onset of monsoon was a little delayed, but there also a big for us a big I would say a caveat for us is that we have huge stocks of food grains,
1: right?
0: So there is nothing to worry, especially the rice, wheat, the essential items, plus government has also been kind of procuring the essential vegetables also to ward off any such eventuality. So I see I do not see in terms of our own domestic parameters, macroeconomic, everything is positive. And if you look at the worst of projections for our current financial year GDP, India would definitely be the fastest growing economy, and all the projections are upwards of 6.5%,
1: exactly
0: 6.5%. So, and if you look at even the first 3 months of export data, so even there we are seeing a 16% growth. So I do not see anything to worry in terms of our own domestic challenges. Yes, inflation could be a concern in terms of obviously high oil prices feeding in. So, but that also till now, the last data we have seen 4.4%. I think that also is within the band.
1: Yes.
0: So.
2: सिद्धार्थ, इसी रिपोर्ट से जुड़ा एक छोटा सा मेरा सवाल ये है कि हम ये देख रहे हैं कि लगातार विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस दिशा में देश को सफलता भी मिल रही है, तो क्या ये बड़ा कारण है कि बैलेंस बनाने में हम कामयाब हो पा रहे हैं, खासतौर पर इकोनॉमी को एक स्टेबल पेस देने के मामले में?
0: नहीं, देखिये निखिल, जब आपने देखा होगा जब वेस्ट एशिया क्राइसिस हुई तो कहीं न कहीं हमारे चूंकि हम बड़े पैमाने पर ऑयल और गैस इम्पोर्ट करते हैं और हमारा ऑयल गैस का बिल बहुत बड़ा और इसका पेमेंट चूंकि हम डॉलर में करते हैं तो जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व तकरीबन $700 बिलियन, तो वो ही एक बड़ा कारण था कि जिससे किसी तरह का जो हमारे रुपए पे प्रेशर जरूर आया करेंसी पे चूंकि हम डॉलर में पेमेंट करते हैं। लेकिन जो आपने सवाल पूछा उसके लिए सरकार ने उत्तर इमीडिएटली स्टेप्स लिए, एक तो ये इंश्योर किया कि कहीं भी देश में जो पेट्रोल पदार्थ है, चाहे वो ऑयल हो या पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस की जो सप्लाई हो, उन पर इम्पैक्ट ना हो, तुरंत सरकार ने तत्काल कदम उठाए और उस पूरी स्थिति पर नियंत्रण रखा। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक जो इम्पोर्टेंट स्टेप दूसरा लिया जो फर्टिलाइजर को लेकर था, ताकि हमारा जो खरीफ की जो सोइंग थी उसका इम्पैक्ट नहीं हो। एक तो हमारे पास फर्टिलाइजर के बहुत अच्छे भंडार थे, साथ ही सरकार ने तुरंत जो भी इम्पोर्ट, बहुत हाई प्राइस पे हमने इम्पोर्ट किया लेकिन हमने किया। तो और जो आपका सवाल है कैसे जो निवेश आ रहा है, जो एफडीआई एफपीआई, और उसके साथ साथ एक और अच्छी, हम लोगों ने अभी ने एफडीआई की बात की, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की बात की, दोनों हमें एक पॉजिटिव इन्फ्लो दिख रहा है। उसके साथ साथ एक और आरबीआई ने आंकड़ा जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट्स के लिए जो डिपॉजिट की स्कीम सरकार ने अनाउंस की, क्योंकि हमारे ऊपर कहीं ना कहीं जो फॉरेन एक्सचेंज जो प्रेशर था उसको भी, उसका भी तकरीबन अभी तक $20 बिलियन का जो डेटा आया उसमें हमें आ चुका है।
1: जी,
2: आगे बढ़ते हैं। इंफोसिस लिमिटेड ने आज इस वित्त वर्ष में अपनी पहली तिमाही के वित्तीय परिणाम जारी किए हैं। कंपनी के राजस्व में वार्षिक आधार पर अपनी परिचालन गतिविधियों में 14% की बढ़त के साथ 48,211 करोड़ रुपए की बढ़त दर्ज हुई है। इस कंपनी का कुल लाभ 12.2% बढ़कर 7,769 करोड़ रुपए हो गया है।
1: Interglobe Aviation Limited today reported its financial results for the first quarter of the current financial year. The company's standalone revenue from operations rose nearly 20% year on year to 24,584 crore rupees. The company reported a standalone net loss of 381.5 crore rupees as compared with net profit of 2,161 crore rupees in the corresponding quarter of the previous financial year.
2: भारत की स्थिर आर्थिक वृद्धि, बाजार के बढ़ते अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य राष्ट्र के रूप में देख रही है। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी स्पर्धा के कारण लाभ कम हुआ है। वहीं भारत दीर्घकालिक विकास के अवसर प्रदान करता है। रिपोर्ट में भारत के विशाल उपभोक्ता आधार, कुशल कार्यबल, बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, बेहतर अवसंरचना और व्यापार अनुकूल सुधारों को निवेश को बढ़ावा देने के प्रमुख कारकों के रूप में बताया गया है। तो सिद्धार्थ, जैसा कि हम बात कर रहे थे निवेश को आकर्षित करने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, यूरोप की बात करें तो सरकार का काफी फोकस उधर,
0: न केवल यूरोप, जैसे आप देखा होगा जब से पिछले एक साल में आप देखेंगे तो कई सारे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर डाले, हमने अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ावा दें या दूसरे कंट्री से कैसे हमारे यहाँ जो है निवेश आए, मैन्युफैक्चरिंग में आए, तो हमने उसके लिए पीएलआई स्कीम जैसे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव दिए। तो आप देख भी रहे होंगे कि खासकर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में या सेमी कंडक्टर्स के क्षेत्र में, मोबाइल में आज हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो लगातार जो कोशिश है कैसे हिन्दुस्तान में किसी भी बिजनेस करने वाले को निवेश करने से लेके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे उसको हैंड होल्ड किया जाए, कैसे कि किसी भी तरह से उसको किसी भी स्टेज पे कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए, और उस यही वजह है कि आप देख रहे हैं जो आप जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया कि आज हम एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नॉट ओनली एज फॉर कैपिटल बट आल्सो फॉर मैन्युफैक्चरिंग।
2: एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज सकारात्मक रुख देखा गया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 4.4% चढ़ा, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.3% ऊपर आ गया, जापान के निक्केई में लगभग 15% की तेजी आई, चीन के शंघाई कंपोजिट ने 0.2% से ज्यादा का उछाल आया और ताइवान के ताइएक्स में मामूली बढ़त देखी गई। दूसरी तरफ सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% से अधिक नीचे आ गया।
1: लेट्स मूव ऑन टू द कमोडिटीज। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज्ड टुडे। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 4.9% अप एट $98.67 पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड। वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट क्रूड वाज ट्रेडिंग ओवर 4.4% अप एट $90.70 per barrel when reports last came in. Let's also have a look at the gold and silver prices in the Indian bullion market. 24 karat gold was trading 1.2% down at 1,44,610 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.1% down at 2,22,790 rupees per kilogram a short while ago.
2: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1.2% गिरकर 1,43,951 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि सितंबर अनुबंध वाली चांदी करीब 2% नीचे आकर 2

0: 22,570 रुपए प्रति किलोग्राम प्रति। सिद्धार्थ, कारोबारी सप्ताह की बात करें तो कल अंतिम दिन होगा और आज चौथा दिन था जब लगातार हमने गिरावट का रुख देखा है। पिछले सप्ताह के मुकाबले भी सुस्ती देखी गई। अब क्या लगता है कि आने वाले सप्ताह के लिए निवेशकों को किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए, किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए, खासतौर पर ऑयल्स के दाम पर या फिर जो दुनिया भर में तमाम अनिश्चित राजनीतिक की अनिश्चित घटनाएं हो रही हैं उन पर, या फिर और भी कोई भू राजनीतिक कारण हो सकते हैं?
1: नहीं, मुझे लगता है निखिल सीधी सी बात है, जो अमेरिका और ईरान का के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका क्या होता है, क्योंकि उसी का सीधा इम्पैक्ट है जो आपने बोला क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। तो मुझे लगता है जो एक बड़ा चीज जो निवेशकों को जिनकी नजर होगी या मार्केट की चाल वही डिसाइड करेगा, वो होगा कि यूएस और ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही है और उसका क्या होता है आने वाले दिनों में।
2: सिद्धार्थ, आई विल कम बैक टू द प्राइसेस ऑफ सी गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, यू नो स्पेशली गोल्ड प्राइसेस, सो वी सी दैट फॉलन मार्केट, यू नो इन
1: अनुभव। आई वुड ऑल्सो एड वन मोर थिंग हियर, निखिल के जो सवाल था, Q1 रिजल्ट हमारे अच्छे आए हैं, अभी तक जो रिजल्ट आए काफी अच्छे रिजल्ट हैं, उसके बावजूद हम बाजार में गिरावट देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो सबसे बड़ा निवेशकों के मन में या बाजार में जो इम्पैक्ट है वो अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है और वो उसका भविष्य में क्या होगा।
2: जी, अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ कॉमेंट फ्रॉम यू ऑन द गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, बिकॉज आर वी सीइंग द फॉलिंग इन प्राइस बिकॉज ऑफ द हाई यूएस बॉन्ड ट्रेजरी यील्ड्स एंड बिकॉज ऑफ अ फर्मर डॉलर?
1: Actually, you've answered your question. Also, has the answer. It's basically because we're seeing the earlier the conventional rule has been broken this time.
2: Yeah.
1: Each time there is uncertainty, gold prices used to go up, but this time because it is the U.S. dollar and the U.S. treasury yields and the fear of inflation.
2: Yeah.
1: So that is driving people away from gold.
0: So that just करके मैं शामिल होने और इस बात पर चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
1: आप दोनों को भी धन्यवाद।
2: And before we close, a reminder of headlines: benchmark domestic indices decline for fourth straight session, Sensex falls over 350 points, Nifty settles at 23,870. Most Asian stock market indices close in positive zone, and global crude oil prices rise around 5%. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय।

0: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
1: मीडियम में भी 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब।

अगली पेशकश नागिन फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज में, नगमा निगार राजेंद्र किशन, मौसीकार हेमंत कुमार। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से स्वीटी छाबड़ा, रविंदर सिंह छाबड़ा और इंद्रजीत छाबड़ा। गांधीनगर गुजरात से जेके परमार, जीवसन परमार और हर्ष। जेलो रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार और बल्लू निषाद। पलाली छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी और अनुराग मोहन। कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत उत्तर प्रदेश से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ और सादिक अली खान। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी और गौरव सैनी। ऑक्सीजन पार्क नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडानी, अर्चना गोंडानी और हीरामन शिंडे। और यह जनाब मच्छिंद्र पाटिल, कल्पना पाटिल, बोरोले नगर चोपड़ा महाराष्ट्र से। कस्बा बलराम से इरशाद अहमद शाह, शाजा बेगम, मरियम और जैनब। जय मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी और नौरीन अंसारी। शुगर फैक्ट्री गैबराई।

और सामान्य सुनिए शमशाद बेगम और किशोर कुमार की आवाजों में नया अंदाज फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है ओपी नैयर ने। सुनना चाहते हैं निजामाबाद नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई और शेख चांद फारूक, किशोर नगर अमरावती से हीरामन शिंडे और शैला देवी शिंडे, आरकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे और शुभम बेंडे, और यही जनाब सिटी सेंटर खंडवा से भाई मनोज सेन, पूनम सेन, दीपक सेन और सोमी सेन, कोलकाता से सुब्रत चौधरी, बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान और उत्कर्ष चौहान, आनंद गौरी नगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले और राखी कामले, पुलवामा निजामाबाद तेलंगाना से एम ए वहीद रूमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी, मातुलवाली महाराज से सुपन ताइडे, विजय ताइडे और उनके अहले खाना, जिगांव विदर्भ से वसंतराव भोजनी और पी एस नावकर, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब, देवरी भटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, और जनाब ये हैं गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, सायमा नवाज और हसन नवाज, अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी और भाविया कुमारी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा और प्रतीक मल्होत्रा, केतल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा, और कालका से शुभचंद्र बजाज, शाही बजाज और बिट्टा बजाज।

और सामान्य सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज में धर्मपुत्र फिल्म का नगमा, नगमा निगार साहिर, मौसीकार एन दत्ता। सुनना चाहते हैं हकीकत पूरा मऊ से मुन्ना सवनकर, पिंकी सवनकर और आर्यन। राजपैलेस मोनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक। पिंजौर से चंद्रमोहन और इंद्रमोहन। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, सुरेशा पाटिल और प्रथमेश पाटिल। मेहनगर उमरखेड़ से अभिजीत गवाहनकर, सरिता गवाहनकर और अर्जुन गवाहनकर। सिडनी बुजुर्ग महाराज से किशोर वडतकर, शुभम वडतकर और पुण्य वडतकर। ग्राम पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी और शकील अहमद इदरीसी। आरसी गांव बाजार से रंजीत पुनकर। मुलापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन और संजीव जैन। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश। करनाल से बलविंदर सिंह सोडी। महेश्वर नगर नरवील महाराज से पीएस नावकर, निर्मला नावकर और विशाल नावकर। और साबुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता सैनी और गौरव सैनी। और यही जनाब कहां से इन्होंने कवा गिन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान और फैजी और फराज। आप तमाम की पसंद आपकी नजर है।

फहद महमूद और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे सुशीला फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया था सी अर्जुन ने। इस नगमे को सुनने की फरमाइश की थी, सुनना चाहते थे आसल गांव बाजार जिला बुल्डाना महाराज से राजू माठे, गजानन माठी और ज्ञानेश्वर माठे, श्रीरामपुर फातमा कॉलोनी श्रीरामपुर से नासिर शेख, नाजिर नासिर और साजिद शाहिद, नलगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी और मीनाक्षी गोस्वामी, वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद और मोहम्मद शादाब खत्री, और यही जनाब अच्छा जी संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर और दियालक डावर, मधुबन बिहार से एक ही झा दुर्गा प्रसाद सैनी और शेख अल्लाह बख्श, जनकपुर राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और प्रयागराज भट्ट, मेरे ख्याल में जनाबी में पहले ले चुका हूं। बहरहाल गंडवाड़ा से मोहम्मद कलीम जख्मी, जहीरा बेगम अंसारी और मोहम्मद आयान अंसारी, गांव टोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी और डॉक्टर प्रियंका थांदी, ताज मंदिर लकड़ा बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर और मोहम्मद हसनैन पवार, और सिपरा टाउन से जुबैर अली खान और सबिया जुबैर के साथ अंजुमन खान भी हैं। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा मध्य प्रदेश से आनंद जोशी, तनुजा जोशी और ध्रुवी जोशी। और समझ लीजिए, अब सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश मुकेश की आवाज में हरियाली और रास्ता फिल्म का नगमा। मौसीकार हैं शंकर जयकिशन। सुनना चाहते हैं मधुचल भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, और ये कौन है साहब, नूर महल सीतामढ़ी, नूर महल मैसूर सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज और फरहत जहानाज। हिरमन शिंदे जी कितने मैसेज डालेंगे आप ये बताइए, आपने बार बार बार बार हर मैसेज के बाद आपका मैसेज आ रहा है, क्या बात, उंगली हटाना भूल गए क्या मेरे प्रोग्राम सुनते हुए। पोटे कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू और शशांक साहू, बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मुनत, नेहा जैन और दीपक मुनत, बिलमगेट काजगंज से एम असलम सैफी, जैबुन्निसा बेगम और सद्दाम सोनी, फिल्म सिटी मुंबई से इकबाल मोगा, अफसल मोगा और अहमद मोगा, ऊपर अच्छा ये भी ले चुके हैं, गांधी नगर यावतमाल महाराज से लक्ष्मण राव लोखंडे, कलपनताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे, गांव नए वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फैद मिधा और अलका मिधा।

प्रोग्राम की अगली पेशकश भरोसा फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज में, नवानिगार राजेंद्र किशन, मौसीकार रवि। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मैराज जहां। 27 निर्मला अपार्टमेंट भिलाड़ वापी गुजरात से कल्पना मदन झा, मानव और मयंक। जुमानगर खंडवा से अल्तमाज समीना और मुदस्सर। मुंबई फिल्म सिटी से मोहम्मद सलीम और निगत परवीन। साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता। स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नंगली डेरी निजबगढ़ से मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी और टुक टुक। डिंडुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा और अदनान खान। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा जी। खबर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से परवीन श्रीमाली और मीना श्रीमाली। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सुल्तान अंसारी और रस्मानाज अंसारी। सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर और जयपाल यादव। और जनाब कांटा रोड वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सरोशी, सुषमा सरोशी और मायरा सरोशी। सिद्धेश्वर नगर यावतमाल से पंजाब रामटेक।

यशोधर राम टेके और शराबी राम टेके, व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण और अंजू श्रीवास्तव, और ये जनाब मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर और मीनाक्षी तिवारी जी, बठिंडा रोड मंडी डबाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग, गांव डागर निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर और गुरुप्रीत सिंह, तारानगर बड़वा से भारती कुशवाहा, मनीष कुशवाहा और पार्थ कुशवाहा, अहमदपुर खैगांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली और समर फूलमाली, और ये जनाब मछली गोदाम कैदी मोड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह और ऋषभ सिंह, महाराज से नंदकिशोर घटे, अंजलि करवा और बाला साहेब करवा।

नाटगांव का मेम्बरवती महाराज से दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर और अक्षय रामेकर सुनना चाहते हैं। सल्लाही सुकना नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा, गांवरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी, फरखाबाद मोहल्ला साहिबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया और बाबू शिव चौरसिया, नांदेड़ मारासी नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और ओमकार गायकवाड़। आप सबकी पसंद, आपकी नजर है आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

0: چوبیس سروے کے ساتھ ہی آج کا فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت پروگرام سرخیوں میں. प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में. इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रोमानिया यात्रा से सुदृढ़ होते भारत यूरोप संबंधों पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत प्रभु दयाल. कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अनुभा रोहतगी.
1: अम्बेसडर दयाल, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: मेरा पहला सवाल ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने तीन देशों के दौरे के आखिरी चरण में आज से रोमानिया

0: की 2 दिन की यात्रा पर हैं। 3 दशकों से ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की बुखारेस्ट की पहली यात्रा का क्या महत्व है?
1: जी, जैसा आपने खुद कहा कि 3 दशक गुजर चुके हैं कि भारत के कोई राष्ट्रपति रोमानिया के दौरे पे जाए। पिछला दौरा हुआ था 1994 में, जब प्रेसिडेंट पंडित शंकर दयाल शर्मा जी वहां पर एक स्टेट विजिट पे गए थे, और इतना अर्सा गुजर गया है तो अब हमारे जो राष्ट्रपति है उनका वहां जाना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे दोनों देशों की जो एक ब्रॉड स्ट्रेटेजिक आउटरीच है उसमें हमारा सम्मेलन हो रहा है। लेकिन भारत की आउटरीच सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है, और राष्ट्रपति जी मोल्डोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया के दौरे पे भी गए। इसके अलावा देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इकोनॉमिक और सेक्टरल कोऑपरेशन। इससे जो भारत के यूरोपियन यूनियन के साथ जो संबंध है इंडिया ईयू फ्रेट ट्रेड एग्रीमेंट के तहत, इनमें बहुत बढ़ाव होगा, इसको बहुत ज्यादा उससे अच्छे एक संस्करण मिलेंगे। तो जो राष्ट्रपति जी है वो इंडिया रोमानिया बिजनेस फोरम को एड्रेस करेंगे। हमारे की कल्चरल टाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मेरे विचार में ये जो कल्चरल टाइज को बढ़ावा मिलेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है।
0: अभी आपने जैसा कहा अम्बेसडर दया कि अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू इंडिया रोमानिया बिजनेस कार्यक्रम को संबोधित करेंगी, तो दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं?
1: मेरे विचार में जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स है कोऑपरेशन के लिए वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी, तीसरा डिफेंस, और चौथा रिन्यूएबल एनर्जी और साइंस। देखिए, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत जो है उसने काफी अचीवमेंट हासिल किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, जैसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब जो रोमानिया में हमारे जॉइंट वेंचर्स हैं वो हमें ऐसे एक स्थिति में पहुंचा सकते हैं कि रोमानिया हमारे लिए एक ईयू के लिए गेटवे साबित हो। इसके अलावा जैसे मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की, देखिए इस क्षेत्र में जो कॉपरेशन है उसको आगे बढ़ाने की बहुत संभावना है। इसके अलावा डिफेंस में देखिए ज्वाइंट एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग, एक्सपर्ट एक्सचेंजेस, ये ऐसी चीजें हैं जिनमें हम बहुत पूर्ण रूप से समझते हैं और उस पर बहुत हम एम्फोसिस देते हैं।
0: रोमानिया एक प्रमुख रीजनल टेक और आईटी आउटसोर्सिंग हब है, ये कम लागत वाला एक मैन्युफैक्चरिंग बेस भी है और ईयू में कृषि उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादन भी है। तो अगर हम इन तीनों क्षेत्रों को देखें इससे भारतीय व्यवसायों को कैसे फायदा हो सकता है?
1: देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, रोमानिया हमारे लिए एक ईयू के लिए गेटवे की तरह साबित होता है, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग में, और एक बहुत एडवांस्ड हब जो टेक इनोवेशन के क्षेत्र में, और पार्टनर हमारे लिए एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, इन सब क्षेत्र ऐसे हैं जिसके जिसमें की अहमियत बहुत है। अब जैसे रोमानिया में कुछ प्रोडक्शन बेसिस लगाकर जो भारत की फर्म्स हैं उन्होंने कुछ क्षेत्रों में जैसे ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में जो हाई टैरिफ्स हैं वो हम उनसे बच सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो रोमानिया है वो 16% कॉर्पोरेट टैक्स हमको देता है, बड़ा कंपेटिटिव है, और 0% देता है री इन्वेस्टेड प्रॉफिट पे। अब जहां तक टैक्स सेक्टर की बात है, देखिए रोमानिया में जो टेक्स सेक्टर है वो भारत की कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, स्मार्ट सिटीज बनाने में और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, और रोमानिया के पास एक अच्छी वर्कफोर्स है, स्किल्ड कॉस्ट इफेक्टिव इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की वर्कफोर्स है जो हमारी टेक फर्म्स के साथ कोऑपरेट करके दोनों का फायदा कर सकते हैं। अब आपने बात की एग्रीकल्चरल फूड टेक्नोलॉजी टाइप की, देखिए रोमानिया जो है वो एक बहुत स्पेशलिस्ट है मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर में, एग्री इंजीनियरिंग में और फूड प्रोसेसिंग जो उसकी टेक्नोलॉजीज है, तो इन सबसे भारत को फायदा होता है कि हम अपनी भी जो कैपेसिटी है बढ़ा सकते हैं। सप्लाई चेन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो बायलैटरल ट्रेड है इसको रोमानिया के सरप्लस प्रोडक्शन से फायदा उठाते हुए, जैसे कुछ क्रॉप्स हैं, सीड ऑयल्स हैं, इन सब में मिलके हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कॉरिडोर बना सकते हैं।
0: रोमानिया यूरोप का एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन हब भी है और पश्चिमी यूरोप को एशिया से जोड़ने वाला एक अहम ट्रांसिट पॉइंट है। बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी एक जरूरी पहलू है, तो ऐसे में यूरोप में अपनी मौजूदगी बढ़ाने और व्यापार और

0: जो सामान है वो जल्दी पहुंच सकता है सेंट्रल यूरोप और साथ ही साथ कम दाम में। इसके इसी वजह से जो रोमेनिया के पोर्ट है ये नॉर्थ यूरोपियन पोर्ट्स के जो बड़े क्राउडेड हैं, उसमें चार्जेस भी ज्यादा हैं, शिप्स की संख्या ज्यादा है, इस वजह से ये जो रोमेनिया का पोर्ट है ये हमको एक कॉस्ट और टैलेंट एडवांटेज देता है। और साथ ही साथ देखिए जो मल्टीलिंगुअल आईटी और इंजीनियरिंग वर्कफोर्स है रोमेनिया के पास, उससे हमारी कंपनीज को बहुत सहायता मिल सकती
1: है। रोमेनिया यूरोपीय संघ का एक सदस्य है और भारत और ईयू में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को जो एक समझौता हो चुका है हमारा, तो इस भारत ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को और मजबूत करने में रोमेनिया की क्या भूमिका हो सकती है, कितनी अहम भूमिका रहेगी?
0: मैं तो ये कहूंगा कि रोमेनिया एक ऑपरेशनल कैटलिस्ट का काम कर सकता है
1: जी।
0: इंडिया ईयू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के संदर्भ में, क्योंकि रोमेनिया की जो पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल पोजिशनिंग है ब्लैक सी पे, ये बहुत हमारे लिए एडवांटेजेस हो सकती है जो ईस्टर्न यूरोपियन मार्केट है उसको एक्सेस करने के लिए। तो इस तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के हमारी कंपनीज के लिए रोमेनिया हमारी सहायता कर सकता है लोकलाइज प्रोडक्शन बढ़ाने में, जो यूरोपियन सप्लाई चेन में इंटीग्रेट हो सकता है। तो मेरे विचार में ये जो बुकरेस्ट को हम उसके साथ जो कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम ये सोचते हैं कि बुकरेस्ट रोमेनिया हमारी सहायता कर सकता है इंडस्ट्रियल अलाइनमेंट में और रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन में, सब की सेक्टर्स में जैसे फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, इन सब में जो रोमेनिया के पास एक स्किल बेस्ड लेबर पार्टनरशिप, वो हमारे साथ काम करके जो वहां के हम लोगों को इस्तेमाल करके, वहां के स्किल्ड प्रोफेशनल को इस्तेमाल करके अपने जो कंपनीज हैं उनके बेसिस वाला लगाके बहुत ये जो रिलेशनशिप को हम आगे बढ़ा सकते।
1: भारत और रोमेनिया की जो संबंधों की बात हो रही है तो 3 T's की बात हो रही है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म। हमने ट्रेड की बात की, हमने टेक्नोलॉजी की बात की। राष्ट्रपति नोमो की रोमानिया यात्रा दोनों देशों के टूरिज्म सेक्टर को कैसे बढ़ावा दे सकती है?
0: राष्ट्रपति गुरु जी की जो ये विजिट है रोमानिया की, ये टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि ये पीपल टू पीपल रिलेशंस है वो इसकी वजह से बहुत प्रोत्साहित हो सकते। देखिए कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स होंगी, इससे कुछ जैसे वीजा रिस्ट्रिक्शन है वो ईज होते हैं। तो मेरे विचार में ये जो इंटर कनेक्शन है हमारा एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, एक दूसरे के जो कल्चर्स हैं उनको समझने के लिए, इसकी वजह से ये पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस बढ़ेंगे और टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।
1: रोमेनिया ने मोल्दोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ मिलकर पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम के आतंकी हमले की निंदा की थी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को अपना मजबूत समर्थन दिया था। वैश्विक स्तर पर नई दिल्ली के लिए ये जो आतंकवाद के खिलाफ जो समर्थन है कितना महत्वपूर्ण है?
0: भारत के लिए टेररिज्म से लड़ना एक बहुत महत्वपूर्ण बात, और ये तीनों कंट्रीज रोमेनिया, मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया का जो हमको डिप्लोमेटिक सपोर्ट हमें चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीनों ने जो पहलगाम टेरर अटैक था इसमें उन्होंने भारत के साथ सॉलिडारिटी दिखाई थी और स्पष्ट तौर पर हमारे साथ वो खड़े थे। तो इस तरह से जो ये ईस्ट यूरोप की इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इनके साथ अगर हम काम करते हैं तो जो टेरर के सपोर्टर्स हैं उनको हम अलग थलग करने में और एक यूरोपियन बैकिंग को प्राप्त करने में एंटी टेररिज्म जो हमारी लड़ाई है उसके संबंध में बहुत महत्व रखते हैं। तो मेरे विचार में ये तीनों कंट्रीज का सपोर्ट भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर इसलिए कि हम चाह रहे हैं कि ग्लोबल वॉइस बने टेररिज्म के खिलाफ।
1: मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात में जब ट्रेड रूट्स और सप्लाई चेन्स में रुकावटें आ रही हैं, आप मौजूदा पार्टनर्स के साथ संबंध बढ़ाने और नई पार्टनरशिप बनाने पर नई दिल्ली का जो फोकस है उसे कैसे देखते हैं?
0: न्यू दिल्ली का जो फोकस है इन सब संबंधों में वो ऐसा है कि हम जो पुरानी पार्टनरशिप है, अलायंसेस, उनको हम और तंदुरुस्त करना चाहते हैं और न्यू पार्टनरशिप भी बनाना चाहते हैं। अब जैसे हम कोशिश

0: कर रहे हैं क्वाड के साथ जो कोऑपरेशन है वो बढ़े, और जैसे एनहांस कर रहे हैं मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए. तो ये दिखाता है कि हम जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप्स है उनको तंदुरुस्त करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ न्यू पार्टनरशिप भी क्रिएट करना चाहते हैं. जैसे मसलन अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो न्यूजीलैंड का दौरा हुआ था, या उन्होंने जो विजिट किए जीसीसी कंट्रीज में, वहां पर कुछ हमने ऐसे ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए हैं और कुछ ऐसे रिश्ते बनाए हैं जिससे कुछ नई दिशाओं में काम करने की संभावना पैदा हो रही है.
1: मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत के संबंधों को और सुदृढ़ करने में राष्ट्रपति की रोमानिया यात्रा कितनी अहम है?
0: ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और ये एक संदेश देती है कि भारत ईस्टर्न और साउथ ईस्ट यूरोप को बहुत इम्पोर्टेंस दे रहा है, उनके साथ अपना कोऑपरेशन बढ़ाना चाहता है. देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए जो संदेश जा रहा है कि हम बिलीव करते हैं वसुदेव कुटुम्बकम में, और हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि हम ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं ताकि हमारी जो पार्टनरशिप है ये और तंदुरुस्त होती जाए. तो ये सब जो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे इस विजिट से पे हम जोर दें, इस पे हम ठीक से स्टडी करें और इस पे फॉलो अप करें. देखिए, प्रेसिडेंट ने तो दरवाजे खोले हैं, हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारे जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके लिए काम करने की जरूरत है कि किस तरह से जो ये नए दरवाजे खोल रहे हैं उनका उपयोग करें और रिलेशनशिप को और मजबूत.
1: राष्ट्रपति मुर्मू की तीनों देशों की यात्रा से यूरोप और अगर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात करें, क्या संदेश आता है?
0: हम बिलीव करते हैं वसुदेव कुटुम्बकम में, और हमने बार बार ये दिखाया है कि जब कोई भी देश संकट में आता है तो हम आगे बढ़ के उसकी सहायता करने की कोशिश करते हैं. एक आध महीने पहले वेनेजुएला में इतना बड़ा अर्थक्वेक आया, तो इतनी दूर एक स्थित कंट्री को हमने जल्दी से जल्दी सहायता भेजी. तो संदेश ये जाता है कि वी आर फ्रेंडली. जब कोई संकट का सामना कर रहा हो तो हम ऐसे दोस्त हैं कि हम उसकी सहायता करते हैं. तो ये जो दौरा है ये भी संदेश ये देता है कि भारत एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहता है इन सब देशों के साथ, ताकि हम साथ में मिलकर काम कर सकें, अपना ऑलराउंड कोऑपरेशन बढ़ा सकें, ट्रेड का एक्सपेंशन कर सकें और रिश्तों को और मजबूत कर सकें.
1: अम्बेसडर प्रभुदया, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुए और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: बहुत बहुत धन्यवाद.
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रोमानिया यात्रा से सुदृढ़ होते भारत यूरोप संबंधों पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत प्रभुदयाल. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है. पिछले खबरों के प्रोग्राम बज्म-ए-मौसीकी प्रोग्राम में सामिना सुनिए विदुषी मृणालिनी खांडेकर से राग जोग में ख्याल.

श्रवण में आप सुन रहे थे उस्ताद शकूर खान और हमनमाओं से सारंगी पर बजाया राग दरबारी। इसके साथ ही आज का क्लासिक की मौसीकी का प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से पेश खिदमत है सदाबहार फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिरी शब। प्रोग्राम की पहली पेशकश सुबह और शाम की आवाजों में दिल लगी फिल्म का नगमा नगमनिगार नौशाद मौसीका नगमनिगार शकील बदायमी मौसीकार नौशाद।

0: 14वीं रवायती ईंधन की सलाहियत 75 गीगावाट थी, जो अब बढ़कर 298 गीगावाट हो गई है। 23वीं दौलत मुश्तरका गेम्स आज से स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में शुरू होंगे। 74 मुल्कों की टीमें इस 10 रोजा इवेंट में हिस्सा लेंगी। ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लबीना बोरगोहेन दौलत मुश्तरका गेम्स 2026 में भारतीय टीम की कयादत करेंगी। दूसरी जानिब भारत ने इफ्तिताही तकरीब से पहले ही अपने तमगों की मुहिम का आगाज कर दिया है, क्योंकि ओलंपिक में तमगा हासिल करने वाले बॉक्सर लबीना ने बाय मिलने के साथ ही सीधे खवातीन के 75 किलोग्राम के सेमीफाइनल में जगह बना ली। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने कल शाम हरारे में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैन अवी मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से शिकस्त दी। सूर्यवंशी के 19 गेंदों में शानदार 50 रन ने भारत को सिर्फ 13.2 ओवर्स में ही 129 रन का जीत का निशाना आसानी से हासिल करने की राह हमवार कर दी। आखिर में खास खबरें एक बार और। चेक जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के उनके हमनसब निकोसर डैन के दरमियान बुखारेस्ट में वफद की सतह की बातचीत हुई। अमरीका और सऊदी अरब ने एक अहम और तारीखी माहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत खलीजी ममलिकत को सिविल एटमी प्रोग्राम को फरोग देने की इजाजत होगी। हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा को बात करने के लिए मदऊ किया है। वज़ीर आज़म ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का ऐलान किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 71 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शब का एक वजह चाहता है, यहां हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। सुबह 9:30 मिनट पर अपनी पहली मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, शब बख़ैर, जय हिंद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नीट पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना था कि छात्रों का साल बर्बाद न हो और परीक्षाएं जल्द आयोजित की जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है, जिससे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को परेशानी हुई है। उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और उन कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद के अगले सप्ताह के सत्र में सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास करेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट प्रश्न पत्र लीक मामले, छात्र विरोध प्रदर्शनों और अन्य विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव किटकिथला श्रीनिवास को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। केशव चंद्र को खान मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, जबकि चंद्रभूषण कुमार श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव होंगे। सुशील कुमार लोहानी को पशुपालन और डेयरी विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र सिंह को शहरी विकास विभाग का सचिव और डी थारा को राजधानी विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है। इन सभी नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस में उनका स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों

हस्ताक्षर किए गए। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में खुले, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जिनेवा में भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा के अंतिम सत्र में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि WTO में सुधार विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। समीक्षा बैठक में WTO के 68 सदस्य देशों ने भारत की व्यापार नीतियों पर अपने विचार रखे। श्री अग्रवाल ने सभी सदस्य देशों का सक्रिय भागीदारी और भारत की व्यापार नीतियों में रुचि दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालन, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, अंदरप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। अभी जानकारी मिली है कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में श्री वांगचुक से मुलाकात कर अनशन तोड़वाया। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एआईआर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गोल्डन एरा फिल्म संगीत की सुनहरी। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं ओल्ड हिंदी फिल्म गीत और जिसे कि हम गोल्डन एरा के गीत कहते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें उस सुनहरे पलों की तो उस समय इतने प्यारे प्यारे गीत कंपोज किए गए कि आज भी उन गीतों को सुनूं तो वही ताजगी नजर आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ जिसकी में आवाज से सजाया है लता मंगेशकर ने, बोल है शैलेंद्र के और संगीत है शंकर जयकिशन का। फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से हमने ये गीत चुना है।

और अगला गीत सुनते हैं फिल्म दिल अपना और प्रीत राई से भी आप ये गीत सुन रहे थे। और अगला गीत जो हमने आपके लिए चुना है वो है आशा भोसले की आवाज में फिल्म घूंघट से।

0: वहीं लीजिए अगला गीत पेश है फिल्म मंजिल से, आवाज की तदत और मोहम्मद रफी की, बोल है मजरू के और संगीत से सजाए है SD परमन ने।
1: कैसे मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम, क्या हो जो घटा खुल के बरसे, रुम झूम रुम झूम।

लीजिए, अगला गीत पेश है मुकेश लता मंगेशकर की आवाज में, संगीत से सजाए शंकर जयकिशन ने और शैलेंद्र के बोल हैं। फिल्म बोल है आ अब लौट चले, फिल्म है जिस देश में गंगा

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे गोल्डन एरा के फिल्म गीत, और इन्हीं सुनहरे गीतों को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फिल्म बरखा से गीत, आवाज लता मंगेशकर और मुकेश की।

और लीजिए पेश है अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म दिल भी तेरा तुम भी तेरे, माफ करिएगा, दिल भी तेरा हम भी तेरे।

0: पाल आ जाए मेरा सुरमा अगर ऐसे दिदी अंधा लगाएगा तो अंधे को अंधेरे में बहुत कुछ सूझ जाएगा।
1: सुरमा क्या है जादू मंत्र
0: आपके मुंह में घी शक्कर जो भी चाहो ले लो साईं पैसे की सब बात है पैसा दो और

0: पाउडर मांगता है।
1: मेम साहब, इधर तो इंडिया का माल मिलता है, हाँ, खालिस हिंदुस्तानी।
0: हिंदुस्तानी?

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम की सुनहरी गोल्डन एरा की फिल्म संगीत। 2 बजने को है, अब लीजिए सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले पर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 2.5 महीनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मामले में गुनहगारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना था कि सरकार की छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो और परीक्षाएं जल्द आयोजित की जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा है, जिसे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को परेशानी हुई है। उन्होंने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का पूरा प्रयास करेगी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपिक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 63 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने कहा कि कई मुद्दों पर लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने सभी से किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की। श्री वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन वापस प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव किटकिथिला श्रीनिवास को उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। केशव चंद्र को खान मंत्रालय का सचिव बनाया गया है, जबकि चंद्रभूषण कुमार श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव होंगे। सुशील कुमार लोहानी को पशुपालन और डेयरी विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र सिंह को शहरी विकास विभाग का सचिव और डी थारा को राजधानी विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है। इन सभी नियुक्तियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के बीच बुखारेस्ट में

0: प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और रोमानिया ने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। दोनों देश विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्षेत्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। इसका उद्देश्य परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक से जुड़े मामलों का जल्द निपटान करना है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months, since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately. He said he knows that the paper leak is not a minor issue and it is extremely painful for lakhs of students and their parents. The Prime Minister said he has directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts. He said the departments worked continuously and submitted the draft to him late last night. Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the cabinet today. Meanwhile, Delhi High Court has constituted a new fast-track court with immediate effect to hear cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. In a notification, the High Court said the Court of Officer Anu Grover Baliga at the Roos Avenue Court will function as a specially designated fast-track court. Ms. Baliga, who was serving as the judge in charge of the mediation centre at these Hazare courts, has been transferred to the Roos Avenue Court as a special judge for the purpose. Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to the media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind with the residents of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found.
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं।
3: वी आर ऑलवेज रेडी फॉर डायलॉग द डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑलवेज ओपन एंड यू आर वेलकम टू एंगेज इन डिस्कशंस एट एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस वी आर प्रिपेयर्ड टू डिस्कस एवरी इशू इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द मूवमेंट एज वेल एज एनी अदर मैटर्स ऑफ कंसर्न द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड सीनियर लीडर श्री जे पी नड्डा विल होल्ड डिस्कशंस विद यू एंड आई विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग
2: इसी चर्चा के बाद से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।
1: एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक हैज एंडेड हिज हंगर स्ट्राइक आफ्टर 26 डेज एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन गुरुग्राम अ शॉर्ट व्हाइल अगो इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स जेपी नड्डा एंड जितेंद्र सिंह वांगचुक्स वाइफ गीतांजलि यांगमो एंड सीनियर लीडर्स ऑफ एपिक्स बॉडी ऑफ लेह लद्दाख वर ऑल्सो प्रेजेंट एट द हॉस्पिटल Earlier, 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging him to break the fast. Mr. Wangchung said this was done after long negotiations on various conditions. He urged everyone to stay very vigilant about not allowing violence of any kind anywhere. Mr. Wangchung went on a hunger strike on 28th of last month demanding reforms in the education system and accountability over paper leaks. The government has said that arrangements have been made for a total of 1,000 yatris to travel to Kailash Mansarovar. 10 batches will travel to the Lipu Lake Pass in Uttarakhand and 10 batches through the Nathula Pass in Sikkim. In a written reply in the Rajya Sabha, Minister of State for External Affairs, Kirti Vardhan Singh said, last year, 688 pilgrims visited Kailash Mansarovar by participating in the Kailash Mansarovar Yatra organized by the Ministry of External Affairs. Delhi police has informed that 480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns have been identified and blocked. The police said that these social media handles were involved in spreading rumours and false claims to mislead the students and the youth. They urge the people always verify information and before trusting and sharing them. Gandhi Medical College in Bhopal has developed a new AI-based technology to detect oral cancer at an early stage. The Government of India has granted a patent for the design of this technology. The college's Department for Dental Surgery has also developed an AI-based mobile app called Mukh Arogya. The app will help in the early screening of oral cancer. It can be used by ASHA workers, community health officers and staff at primary health centres. It is expected to benefit people living in villages and remote areas. If early signs of oral cancer are found, patients can be referred to specialist doctors without delay. This will help start treatment on time. And that is the end of this news bulletin.
4: यह आकाशवाणी दिल्ली का एआईआर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुनते हैं कार्यक्रम गीत बहार। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म हंसते जब

0: दिनों में इस मामले में कई कदम उठाए गए हैं।
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विविध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन और कड़ी सजा के प्रावधानों वाला प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होने पर सरकार इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का पूरा प्रयास करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। उच्च न्यायालय ने अधिसूचना जारी कर बताया कि राउस एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक अधिकारी अनु ग्रोवर बालिगा की अदालत अब विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में कार्य करेगी। उन्हें इस उद्देश्य के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के बाद उठाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मौजूद रहे। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में उपस्थित थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की थी। श्री वांगचुक ने कहा कि कई मुद्दों पर लंबे विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। उन्होंने सभी से किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए सतर्क रहने की अपील की। श्री वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामलों में जवाबदेही की मांग को लेकर पिछले महीने की 28 तारीख से अनशन शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक से डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दिनचर्या का पालन करने और जल्द से जल्द सामान्य वजन प्राप्त करने का आग्रह किया है। शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के वर्तमान सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव बनाया गया है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया की राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच बुखारेस्ट में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से अधिक पुरानी मित्रता, आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंपर्क पर आधारित है। राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और रोमानिया ने अगले 3 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। दोनों देश विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्षेत्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत और गजल। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 4 बजने को है। अब होगा भक्त में संगीत का कार्यक्रम आराधना, जिसमें आप सुनेंगे कर्नाटक म्यूजिक पर आधारित भक्तिमय संगीत।

0: के स्वर में अभी आप गुरुवायूरप्पन की प्रशंसा में हरि नामक कीर्तन सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना, भक्ति में संगीत का कार्यक्रम भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली के IR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर। रात के 4:20 होने को हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म, जिसमें आप सुनेंगे आज कर्नाटक म्यूजिक, जिसमें मेरी एन का गायन सुनेंगे आप।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नाद ब्रह्म। कर्नाटक म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आपने सुना मिनी एन का गायन राग कल्याणी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 और पूरे 40 सेकंड हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज कौन कौन से कार्यक्रम आप इंद्रप्रस्थ पर सुनेंगे, आइए आपको बता देते हैं। अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें, जिसमें आज आप सुनेंगे दीर्घ श्वास, प्रेक्षा और आसन। पांच बजकर 20 मिनट पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर कार्यक्रम स्वर रंजनी में आज आप सुनेंगे अजय मिश्रा का गायन राग भूपेश्वरी में।

सुबह 6 बजे हिंदी और इंग्लिश में समाचार होंगे और उसके बाद 6:10 पर कार्यक्रम वंदना होगा, भक्तिमय संगीत का एक कार्यक्रम 6:40 तक आप सुनेंगे और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों पर। हर रोज की तरह आज भी सुबह 6:45 पर श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ होगा, 6:55 पर संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार होंगे। पर सुबह कार्यक्रम होगा संगीतिका का और 7:30 पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग। श्रोताओं, ये तो थे कार्यक्रम जिन्हें आज आप इंद्रप्रस्थ पर सुनेंगे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 5 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।

नानक में शरीर का एक रथ एक थवा हो जब जब फेर वटाई है ज्ञानी बुझाता है सज रसन तो का धर्म कर सवा हो त्रेता रज का जोर कर सवा हो दप का सत कर सवा हो कल जब रथ अग्न

साम कहे सितंबर स्वामी सतमया छह सात रहे सबको सत समावैर कह रहे पर पूरा नाम देवा मैसूर नाय लाया प्राथित जाहे नानक तो मुख अंतर पाहे जुज में जोत छली चन रावल कान कृष्ण जादम पाया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन मह रंग किया काल वह बेत अथर बन हुआ नाव खुदाई अलहो भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे।

लख जारिया लख जारिया लख कुड़िया लख गाल लख ठगिया पहना मिया रा दिन जीना तग कपाह हो कतिये बामन वटे आए को बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिये।

0: दरगह अंदर पाइए तग ना टूट सपूत महला पहला।
1: तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुप वैन दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगाया पे वत है।

ਲੋਕਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਝਾਨ।